जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया और सीना फाड़ डाला।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। ईड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552। स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताजा खबर नैन्सी कुकरेती के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अपने लहू में बसा लिया जिसने मेरे श्री राम को, ऐसी भक्ति ना देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: ₹8,00 से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू सारण, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
7: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
8: अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमेरिकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
10: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
11: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
10: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
12: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिन्दुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, होर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए डोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
10: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defense Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defense forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests three members of family that owned collapsed building in Satyaniketan area of national capital. And India set to feature in four gold medal finals at World Archery Para Series in Ahmedabad today.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH-24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: कहा मेरी कसम?
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय।
6: बिंदास मॉर्निंग
3: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
8: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
7: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं नई सुबह नई उम्मीद, जो बीत गया उसे जाने दो, आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। कहते हैं हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है खुद को कल से बेहतर बनाने का। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग है जी। और ये लाइनें सिर्फ हवा हवाओं में मत उड़ाइए, इनको एक्चुअली अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए ये लाइनें ही आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती हैं। श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे आनंद को। और अभी फिलहाल स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:21। एग्जैक्टली ये वो फ्रीक्वेंसी है जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। दिन की बात करें तो आज मंगलवार का दिन है। जय श्री राम लेकर प्रभु का

हम करेंगे आज के सफर की शुरुआत 10 बजे तक आपके साथ रहूंगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होंगी ढेर सारी आपसे दिल से दिल तक। श्रोताओं, हर दिन कहते हैं ना, एक मौका लेकर आती है, एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी लेकर आती है ना, आज की सुबह वही लेकर आई है। लेकिन मैं जरूर बात करूंगा, अभी मैं इस ये वाला जो थॉट है मैंने क्यों शेयर किया आपसे डेफिनेटली आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज के सफर की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और इस गीत के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे और भी बातें करेंगे। आप ऐसे ही ट्यून रहिए मेरे साथ, 8:22 हो रहे हैं, ये कंपनी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, एंड इस गाने के बाद जल्दी से वापस लौट कर आता हूं। उसके बाद आज के दिन के बारे में ढेर सारी बात करेंगे ना लेडीज एंड जेंटलमैन। सिलसिला फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपकी रेडियो सेट पे निकल चुका है आज की सुबह को और भी धांसू बनाने के लिए। किशोर दा एंड लता दी की बहुत ही प्यारी आवाजों में इस गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। जिंदगी में सुकून भी जरूरी है, अगर आगे बढ़ना है तो आपको एक नई शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, है ना। और शुरुआत के लिए आपके अंदर वो क्रियोसिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर क्रियोसिटी नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगी, तब तक मजा नहीं आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।

0: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: करो।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
5: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
4: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
5: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
4: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
6: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

क्या बात है, खूबसूरत गाना। प्यार करना सिर्फ इंसानों से तो करती हैं हम प्यार, लेकिन हमें अपनी चीजों से भी प्यार करना चाहिए, बहुत जरूरी है। प्यार कर मतलब हर एक चीज से, जब हम सुबह सुबह प्यार करने लगेंगे तो हर चीज हमें बहुत प्यारी लगने लगेगी। 8:35 हो गए। किसी को अपनी कार से प्यार होता है तो वो सुबह सुबह अपनी कार को वॉश करने लगते हैं, किसी को अपनी चाय से प्यार होता है वो सुबह सुबह अपनी चाय बनाने लगते हैं, किसी को अपने आप से प्यार होता है तो वो अपने आप को कुछ टाइम देते हैं, ताकि भैया सुबह सुबह अगर वो अपने आप को टाइम देंगे, अपने खुद की अंदर की बॉडी के लिए टाइम निकालेंगे, तो शायद उनकी बॉडी ज़्यादा फिट रहेगी, ज़्यादा तंदुरुस्त रहेगी, वो ज़्यादा अच्छे से अपने प्रोडक्टिविटी को और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, अपने काम पे और अच्छे से फोकस कर पाएंगे। वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग। ये है FM मुरादाबाद, आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्त हुआ है 8:36। 8 सितंबर की सुबह, बहुत ही प्यारा दिन है ट्यूसडे का, और इसी बीच ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा जी जुड़ चुकी हैं मेरे साथ कांच रोड से, लिखती हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपकी सुबह की शुरुआत हो रही है और ईश्वर करे आज का दिन आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए और ये नई उम्मीदों से भरा आपका दिन ऐसे ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देकर जाए। सुप्रभात, मेरी तरफ से ऑल द वे बेस्ट आपके पूरे मुरादाबाद को। अरे वाह, क्या बात है पूजा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत और बेहतरीन उम्दा लाइनों के लिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है सुमन जी का, ये लिखती है, आनंद जी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं सुबह सुबह और ऑफिस के लिए जाते जाते जब ऑफिस जाते हैं तो आपका रेडियो सुनते हुए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड साथ में इन्होंने लिखा है, मेरी शुभकामनाएं तो यही है, आज का दिन ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए और बस एक चेहरे पर अच्छी मुस्कान लेकर निकलिए घर से बाहर। एंड साथ में लिखती है, हैव अ ब्यूटीफुल डे, थैंक यू सो मच सुमन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज और आया है, आप जहाँ भी हैं प्लीज अपना ख्याल रखिए। अरे वाह, क्या बात है, आपने नाम नहीं लिखा अपना। मनप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं पीली कोठी से, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए और गीत संगीत आपके बहुत ही अच्छे होते हैं, आपका जो है प्रोग्राम सुन के हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति लेकर आते हैं आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत जी। दोस्तों बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी काम के लिए आज घर से निकल रहे हैं, बस एक बात याद रखिए, हर सुबह जिंदगी में एक नया मौका लेकर आती है, एक नया चांस आपको देती है, बस कल की चिंता छोड़िए, आज को बेहतर बनाइए, मुस्कुराइए और पूरे विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं 9837896896 के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे संदेशों का और हाल ढेर सारे मैसेज और भी लगातार मेरे पास पहुंच रहे हैं, जरूर आपके संदेशों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए और बाकी अगर आप भी हमारे साथ कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज के दिन के बारे में हम जरूर बात करेंगे, क्यों खास है आज का दिन, क्या कुछ स्पेशल है आज की तारीख में, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत गीत आपका इंतजार कर रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इस गीत को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बस जल्दी से लौट कर आते हैं, उसके बाद हम आज के दिन के बारे में चर्चा करेंगे। आज का दिन क्यों खास है, क्या स्पेशल है, मौसम तो देखिए हो ही रहा है औसम और आज तो सूर्य देवता भी प्रकट हो रहे हैं, भले ही पूरी चकाचौंध के साथ नहीं, लेकिन सूर्य देवता निकल चुके हैं और फाइनली हल्की सी तो राहत मिली गई है, ये जो बारिश झमाझम हो रही थी ना, अब इससे लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी राहत मिली है। वेल, आज का मौसम कैसा रहेगा इस पर भी बात करेंगे जरा सी देर में, आप ऐसे ही हमारे साथ ट्यून इन रहिए। फिलहाल एक और गीत सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं इस स्टेशन पर। आठ बजकर 38 मिनट हो रहे हैं, ये FM मुरादाबाद है और आप आनंद के साथ सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
5: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
4: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
6: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
7: हाँ मेरी कसम,
6: मिस कर दिया तो रीलोड।
8: चाय चाय चाय
9: बिंदास मॉर्निंग।
6: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक। और सच बताऊं तो ऐश्वर्या राय बच्चन ने बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, मतलब इतना बढ़िया गाना जिसको सुन के ना कसम से आनंद ही आनंद आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, इतने बढ़िया गाने आप सुनते हैं एफएम मुरादाबाद पर आनंद के साथ, ओनली ऑन आपके शहर का अपना एफएम मुरादाबाद रेडियो है भाई।

0: श्रोताओ, बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
0: अभी जो आपने गीत सुना वो बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था, और उसको गाया था आशा भोसले जी ने, बहुत ही खूबसूरत आवाज में खूबसूरत ट्रैक। श्रोताओं, आज का दिन बहुत स्पेशल है, 8:53 हो गए हैं, 8 सितंबर की सुबह है।

चलिए बात कर लेते हैं अब आज के दिन के बारे में। और अभी हमने आशा ताई की आवाज़ में इतना प्यारा ट्रैक सुना, तो ऑफकोर्स उनकी बात करना तो बनता है, क्योंकि आज 8 सितंबर का दिन बहुत ही स्पेशल है सिनेमा जगत के लिए, बॉलीवुड के लिए। हाँ जी, क्योंकि आज ही के दिन एक बहुत ही खूबसूरत मखमली आवाज़ का जन्म हुआ था, और जिनका नाम लेना ही मतलब अपने आप में पॉजिटिविटी है। आपको ये गाना सुन के समझ आएगा। तो आज 8 सितंबर है, और आज ही के दिन भारतीय संगीत के लिए बेहद ही खास दिन, क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ था उस आवाज का जिसने पर्दे में रहने अपनी गायकी से कई पीढ़ियों तक दिलों पर राज किया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आशा भोसले जी। यस, आज आशा ताई जी की आवाज सिर्फ सुरों से नहीं गूंजती, बल्कि एक अलग अंदाज, ऊर्जा और अपने खूबसूरत गीतों के लिए जानी जाती है। यार आशा ताई की आवाज में ना हर गाना बहुत ही परफेक्ट होता है, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, कोई दर्द भरा नगमा हो, या फिर मस्ती भरे गाने। आज उनकी जन्मतिथि पर हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं, और यही कहेंगे कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती। उन्हीं में से एक आवाज है आशा भोसले ताई की। बाकी बात कर लेते हैं और आज के दिन क्या कुछ खास है। श्रोताओं, आज का दिन क्यों और स्पेशल माना जाता है, तो आपको बताते चले, 8 सितंबर की जो तारीख है वो सिर्फ एक दिन नहीं, कैलेंडर की तारीख नहीं है, और भी तमाम सारी चीज़ों के लिए आज का दिन जो है जाना जाता है। आज के दिन बहुत सारी चीज़ें स्पेशल रही हैं, जो आज के दिन को और भी यूनिक और ख़ास और स्पेशल बनाती हैं। श्रोताओं, हाँ जी, आपको बताते हैं, सन 2002 में ताइवान आज़ाद होने के लिए जनमत संग्रह योजना से पीछे हटा था। श्रोताओं, आज ही के दिन, और आज ही के दिन 15 छोटे देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ताइवान की सदस्यता का समर्थन किया था सन 2003 में, आज ही के दिन। और आपको बताते चले, आज ही के दिन मीराबाई जी का जन्म हुआ था 1994 में। मीराबाई जी जो भारत के प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं, इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आपको बताते चले, एक और जाना माना नाम जो शास्त्रीय संगीत गायकी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, सिद्धि

0: रहा है देश दुनिया में, हर चीज पे चर्चा होगी मेरे साथ। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके संदेश मुझे लगातार मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस को मैं जरूर शामिल करूंगा थोड़ी देर में। और आज बहुत ही स्पेशल तारीख है, आपको पता है ना, आज 8 सितंबर है, वो अगस्त वाला जोन बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ ना। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर बहुत ही स्पेशल तारीख, ऑफकोर्स बहुत दिन से आप सुन रहे हैं यहाँ पर कि कुछ तो स्पेशल होने वाला है आज की तारीख में, कुछ तो स्पेशल होने वाला है। अरे भैया, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पहले पूरी समझ लीजिए, सुन लीजिए, शायद आपको ये समझ में आ जाए।
1: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
2: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
0: क्या बात है, समझ में आ गया ना भाई साहब। हाँ तो बस तैयार हो जाओ, शाम को मिलते हैं आपको पंचायत भवन में। आज का ये कॉन्सर्ट है बहुत ही स्पेशल है। और अभी आनंद के साथ आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896। कोई भी अगर आपके मन में थॉट है, कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी आपको लगता है कि यार ये चीज़ तो मुझे जाननी है, ये चीज़ तो मुझे पूछनी है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके। अगेन नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9837896896। इस नंबर पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत, उसके बाद मिलता हूं आपसे नेक्स्ट आवर में। सो डोंट गो एनीवेयर, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। अभी बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा फन तो बाकी है मेरे दोस्त। चलो फिलहाल एक और खूबसूरत ट्रैक आज की सुबह को स्पेशल बनाने के लिए आपके रेडियो सेट पे निकल गया है श्रोताओं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम?
1: मिस कर दिया तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
2: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। हाँ जी बिल्कुल, आज रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद पंचायत भवन में होने वाला है, तो आई एम श्योर आप एक्साइटेड होंगे। मैं भी एक्साइटेड हूँ यार। हेलो जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। ट्यूजडे की सुबह सुन रहे हैं आनंद को। 9:06 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आज 8 सितंबर की सुबह है, ढेर सारी हैप्पीनेस, थैंकफुल ऑन मॉर्निंग वाइब। आप जहाँ भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। गणपति को लेके बहुत सारी तैयारियां हो गई है मुरादाबाद में, और अगर आप खुशालपुर रोड की तरफ जाओगे तो भाई क्या गजब की प्रतिमाएं हैं वहां पर, दूर दूर से प्रतिमाएं हैं, और कुछ तो स्पेशल प्रतिमा बनाई गई गणपति जी की। एंड ऑफ कोर्स आज मैं आपको वहां की वाइब चेक आउट कराने वाला हूं। सो अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हूं तो फॉलो कर लो यार, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। अगर बंदे को ढूंढना चाहते हो तो बड़ी प्यारी सी मेरी जो इंस्टा हैंडल है वो आपको मिल जाएगी, मतलब मिल जाएगा यार, हाँ हाँ व्हाटएवर, जो भी आपको सही लगे आप उसको समझ लो। मेरा इंस्टा हैंडल है रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से। मिलता हूँ आज मंगलवार की सुबह, क्या कुछ खास हो रहा है हमारे आसपास इस पर बात करेंगे ना अभी लौट कर आएंगे। तो और खूबसूरत गाने भी आपके लिए लेकर आया हूँ आज की सुबह, जिनको सुन के आपको मजा आ जाएगा, जैसे कि दिस सॉन्ग इज, दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग ट्रैक आज की मॉर्निंग। आने वाला गाना दिलजीत दोसांझ की आवाज में, इस गाने को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं जरा सी देर में। एक और ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी सुपर डुपर लाउड एंड अमेजिंग। मूवी का पता नहीं लेकिन गाने ने कमाल कर दिया। जरा सी देर में आगे बढ़ते हुए इन हिट्स को आप सुनेंगे, धांसू गाने हैं जो आपकी सुबह को थोड़ा सा और ऑसम बनाएंगे। अब हम नए गानों की तरफ जो है थोड़ा सा एंटर करेंगे भाई साहब, क्योंकि थोड़े से नए गाने भी अच्छे लगते हैं।
3: तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा,
1: ऑल टाइम फेवरेट
3: के खातिर
1: कॉलेज वाला प्यार,
3: आ तू मेरे ख्वाब सजा जा,
1: बहुत सुना है बॉस, बहुत लोगों का पसंदीदा गाना है। आई नो यार, जानता हूँ मैं।
4: कह रहे मेरी कहानी इन्हें समझो ना तुम, सिर्फ पानी।
1: जरा सी देर में लौट कर आते हैं, चलो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो आरजे आनंद के साथ, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6। कुछ कहना चाह रहे हो पाजी आप तो मुझे व्हाट्सएप कर दो 9837896896, ये स्टूडियो का नंबर है। अब मैं इससे ज्यादा और क्या ही बताऊंगा यार, बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी लौट कर आता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं एक और खास और कमाल की चीज जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा, मतलब वाह वाह करोगे आप, जैसे कि गाना बहुत ही कमाल का है यार। चलो सुनते हैं। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद के साथ, ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो। लौट कर आता हूँ जरा सी दिन में।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तैयार मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुल लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: बिल्कुल जी, जबरदस्त हिट्स भी सुन रहे हैं, मॉर्निंग शो चल रहा है, अच्छे गाने ऑफ कोर्स बज रहे हैं। और आज हनुमान अंश जो है ना फ्री में दिखा रहे हैं कुछ लोग। कौन कहां पर क्या है ये पूरा सीन जानना चाहते हो यार? अभी बताता हूँ।

0: ये दिलजीत दोसांझ का गाना सुन के ना मेरा, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे जो अंदर का लेवल है ना पॉजिटिविटी का और बढ़ गया। बिकॉज दिलजीत के गाने सुन के सुबह सुबह, दिलजीत दोसांझ के गाने सुन के हर किसी को अंदर से एक मोटिवेशन आ जाता है यार।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
7: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारी, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद, 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
0: एब्सोल्युटली सही स्टेशन पे सही शो सुन रहे हैं आप। लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक है, क्या हालचाल है जी। ट्यूजडे की सुबह सुन रहे हैं आनंद को, एंड भैया मैं तो कहना चाहता हूँ मंगलवार का दिन है, भगवान श्री राम का नाम लेके कीजिए ना अपने दिन की शुरुआत, सारे काम बढ़िया होंगे भाई। आप जहाँ भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट। मौसम बहुत औसम है, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं फटाफट से, क्या कहता है आज का मौसम। हाँ जी, तो भैया देखिए करंट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आज सूरज चाचू निकल चुके हैं। बहुत दिन से कपड़े नहीं सूख रहे थे, भैया सुखा लो यार। क्या कह रहे हो आनंद जी, कल भी धूप अच्छी खासी निकल रही थी। कल एक्चुअली मैं शहर में नहीं था तो मुझे सीरियसली नहीं पता कल का वेदर कैसा था, लेकिन फिलहाल आज का मौसम थोड़ा सा औसम है। चलो बात कर लेते हैं, और अभी ये हाईएस्ट क्या रहेगा, लोएस्ट क्या रहेगा आज के टेम्परेचर का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इमीडिएटली। तो भैया आपको बता दें अभी फिलहाल जो करंट टेम्परेचर है वो 28 है, एंड ये हाईएस्ट की बात करूँ तो 32 पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करूँ तो 26 आ सकता है। हवाएं 4 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, एयर क्वालिटी एकदम परफेक्ट रहने वाली, ह्यूमिडिटी 84 दिखा रहा है यहाँ पर प्रतिशत, यानी कि गर्मी जो है आपको लग सकती है। तो बस क्या करना है, पानी पीते रहना है। चलो यार, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था हनुमान अंश मूवी के बारे में, राइट। एक तो मूवी इतनी कमाल की है भाई, इतनी बढ़िया जो है मूवी चल गई है, अनएक्सपेक्टेड जो है इस मूवी ने कमाल कर दिया है। मतलब इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी नहीं सोचा था, जिन लोग जो मूवी लेकर आए ना उन लोगों ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मूवी इतनी बढ़िया चलने वाली।

0: Yes. 2 करोड़ के बजट में बनी और ये कितने करोड़ पार कर चुकी है ये तो अब आपको पता चल ही चुका होगा। लास्ट टाइम मैंने 40 बताया था, कि इमेजिन यार कि अब ये मूवी और ज्यादा आगे बढ़ रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए, इस मूवी से जुड़ी एक खास बात बताने के लिए मैं अभी आपको कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां यार। एक बहुत ही खास चीज आज हो रही है हमारे शहर के अंदर, वो क्या हो रही है यही बताने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पे कोई स्पेशल है। आइए उनसे बात करते हैं एंड उनसे जानते हैं वो क्या है स्पेशल कर रहे हैं आज। और जब हमारे आसपास के बच्चों के लिए कुछ नया होता है तो यार बड़ा मन खुश होता है। चलिए बात करते हैं, जरा हमारे साथ जुड़ी है ऋचा मैम। हाय, गुड मॉर्निंग ऋचा मैम, कैसे हो आप?
1: गुड मॉर्निंग सर, मैं बिल्कुल बढ़िया।
0: सबसे पहले तो मैम सर बोल के ना आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दोगी, वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप मुझे आनंद बोलोगी तो मेरा कॉन्फिडेंस और अमेजिंग हो जाएगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद के रेडियो पर। तमाम सारे लोग आपको सुन रहे हैं। पहले ये बताइए आप क्या कर रहे हैं सुबह सुबह?
1: सुबह सुबह बस सुबह के काम तैयारी, और आज जो प्रोजेक्ट है हमारा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, उसके लिए बस सब तैयारी है। घर से निकलने वाले हैं हम सब लोग।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो क्या तैयारी है जरा ये बताओ अभी थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को, क्या स्पेशल प्लान कर रहे हो आज आप?
1: एक्चुअली आनंद, हमने जो सोचा है वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए सोचा था, कि बहुत से बच्चों को पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं, ज्यादातर बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते गाँव के, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर या जो भी उनके पास क्राइसिस होते हैं। बट कुछ पेरेंट्स भेजते भी है ना, तो बस बच्चे स्कूल जाते हैं, वो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया जाए। तो इसके लिए हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आया था कि क्यों ना जो बच्चे पूरे साल के टॉपर होंगे, हर क्लास से एक एक दो दो बच्चे जो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, उनको हम किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड देंगे। तो इस वक्त एक बहुत अच्छी मूवी आई हुई है हनुमान अंश, तो हमने सोचा क्यों ना वो रिवॉर्ड के फॉर्म में बच्चों को हनुमान अंश ही दिखाई जाए।
0: ओके, तो आपने ओके तो मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मूवी पे लेके जाने वाले, राइट?
1: ऑलराइट,
0: तो ये मतलब कैसे कॉन्सेप्ट आया कि यार हमें ये करना चाहिए? बिकॉज दिस इज वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मैम
1: मुझे लगता है ना ये भी एक हनुमान जी ने ही दिमाग में डाला, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कैसे आया, वो बस माइंड में एकदम से क्लिक करता है, चीजें हो जाती हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: डेफिनेटली मैं तो यही मानती हूँ कि प्री प्लान कुछ नहीं होता, विद इन 2-3 डेज सब कुछ माइंड में आया। स्कूल गए, बात की, वेव में बात करी, और ये मिनी मार्वल क्लब है हमारा।
0: जी जी,
1: इसमें गीतू उत्रेजा, मैं ऋचा अग्रवाल, वंदना आत्रे और श्वेता जैन।
0: ओके, तो आप चारों लोग मिलके ये कर रहे हैं?
1: डेफिनेटली हाँ, हम चारों लोग मिलके कर रहे हैं, और ये एक CSR एक्टिविटी है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट हम बच्चों के करते हैं जो MDA वगैरह में करते हैं, बट ये जो है ये कंप्लीट एक बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए है।
0: That's very nice initiative. रिचा मैम, आपकी टीम और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। कितने बच्चे होने वाले हैं? एनी आइडिया?
1: अप्रॉक्स 30।
0: बहुत बढ़िया। और इसमें और कौन है जो आपके साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं?
1: एक्चुअली वेव्स वालों ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया है हमें, स्पेशली रितेश भैया है, वहाँ के AGM है, AGM फाइनेंस, तो उन्होंने काफी अच्छे से हमें बहुत अच्छा पैकेज बना के दिया है, जिससे हमारे लिए भी चीज करने में इजी होती है, मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हम भी इस टाइप की एक्टिविटी आगे करते रहे।
0: That's very nice, ma'am. रिचा मैम, एक सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लाना बहुत अच्छी बात होती है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये उससे भी बड़ी बात होती है। जोरदार तालियां, इट इज रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट। रिचा मैम, आपकी पूरी टीम को ऑल द वे बेस्ट। तो कितने बजे का शो आज आप दिखाने वाले हो स्टूडेंट को?
1: 10:30
0: ओके, अभी टुडे?
1: वेरी नाइस।
0: और मुझे लगता है कि ये मूवी भी काफी ट्रेंड में है, और मुझे लगता है जब स्टूडेंट इसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बन जाएगा।
1: ये मूवी दिखाने का डबल कॉन्सेप्ट था, एक तो उनको रिवॉर्ड देना, सेकंडली बच्चे बॉलीवुड से इतना कनेक्ट हो गए हैं अपने नेटफ्लिक्स और इन सब से, कि वो हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको काफी छोड़ रहे हैं या भूल रहे हैं। पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि वो समझा नहीं पा रहे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी सोचूं अपने बच्चों को कितना बता पाती हूँ।
0: एग्जैक्टली, टाइम नहीं है मैम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है।
1: एग्जैक्टली, कि सबके डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है कि आजकल हर पेरेंट उन्हीं को फुलफिल करने में लगे, हमारी खुद की ख्वाहिशें बहुत है आजकल बच्चों के साथ साथ।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो रिचा मैम, अभी 10:30 आप लोग पहुंचने वाले हो, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी हो रहा होगा। आई एम श्योर ऑलरेडी 9:27 हो गया है, और सुबह का समय ऐसा होता है ना एकदम सुपर फास्ट वाला, ये भी करना है, वो भी करना है, और टाइम से कॉन्सेप्ट को भी अटेंड करना है, राइट? बहुत बढ़िया. सो रिचा मैम, लवली टॉकिंग टू यू. बहुत ही अच्छा आपका ये कॉन्सेप्ट है
1: आनंद. सेम हियर.
0: और मैं चाहूंगा कि आपका ये कॉन्सेप्ट आप लोग ऐसे आगे भी कंटिन्यू करें. ऐसे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जब प्लान करते हैं तो बच्चों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे जाते जाते अपनी मधुर आवाज में?
1: बस ये कहना चाहूंगी कि एज अ मदर मुझे लगता है कि जितनी ड्यूटी मेरी मेरे बच्चों के लिए है तो कुछ परसेंट 5-10% मेरी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी बचती है, क्योंकि भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम कुछ रुपए अगर उन पर खर्च कर देंगे तो वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे.
0: एग्जैक्टली. कौन से स्कूल से आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं बाय द वे 30 बच्चे?
1: ये कांच रोड पे फोटोन हॉस्पिटल के सामने रुकमणी स्कूल है.
0: ऑलराइट. ओके तो वहाँ के स्टूडेंट आने वाले हैं.
1: हाँ वहाँ की टीचर है एक चांदनी, उनसे जाकर हम मिले थे, उनके थ्रू वहाँ के मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो थे उनसे सबसे बात की थी.
0: ओके.
1: तो चांदनी से हम और भी टच में रहते हैं ताकि और भी कहीं कोई जरूरत हो तो वो हमें बताएं.
0: दैट्स वेरी नाइस.
1: ऐसे काफी लोग हैं जो हमें आइडिया देते रहते हैं कि मैम यहाँ इस चीज की जरूरत है, तो कभी सोचते कुछ है बट कभी कुछ और अच्छा निकल के आ जाता है.
0: ये तो आपने
1: बहुत अच्छा. वाले तो ऊपर वाले ही
0: ऊपर वाले ही. एग्जैक्टली. यार मेरा भी बड़ा मन था हनुमान अंश काफी ट्रेन कर रही है यार, मैं भी देख रहा हूँ. टाइम ही नहीं.
1: बिल्कुल पहुंचिए आप हमारे साथ. कैसी बात कर रहे हैं, वेव से वेव कहीं से भी दूर नहीं है. जो भी मुरादाबाद वाले हैं उसके लिए वेव बिल्कुल दूर नहीं है.
0: ओके, तो मतलब मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए आज का सेशन.
1: डेफिनेटली यू आर कॉर्डली इनवाइटेड. यू आर कॉर्डली इनवाइटेड आनंद
0: जी. थैंक यू सो मच रिचा मैम, मजा आ गया. जोरदार तालियां आपके लिए, आपने सोने पे सुहागा कर दिया. सुबह सुबह दिन बना दिया. माइंड ब्लोइंग टॉकिंग टू यू मैम. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बढ़िया सा गाना आपके लिए निकाल रहा हूँ मैं आज की सुबह.
1: क्या बात है.
0: चलिए फिर मिलते हैं आपसे. ओके मैम, बाय बाय.
1: ओके
0: थैंक यू. थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम. ये जुड़ी थी हमारे साथ रिचा अग्रवाल जी, जिनसे बात करके बहुत मजा आया. एंड सीरियसली इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, एक बार तालियां तो बजा दो यार, बहुत बढ़िया. चलिए भाई जोरदार तालियां हमारी ओर से. एंड बाकी आप लोग भी कुछ ऐसा अच्छा काम करते हो तो मुझे बता दिया करो यार. फिलहाल ये गाना माशूका जरा सी इसमें सुनेंगे आप. तो कहीं मत जाइए, आई विल बी राइट बैक. लौट कर आता हूँ और बताता हूँ कुछ और खास. फिलहाल के लिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया 2.0 ब्रांड न्यू गाना सुनते हैं. इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे एंड आई विल बी राइट बैक. डोंट गो एनीवेयर गाइस.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

0: क्या बात है यार, ये माशू का बहुत ही बेहतरीन गाना भी आपने एंजॉय कर लिया और इसी को सुनते हुए आगे मैं और आप बढ़ चुके हैं। कॉफ्टर टू का ये गाना था, लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:36 हो रहे स्टेशन क्लॉक में और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज कर दिए हैं। फिलहाल मैं जरा इस तरफ भी ध्यान देता हूँ, जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। और जरा जल्दी से सुनते हैं आप लोग क्या क्या पहुंचा रहे हैं, कौन कहां से क्या मैसेज कर रहे हैं। इमीडिएटली जरा एक बारी चेक कर लेता हूं ये वॉइस नोट क्या कह रहा है।
1: बिंदास मॉर्निंग की बिंदास बॉय को गुड मॉर्निंग, आप इसी तरह हर दिन लोगों का मॉर्निंग बिंदास बनाते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच आपकी बेस्ट शुभकामनाओं के लिए। और इसी बीच हमारे पास और भी मैसेज पहुंचे हैं। शफी अहमद साहब जुड़े हैं ईदगाह मुरादाबाद से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग साथ में रईस दूल्हा अंसारी एंड ये प्रोग्राम इनको अच्छा लग रहा है, ये उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर, पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पिछले 3 सालों में पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सारा एंटरटेनमेंट का डोज मिले। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। हाई माय नेम इज रितिका, गुड मॉर्निंग रितिका। एक मैसेज आया सर, ऑफिस जा रहा हूँ। हाई माय नेम इज अली, कैसे हाल चाल है आपके। हाई अली, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। नमस्कार प्रिय मित्र आनंद जी को गुड मॉर्निंग, और आपका मनमोहक कार्यक्रम सुनकर दिल को काफी संतुष्टि मिलती है। अरे वाह, क्या भारी भरकम शब्द बोल डाले आपने, मतलब एकदम मजा आ गया। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से मेरे साथ जुड़े हैं एंड इसी बीच मेरे पास सहारनपुर से हमारे प्यारे रेगुलर लिसनर का मैसेज पहुंचा है। जून रूसी पलविलीस लिखते हैं, जिंदगी छोटी है, इसे दूसरों की कमियां निकालने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। मतलब इतनी बढ़िया बातें आप लोग लिखते हैं, मजा आ जाता है। विकी सागर जुड़े हैं, लिखते हैं, विकी भाई गुड मॉर्निंग रेडियो वाले आनंद को, कैसे हाल चाल है। अमित जी मेरे साथ जुड़े हैं, आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड साथ ही डॉक्टर सुरेश कुमार मेरे साथ जुड़े हैं, रिहाना जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, बबलू सैनी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है। एंड इसके अलावा गुलाम जलानी पाशा भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुंदरकी से, चमन लाल साहब जुड़े हैं साथ में, चौधरी मुमताज राकेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। एंड इसी बीच गुड मॉर्निंग आनंद जी आप कैसे हैं, ये बिलासपुर से मोहन स्वरूप जी मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। गाइज इतने बढ़िया मैसेज आप लोग पहुंचाते हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मजा आ जाता है। देखिए राम गंगा नदी में जो है पानी वो लगातार बढ़ रहा है, तो भैया आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मैं भी देख रहा था कि उसका अलर्ट भी आ रहा है, सो आप प्लीज़ ज़रा सेफ रहिए, केयरफुल रहिए। अगर उधर आसपास में आपके घर है, किसी का भी कोई उधर रहता है या आपका कोई जानने वाला है, तो उनको भी प्लीज़ अलर्ट भेजिए, बहुत ज़रूरी है सावधान रहना, सतर्क रहना, छोटे बच्चों का स्पेशली ख्याल रखना है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हम फोटो सेशन के लिए जब ऐसे यू नो पानी वानी की चीज़ें में नज़र आती है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, चलो ठीक है वहाँ जाकर कुछ सेल्फी लेते हैं, रील्स बनाते हैं, बट ये नहीं करना है, डोंट डू दैट, प्लीज़ मत कीजिए, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है ना। और अभी गवर्नमेंट भी अगर मना कर रही है, आपको ऐसी न्यूज़ मिल रहे हैं तो मत जाओ भाई। आने वाला गाना हो रहे हैं, मैं अभी लौट कर आता हूँ एक सवाल के साथ, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और भैया कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। क्या चल रहा है और ये बताता हूँ, अभी फटाफट से लौट कर आ रहा हूँ। कुली नंबर 1

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
2: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: था मेरी कसम,
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय,
3: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
6: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
7: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
6: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
7: अरे नहीं,
8: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
7: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
6: अच्छा?
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: भाई साहब म्यूजिकल कॉन्वर्सेशन आप एंजॉय करते हैं। हाजी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आपके लिए एक बढ़िया सा सवाल लेकर आया हूँ और एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया आप लोग बातें कर रहे हो, मजा आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आप पहुंचाते हो यार, और क्या ही चाहिए मेरे को।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: पूछो जरा पूछो कड़ा क्वेश्चन।
0: तो भाई बात ऐसी है, बहुत ही प्यारा सा आज का कड़क क्वेश्चन है। देखो म्यूजिकल बातें हो रही हैं तो ऑफकोर्स सवाल भी ऐसे ही होना चाहिए, है ना। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, गाना बहुत ही बढ़िया है एंड ऑफकोर्स आप लोगों ने ये मूवी भी देखी होगी एंड भर भर के गाना भी इंजॉय किया होगा। बहुत प्यारा ट्रैक है, इस गाने का कुछ पार्ट प्ले कर रहा हूँ, मतलब सॉरी इंट्रो म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ बेसिकली। सो आपको मुझे बताना है कौन सा गाना है। दिस इज वेरी अमेजिंग सॉन्ग, दिस इज योर हिंट। कौन सा गाना है भाई जरा बताओ मुझे ये। अगर आपको समझ में आ गया है तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे। थोड़ा सा हिंट भी दे दिया मैंने आपको, कौन सी फिल्म का ये भी बता सकते हो आप। चलो चलो व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पे। बहुत ही बढ़िया फिल्म है और बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं इस मूवी ने यार, बहुत ही अच्छी फिल्म है। अगर आपको समझ में आ गया है कौन सा गाना है तो आप मुझे मैसेज करोगे 9837896896 पे। इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और अभी के लिए ब्यूटिफुल ट्रैक राहत फतेह अली खान साहब की आवाज साथ में श्रेया घोषाल देने आ रही है साथ। वक्त मिला लो 9:39 यानी कि नहीं यार 49 हो रहे हैं पाजी 49, ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन करता है। अच्छा चलो इंग्लिश में बता दे तो 9:49 हो रहे हैं अभी। लो जी कर लो बात, 9:50 हो गए, सबसे बढ़िया। चलो चलो गाने सुनते कुछ। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये कौन सा गाना है तो आप मुझे प्लीज बताओ, मैसेज करो 9837896896। ड्राइव कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, पड़ोस में जो बैठे हैं उसको फोन पकड़ाओ।

सच अमेजिंग सॉन्ग यार, ऐसे गाने सुन के सच में दिल को सुकून मिल जाता है। बेहतरीन गाने और बेहतरीन वाइब आपको मिलती है। 9:55 हो गए हैं, मुझे ऑलरेडी अभी निकलना भी है, लेकिन उससे पहले हाँ जी, तो आपको बताते चले, गणेश चतुर्थी से पहले जो है मुरादाबाद में सजी है गणेश प्रतिमाओं की जो है एक वाइब फुल ऑन माहौल आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप डेली रोड या फिर खुशालपुर की तरफ जाओ तो आपको बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं जो है वो देखने को मिलने वाली है। मैं इसको भी डेफिनेटली फीचर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बता दूं आपको खास चीजें। हाँ जी, गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही नजदीक है, ऐसे में शहर में जो है आकर्षक, जो खूबसूरत अट्रैक्ट करने वाली प्रतिमाएं हैं वो एकदम बहुत तेजी के साथ तैयार की जा रही हैं, उन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। एंड स्पेशली खुशालपुर के क्षेत्र में तो राजस्थान से भी कुछ मंगाई गई हैं, खास मिट्टी से जो है वो कारीगर भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे जाके भी थोड़ी टॉक वॉक करें और उनके साथ थोड़ी कॉन्वर्सेशन करें यार, बहुत मेहनत लगती है गणपति बप्पा को बनाने में। बस बप्पा आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी विघ्न है वो सब हर लें, जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से दूर हो जाए, हमारी तो बेस्ट विशेस हैं। आपको बताते चले, अभी सुनने में आया है भैया कि देखिए इस समय जो है नदियों में बैंक फ्लो काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली पानी का जो फ्लो है काफ़ी बढ़ रहा है, और ऐसे में हमारे डीएम साहब ने भी अपील की कि भैया जल स्तर बढ़ने की जो है वो संभावना थी, लेकिन अभी बस इतना कहना चाहते हैं कि भैया जल भराव के कारण जो आसपास के लोग हैं वो ज़रा थोड़ा सा संभल कर रहें, बहुत ज़रूरी है, और कुछ अफवाहों से भी बचने का प्रयास करें। ऐसे में क्या होता है ना, बहुत सारी अफवाहें भी आने लगती हैं हमारे सोशल मीडिया वगैरह पे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे, है ना,

मैरी कॉम की धाकड़ एंट्री होने वाली है एंड जहां पर काफी कुछ चीजें निकल कर आने वाली है. तो आई एम सुपर एक्साइटेड इस शो के लिए. काफी चर्चाओं में बना हुआ है ये शो. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिलहाल हमारा शो भी जो है काफी चर्चा में है. इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है. और आज की सुबह मैंने आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में क्या करना था ना, आपने मेरे को आंसर करना था. एक बहुत ही अच्छा मैंने आपसे सवाल पूछा है. बहुत ही प्यारा गाना है ये. मैंने आपको एक क्लू भी दिया था. समझ में आया कौन सा गाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896. दिस इज योर लास्ट चांस. अगर आज की सुबह आप पहचान पा रहे हैं कौन सा गाना है तो बड़ी अच्छी बात है यार. तीन लोगों की कहानी बहुत कुछ सिखाती है. बहुत ही कमाल की फिल्म ऑफ कोर्स आपने देखी होगी. और ये गाना बहुत प्यारा है. चलो मैसेज करो आप मुझे फटाफट से, है ना. मैं अभी लौट कर आता हूँ इमीडिएटली और उसके बाद बताता हूँ कौन है आज के शो का विनर. आप ऐसे ही हमारे साथ टिके रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए. चलो एक बढ़िया गाना करण औजला राइट हियर. हवाई स्टेशन पे निकल के आ गए धाकड़ गाने के साथ. ये धांसू गाना सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं. आप जहाँ भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट. सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए.

0: क्या बात है, मेरा दिल तो ये गाना ले गया और आपका दिल मैं ले गया हूँ, है ना। नहीं यार, कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ, यहीं पर हूँ। 10 बज चुके।
1: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर, नियर चड्डा सिनेमा।
0: छोटा सा ब्रेक था, खत्म हो गया पाजी। अब हमारी एंट्री हो गई है, वक्त हुआ है 10:02। मॉर्निंग शो सुन रहे हैं आप आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 9.6 पर। हाँ जी पाजी, मैं कह रहा था आज ट्यूसडे की सुबह 8 सितंबर है।

0: रवि गुप्ता का कॉन्सर्ट होने वाला है अपने पंचायत भवन में, अगर आप आ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, मिलते हैं फिर शाम को आपसे वहीं पर। हाँ जी, और मैं कह रहा था अभी आज की मॉर्निंग मैंने आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था यार, जिसका जवाब मुझे वैसे ढेर सारे लोगों ने तो नहीं दिया है, क्योंकि यार सवाल इतना सिंपल था एंड आई डोंट नो, 90s के तो बहुत सारे जवाब आते हैं, जब ऐसे वाले सवाल होते हैं तो थोड़े से कम पार्टिसिपेट करते हैं लोग, बट ऐसा नहीं, जरूर करते हैं यार। गाना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा ट्रैक है ये। चलो अभी यही बताने के लिए एक बहुत ही धाकड़ हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, आइए उनसे बात करते हैं बिना किसी देरी के और उनसे पता करते हैं ये जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का, बताती है ना वो। जी हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम?
1: मैं बढ़िया हूँ, आपके कैसे हैं जी?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, आप बताइए, आप भी बढ़िया होंगी आई एम श्योर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है, मैं आपको देख पा रहा हूँ अपनी मन की आंखों से, देख पा रहा हूँ जैसे आप अपने मन की आंखों से हम इमेजिन करते हैं। जी जी जी जी, बताइए अपना नाम बताइए मैम, योर गुड नेम।
1: मेरा नाम है सृष्टि जैन
0: जी,
1: और
0: जी।
1: सॉन्ग का नाम है गिव मी सम सनशाइन, थ्री इडियट्स मूवी।
0: अरे वाह, क्या बात है, कितनी बार आपने मूवी देखी है वैसे ये बताइए आप?
1: बहुत बार, गिनती नहीं है, गिनती बहुत नहीं है,
0: हर बार कुछ नई सीख मिलती है वैसे, नो डाउट है ना।
1: हाँ एक्चुअली एक अलग अलग लाइफ के अलग अलग एज पे देखो तो चीजों को समझने का तरीका बदल जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली exactly. और अगर एक ही चीज को आप रिपीट करके देखते हो तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है उस चैप्टर से।
1: हाँ ये बात तो है, सच है,
0: इसीलिए जोरदार तालियां, कंग्रेचुलेशन आपको मैम, बहुत बहुत बधाइयां। और बताइए मैम क्या चल रहा है लाइफ में, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास?
1: हाँ सब बढ़िया चल रहा है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, और इस वक्त आप अपने ऑफिस में हैं या घर पर हैं?
1: नहीं अभी मैं अपने घर पर
0: हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी जब रेडियो सुनते सुनते हमारा कॉल लग जाए या फिर हमारी बात हो जाए तो मजा आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड होता है।
1: नहीं अच्छा लगता है, रेडियो मुझे वैसे भी पसंद है काफी।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत
1: बढ़िया, सुनना आप लोग को, सुनना नई नई बातें पता चलती है, आपका नया प्रोग्राम काफी अच्छा है।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अगर मैं आपको बोलूं आपको सिर्फ 20 सेकंड में बटरिंग करनी है तो आप कर सकती हैं, नो डाउट, आपकी बातों से लग रहा है।
1: नहीं
0: मतलब जेन्युइन है वो तो है, वो तो मैम मुझे लगता है क्योंकि हम इतनी मेहनत जो करते हैं अपने प्रोग्राम्स के लिए तो उसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है।
1: हाँ नहीं वो दिखती है मेहनत, और जब मेहनत दिखती है तो फिर अपने आप ही तारीफ निकलती है, कोई बटरिंग नहीं करनी पड़ती।
0: एग्जैक्टली नहीं, मैं तो आपको एक टास्क दे रहा था छोटा सा, इसीलिए मैम बस चेक कर रहा था। एनीवेज मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लवली टॉकिंग टू यू सृष्टि मैम, और गणपति आने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं?
1: चल रही है तैयारियाँ, जोर शोर से चल रही है, हमारे यहाँ तो व्रत होते हैं उस टाइम पे।
0: अरे वाह,
1: जैन है हम तो 10 लक्ष्मण जी के व्रत आते हैं तो उसकी बस तैयारी शुरू होगी।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, सबके अपने अपने रिचुअल्स है, अपने अपने फेस्टिवल्स है, राइट?
1: हाँ सबके अपने अपने वही है।
0: बहुत बढ़िया, और सबको इंतजार भी होता है नो डाउट।
1: सही कह रही है, मतलब इनसे एक अलग ही वो एनर्जी मिलती है फास्टिंग और इन सबसे।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू नो एक कहीं ना कहीं फिर खुद को भी एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कुछ तो अच्छा कर लिया।
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा, चलते चलते आनंद के लिए क्या कहना चाहोगे सृष्टि मैम फटाफट से?
1: आनंद के लिए हाँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए,
0: क्या बात है, वो तो मैं वैसे
1: ही सुनते रहिए,
0: क्या बात है, लवली टॉकिंग टू यू मैम, इसी बात पे मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ जोरदार तालियां आपके लिए आएंगी और एक गाना।
1: ठीक है
0: चलिए मैम, ओके मैम, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। सो ये जोक सपाट था लेकिन ये भी सच था कि सृष्टि जी हमारी शो की आज विनर बनती है, कंग्रेचुलेशन सृष्टि जैन, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, जोरदार तालियां आपके लिए, सुट्टी विट्टी सब बच गई, और बाकी लोगों के लिए गाना छोड़ के जाऊंगा, और अभी मैं आपसे कहूंगा टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल मॉर्निंग, रखिए अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिए, आप भी ऐसे ही गुनगुनाते रहिए, और सृष्टि जी वंस अगेन थैंक यू सो मच, बिग कंग्रेचुलेशन, मुस्कुराती रहिए आप भी ऐसे, बाकी लोगों ने भी बहुत सारे मैसेज दिए थे। हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, इस क्वेश्चन का आंसर ये था और थ्री इडियट्स का गाना था, थैंक यू सो मच। ये मुझे मैसेज किन का आया था यार, इनका नाम मेरे को दिख नहीं रहा है,
2: उसे छोड़ दिया उसकी खातिर।
0: ओके हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग हरिओम जी, मैं बढ़िया हूँ एंड आई होप आप भी अच्छे होंगे। एक और मैसेज हमारे पास आया था, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग अफरोज जी हमारे साथ जुड़े, साथ में हमारे पास मैसेज आया था नासिर हुसैन साहब का, करूला गली नंबर 1 से गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, लिखते हैं हर सुबह एक नई उम्मीद नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत लेकर आती है, आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आए, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड हैव अ वंडरफुल डे एंड ढेर सारी सक्सेस आपको मिले आनंद पाजी. थैंक यू नासिर भाई, सेम टू यू मेरे भाई. ये कब कर लिया? चलो यार, मैं अगर गाना ही गाता रहूंगा तो फिर मैं यही रह जाऊंगा, मुझे अभी कहीं और भी जाना है. ये सुनते हैं.
3: आनंद सर, जो आपने सवाल किया है
0: जी,
3: उसका जवाब है, फिल्म का नाम है थ्री इडियट.
0: अरे वाह.
3: गाना है, सारी उम्र हम मरमर के जी लिए, अब तो हमें जीने दो जीने, ये वाला गाना है.
0: भाई आपकी जिंदगी आप भर भर के जियो.
4: अरे भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया सर, बढ़िया.
4: आई होप सो आप अच्छे होंगे.
0: ऑफ कोर्स
4: यार, मैं भी आज दो तीन दिन में बाद एफएम के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ.
0: अरे बाप रे.
4: आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर है, गाने के बोल है, गिव मी अ सनशाइन गिव मी अ रेन, मूवी का नाम है थ्री इडियट.
0: क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया. सबको पता होता है भाई साहब, सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट है. जोरदार तालियां. चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी अभी आपसे कहना चाहते हैं, ऐसे ही मस्त रहिए आप भी और ऐसे ही ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. फिलहाल जाने का समय. इसी गाने के साथ लेता हूँ इजाजत, होगी आपकी मेरे मुला मुलाकात कल सुबह सवेरे. आप देखो जुबान पे चल रही, बिकॉज सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया, जोरों की भूख लगी है. मैं निकलता हूँ, बाय.

0: दर्द दिल की फीलिंग्स।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
1: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
3: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
1: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद, 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में, शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद, हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सुन रहे हैं अपने प्यारे से दोस्त, जी हाँ प्यारे से साथी, एफएम मुरादाबाद 89.6 को, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत सोच के साथ। दोस्तों ट्यूसडे, यू नो ट्यूसडे की मॉर्निंग है और तारीख है आज 8 सितंबर की। अपने आप में स्पेशल दिन है और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 10:15। दोस्तों जिंदगी में ना हर सफल जिंदगी में हर फैसला हमारी पसंद के मुताबिक हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान का हर फैसला हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी खूबसूरत वजह से आता है। कभी वो हमारी चाहत देता है और कभी हमारी चाहत से भी बेहतर कुछ देने के लिए, बस भरोसा रखिए इसके ऊपर। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं लेकिन ऊपर वाले वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, राइट ना। अब ये बताओ मुझे दोस्तों कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है बट अच्छी लगती है, है ना। लेकिन ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन वो हमारे लिए अच्छी है, तो जो हमारे लिए अच्छी है वो ज़्यादा बेस्ट है ना। जो कुछ देर के लिए अच्छी लगे वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि मन का हो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है और जो ईश्वर देते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है। तो बस खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखिए। एंड अगर आप किसी चीज़ की तमन्ना कर रहे हैं, कोई आपकी यू नो रिक्वेस्ट है भगवान से कि मुझे ये चीज़ दिला दो, और उसमें अगर टाइम लग रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल ईश्वर ने सोचा ही है आपके लिए। बस थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए, भरोसा रखिए उन पर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और आपकी दोस्त खुशी यहाँ पर आ चुकी है, आप भी मेरे साथ इस बेहतरीन शो में कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो हमारी बहुत सारी फीमेल्स इस समय क्या कर रही होंगी, अभी कुछ तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट बना रही हैं और कुछ ऑफिस पहुंच चुकी हैं और कुछ बैठकर आराम से

रेडियो सुन रही हैं, है ना। और कुछ जो हमारे सर हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, वो जो अभी कुछ कार में सुन रहे हैं, कुछ शॉप पर सुन रहे हैं, तो कुछ अभी घर पर हैं, जो बहुत सारे कामों में व्यस्त हैं, लेकिन उनका ध्यान रेडियो की तरफ है। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और शो की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन ट्रैक के साथ। और आज क्या कुछ स्पेशल है, सब आपको खुशी यहाँ पर बताने वाली है। बस आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, जो होगा अच्छा होगा। तो चलिए मैं ना इसी बात पर सुनवाती हूँ एक बेहतरीन सा ट्रैक आज की सुबह, जो आपकी मॉर्निंग को बनाएगा और भी ज्यादा अमेजिंग। और कहते हैं ना कि जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है, सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन खूबसूरत गुजरता है, और हम चाहते हैं कि आपका हर पल खूबसूरत गुजरे एंड आप यूं ही हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
1: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी, और शो का नाम तो आपको मालूम ही है ना, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, एक खास संदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशवासियों के नाम पाती लिखी है। एंड शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशवासियों के नाम एक खास संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण की नींव रखने वाले 81 गुरुजनों को सम्मानित करने का सौभाग्य उन्हें मिला। उन्होंने शिक्षकों को समाज और देश के भविष्य का मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि शिक्षक वह दीप हैं जो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 8 सितंबर आज है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान के विस्तार और प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनने के लिए संकल्प का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि बच्चे केवल पढ़ना लिखना सीखने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं, शिक्षा का उद्देश्य उन्हें ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास देना भी है। बच्चों को जीवन को सही दिशा देने वाली समझ मिले, ये शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेखन करते हुए कहा कि हमारे गुरुकुल समग्र शिक्षा के केंद्र रहे हैं, जहां ज्ञान के साथ साथ जीवन अमूल्य और दायित्व बोध की भी शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जीवन को सरल बनाए और समाज के लिए भी उपयोगी बने। और आज टेक्नोलॉजी तेजी से हमारी जिंदगी बदल रही है। ऐसे समय में केवल डिजिटल साक्षरता ही नहीं, बल्कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ भी समय की आवश्यकता बन चुकी है। मुख्यमंत्री जी के अनुसार AI, डीप टेक और उभरती टेक्नोलॉजी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक नया अवसर खोल रही है।

लखनऊ में आईसीटी और कानपुर में ड्रोन यूएवी टेक्नोलॉजी का विकसित होता तकनीकी भविष्य की एक नई संभावनाओं का आधार बन रहा है और इस पर हम और भी चर्चा करेंगे एवरीवन, लेकिन आपके संदेशों को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि वक्त हो रहा है और मुझे पता है कि आप सभी सब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत संदेश आ रहे हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर मैसेज पहुँचाते हैं मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिर परवाना जी। आज की सुबह गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें पहुँचाती हैं सुशीला देवी जी अकोला महाराष्ट्र से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया सहारनपुर से शहीद मंसूर जी का और अगला मैसेज हमें मिलता है यहाँ पर, ये संदेश पहुँचाते हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी। आज की सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। अगला मैसेज हमें पहुँचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी। आरजे खुशी जी आपको आदाब, आपको भी आदाब सो। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसी हैं आप, आपकी दोस्त अफरोज फातिमा। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं आज की सुबह, साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं, नजवा है रामपुर से शबनम जी हैं और आपके लिए भी थैंक यू सो मच, इतने सारे आपने फ्रूट्स भेजे हैं आज की सुबह। अगर मुझे पता होता ना कि आप इतने सारे फ्रूट्स भेजने वाली हो तो मैं ब्रेकफास्ट करके ही नहीं आती। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए गुलाम जलानी पाशा जी का और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं मेरी जिंदगी है तू फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से। सर एक बात मुझे आपसे मालूम करनी है एंड आपकी मेरे पास जितने भी मैसेज आए हैं ना सिर्फ इसी गाने की रिक्वेस्ट आई है, ये गाना आपको इतना क्यों पसंद है मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी मेरे पास आपके मैसेज आते हैं तो सिर्फ इसी गाने की रिक्वेस्ट मेरे पास आती है, तो मैं जानना चाहती हूँ आखिर ये गाना आपको इतना पसंद क्यों है कि आप इसको एवरी डे सुनते हैं। माना कि गाना खूबसूरत है लेकिन कोई तो वजह होगी ना। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया प्रिय मित्र खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया आज की सुबह खुशी जी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। खुशी जी मुझे ना एक गाना सुनना है आज की सुबह, पंछी सुर में गाते हैं भवरे गुन गुनाते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये मैसेज हमें आज की सुबह पहुँचाते हैं अमित वर्मा जी हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। वैसे ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है एंड बहुत प्यारा गाना है, तो आज की मॉर्निंग सुनते हैं ना कुछ खूबसूरत गीत एंड उसके बाद लौट कर आती हूँ मैं ढेर

सारी बातों के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ बस आप बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए। और आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, गुनगुनाते रहिए। एग्जैक्टली राइट, जब प्यारे प्यारे गाने चलते हैं ना तो अपने आप गुनगुनाने का मन करता है, है ना? तो चलो गुनगुनाते हैं और मुस्कुराते भी हैं, क्योंकि जीवन ना मुस्कुराहट के बिना अधूरा लगता है। तो आप मुस्कुरा भी दीजिए और ये गाना एंजॉय कीजिएगा। मैं वापस आती हूँ अभी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
4: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
3: तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

दोस्तों, कभी कभी ना बड़ी कहानियों की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में रखी किताब और जिज्ञासु मन से होती है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ आपकी खुशी और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ये कहानी है एक आम लड़की के खास सफर की। दोस्तों, कहानी है 21 साल की अनुप्रिया नागर की, जिनकी जर्नी शुरू हुई एक कॉलेज असाइनमेंट से, लेकिन देखते ही देखते ये असाइनमेंट उन्हें बड़े पद तक ले आया। दरअसल अनुप्रिया नागर ने नीम करोली बाबा के जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान उन्हें बाबा के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें जानने को मिली जिन्हें उन्हें डीपली इंस्पायर किया और यहीं से जन्म हुआ एक फिल्म विचार का, हनुमान अंश का। सोचिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉलेज असाइनमेंट और वही असाइनमेंट आगे चलकर एक प्रेरणादायक फिल्मी सफर की शुरुआत बन गया। अनुप्रिया की कहानी हमें एक खूबसूरत बात याद दिलाती है दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो मंजिल भी बड़ी हो सकती है। कभी कभी हम अपने आइडिया को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन शायद वही छोटा सा आइडिया आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ड्रीम है, कोई आइडिया है, कोई ऐसी कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ सोचिए मत, उस पर काम कीजिए क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत कभी ना कभी एक छोटे से कदम से होती है। मैं आपकी दोस्त आरजे कृषि, और याद रखिए एवरीवन, आपकी कहानी भी खास है, बस उसे लिखने की शुरुआत आपको खुद करनी होगी। और अभी यहाँ पर आपकी खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन के साथ आपके मैसेज भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ये सिलसिला भी बहुत खूबसूरत होता है, ये सफ़र, जब आप अपने प्यारे प्यारे संदेश, अपने दिल की बातें, अपने थॉट एंड कोई ट्रैक जो आपको बेहद पसंद है, जो आपको दिल से खुशी देता है या फिर किसी की यादों से जोड़ देता है, तो वो भी स्पेशल मोमेंट होता है। और हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं। और यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है गुड मॉर्निंग ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, और साथ में उनके दोस्त हैं रईस दुल्ला अंसारी जी। हैव अ लवली डे खुशी मैम, आपका शो और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड सर भी ट्रैक की रिक्वेस्ट भेजते हैं आज की सुबह। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है राशिद नाज जी का, ये मैसेज अपना पहुँचाते हैं पाकिस्तान कराची से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं उत्तराखंड से। प्रिय आरजे जी, आपको हमारा प्यार भरा आदाब, आपको भी आदाब सर। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। लाजवाब प्रस्तुति, शुक्रिया आपने हमारा मैसेज शामिल किया, मोस्ट वेलकम सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, और आपने जो बीजीएम रखा है ना बैकग्राउंड में, बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू, आपको पसंद आ रहा है, शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कुछ खूबसूरत गीत, उसके बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपसे भी ढेर सारी बातें और गेम्स पे खेलने वाले हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बस बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6, और अपने मुरादाबाद शहर में भी क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट मिलने वाली है यहीं पर।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
0: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अब बात कर लेते हैं अपने मुरादाबाद की लोकल अपडेट की। दोस्तों, मुरादाबाद मुरादाबाद से रेलवे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर सामने आई है। दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्य की लगातार समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही है। इस योजना का मकसद स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और आराम सुनिश्चित कराना है। यानी आने वाले समय में मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधा देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए वाकई गुड न्यूज है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद के वेदर के बारे में कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है। मुरादाबाद में आज के दिन की शुरुआत तेज धूप और उमस के साथ होगी। देखिए दोस्तों, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दोपहर के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। शाम से रात के बीच गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो बाहर निकलते समय मौसम का अपडेट जरूर रखें और रात के सफर से थोड़ा सावधानी बरतें एवरीवन, ठीक है। और बाकी यहाँ पर वक्त मैं आपको बता देती हूँ, अभी समय हुआ है 11:09 और आपके खूबसूरत जो संदेश आए हैं मैं उनको भी लगातार शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं और ये मैसेज हमें पहुँचाया है रानी नागर से रिहाना जी ने आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन, आप बताओ कैसे हाल चाल है आपकी। और ये ट्रैक सुनना चाहती है, तुमने पुकारा हम चले आए, सच में। अगला मैसेज हमारे पास आया, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू? माय नेम इज एंजल, मैं मुरादाबाद लाइन बार से हूँ और मैम प्लीज मुझे एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा आज की सुबह। बिल्कुल सुनवाएंगी, थोड़ा इंतजार करो आप। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग जी, माय नेम इज प्रिंस, मुरादाबाद से एक सॉन्ग मुझे सुनवा दीजिएगा हम सफर, वरुण एंड आलिया, उस ट्रैक में उनके ऊपर फिल्माया गया प्यारा सा ट्रैक है। बिल्कुल सुनवाएंगी प्रिंस, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा नहीं बस इंतजार करवाती नहीं है। चलो आप ये गाना सुनो, मैं लौट कर आती हूँ, ठीक है दोस्तों। और नई अपडेट के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

दोस्तों, हम जानते हैं आपका आपके दिल का हाल, क्योंकि मुझे पता है आप भी ये सबरे से हमारा इंतजार कर रहे थे। और हम हाजिर हो गए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और दोस्तों, अब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की बड़ी खबर सामने आ रही है। हाँ जी, क्रिकेट के मैदान पर अपने शानदार खेल से फैंस के दिलों पर राज करने वाले हिटमैन रोहित शर्मा अब टीवी की दुनिया में भी अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। रोहित शर्मा जी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के नए फिल्मी एंटरटेनमेंट शो फिल्मी फुल हाउस में बतौर होस्ट अपना टीवी डेब्यू करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या टीवी पर आने के लिए रोहित शर्मा जी को क्रिकेट से दूरी बनानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई के नियमों में एक्टिव क्रिकेटर्स के टीवी शो को होस्ट करने पर कोई रोक नहीं है। रोहित शर्मा जी फिलहाल वनडे क्रिकेट और 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी पर अपना पूरा फोकस बनाए हुए हैं, यानी क्रिकेट भी जारी रहेगा और अब टीवी पर भी रोहित जी का नया अंदाज देखने को मिलेगा। आप सब तैयार हैं ना? वेरी गुड। और यहाँ पर कुछ और खूबसूरत संदेश आए हैं, मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी लदावली जिला मुरादाबाद से। एक से बढ़कर एक लाजवाब सॉन्ग सिलेक्शन, अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, हेलो खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज पहुँचाती है ललिता कश्यप जी नवीन नगर मुरादाबाद से। मौसम बहुत औसम हो रहा है। ओहो रियली? बादलों की घटा छाई, मौसम ने ली अंगड़ाई, ठंडी ठंडी हवाओं ने नई खुशियां बरसाई। खुशी मैम की प्यारी मुस्कान जब सामने आती है तो हर मौसम में जैसे बाहर आ जाती है। अच्छा, तभी आपने मुझे छाता भेजा है। ये अम्ब्रेला बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन मैम, थैंक यू। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, जाने मन तू खूब है। और वाह क्या बात है, अक्षय कुमार पांडे का ट्रैक आपको जरूर सुनवाएंगे मैम। अगला मैसेज हमारे पास आया है, हाय मैम, माय नेम इज अतुल चौधरी मुरादाबाद से। खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारे सी गाने की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। डेफिनेटली इस ट्रैक को हम प्ले करेंगे सर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है अनुश्रेया का, और अनुश्रेया हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाती हैं, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। और नई अपडेट के साथ हम कनेक्ट होते हैं, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। और अभी लौट कर आऊंगी ना, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? आप सब तैयार हो जाइएगा।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
3: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली। छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में। मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
2: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और एवरीवन, जब हम अपने मम्मा पापा का हाथ पकड़ कर चलते हैं ना, तो हमारी राहों में चाहे कितने भी मुश्किलें आए, हम उसका सामना कर लेते हैं। इसीलिए हमें डर नहीं लगता है। और मम्मी पापा के बारे में जितना बोला जाए यार, उतना कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। वो हमारी दुनिया है और उनके साथ जितना भी टाइम हम स्पेंड करते हैं, कम ही लगता है। और उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमारे साथ होती ही हैं। और ये खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना फ्रॉम द मूवी लाडला से। इस ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अतुल चौधरी जी ने मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। कहाँ से आया है ये मैसेज मैं जरा देख लेती हूँ। हमारे पास पहुँचाते हैं कोमल शर्मा जी का मैसेज हमारे पास आया है आज की सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बिल्कुल कोमल जी, ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे। आपके नाम की तरह ये ट्रैक भी बड़ा प्यारा सा है, कोमल सा। और यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है खुशी जी, खुशी

जी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छी होंगी हमेशा की तरह। आज भी आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर हो सके तो आज मुरादाबाद की कोई नई और खास अपडेट भी प्रोग्राम में जरूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल सर, मैंने बहुत सारी अपडेट अपने मुरादाबाद शहर के बारे में बताई है, अगर आपने सुना होगा तो आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कहते हैं कि इन्होंने लिखा है और बहुत सारी शुभकामनाएं पहुंचाई है फिर मुरादाबाद की पूरी टीम को। और ये कहते हैं कि मैम आज मेरी तरफ से पंजाबी सॉन्ग की मेरी छोटी सी फरमाइश है, उम्मीद है कि आप उस ट्रैक को प्ले करेंगी। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतरीन आज की सुबह अपना संदेश हमें पहुंचाया है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके? नईमूल अकरम जी का मैसेज आता है सिरसवा दोराहा से, हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे ही होंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास अभी आया है यहाँ पर विकी सागर जी का, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से, और दोस्तों मैंने एक म्यूजिक आपको आज की सुबह गेस्ट करने के लिए देने वाली हूँ, बट अभी पूछ लिया जाए या एक गाना सुनवा दिया जाए, क्या कहती है हमारी ऑडियंस? अच्छा चलो एक गाना सुनवा देते हैं आपको, ठीक है? उसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बहुत खूबसूरत गाने का म्यूजिक मैं प्ले करूंगी, आपको गेस करना है कि वो कौन से फिल्म का ट्रैक है और बड़ी खूबसूरत आवाज में उसको गाया हुआ है। लौट कर आते हैं तो हम आपको बताएंगे, सब कुछ अभी नहीं बता रहे हैं, ठीक है? और सुनेंगे अभी एक बेहतरीन सा ट्रैक, बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गाना। मैं लौट कर आती हूँ, बस आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ।

0: मैडम
1: जी, जी मैं बिना खादी
2: क्यों है
1: वो छड्डो में जमे सी ना
2: इंज ना के
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: मुरादाबाद 8 सितंबर को जमेगी हंसी की महफिल।
1: रात में 10 बजे के बाद मैं निकलता हूँ, मेरा खुद लूटने का मन करने लगता है। एक वाइब है, एक माहौल है यहाँ की हवा में, मन कर जाता है।
0: तैयार हो जाइए क्योंकि आ रहा है वो इंसान जो कहता है कल की चिंता नहीं करता। रवि गुप्ता कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 8 सितंबर पंचायत भवन मुरादाबाद में शाम 4 बजे और रात 8 बजे। तो मुरादाबाद हंसने के लिए हो जाओ तैयार। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

देखिए दोस्तों, हम अपने वादे के अनुसार लौट कर आ गए हैं और हमने आपसे कहा था कि हम एक म्यूजिक प्ले करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा यू नो हिट ट्रैक है वो और ऑलमोस्ट सभी ने सुना है उस गाने को। तो बस आपको, अगर आपने उस गाने को ध्यान से सुना है ना, तो आप उसका म्यूजिक गेस कर पाएंगे और बताएंगे कि कौन सा ट्रैक है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये म्यूजिक और आप मुझे बताएगा कि ये कौन से ट्रैक का म्यूजिक है।

जी अगर आपने गेस कर लिया है तो फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताएगा कि कौन सा ट्रैक है, जिस ट्रैक का मैंने म्यूजिक प्ले किया है आपको उस ट्रैक का नाम बताना है, और बस इतना सिंपल सा काम आपको करना है। आज की सुबह ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे आपसे, आप निश्चिंत रहिए और बताइएगा कि ये कौन से ट्रैक का म्यूज़िक है, अपने नाम के साथ एंड अपने सिटी का नाम भी ज़रूर लिखिएगा और सही जवाब हमें पहुँचाइए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

Hey, hi everyone. Good morning. Once again, welcome back. अभी आपने सुना ये amazing track. Meet Brothers. सत्विन एंड साथ में दानिश शाबरी जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज में खूबसूरत ट्रैक. और दुआ तो हम भी करते हैं कि आप सभी हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, अपने अपनों के साथ रहें. और आज की सुबह मैंने आपसे ना एक म्यूजिक एक ट्रैक का म्यूजिक पूछा था और बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है, सभी ने ऑलमोस्ट उसको सुन के रखा है और जिसने ज्यादा ध्यान से सुना है वही आज का हमारे शो का लकी सुपरस्टार बनेगा. तो एक बार मैं फिर से ना म्यूजिक प्ले कर देती हूँ, आप गेस कीजिएगा.

हाँ जी, तो आज की सुबह बस मैंने यही पूछा था कि आप मुझे बताइए ये कौन से ट्रैक का म्यूजिक है, और हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब आए हैं। लगता है कि हमारे जो श्रोता है ना, वो बहुत ध्यान से गानों को सुनते हैं, तभी म्यूजिक जल्दी से गेस कर पाए हैं और बहुत सारे सही जवाब आए हैं। पहले तो आप सभी के लिए जोरदार तालियां। ये जोरदार क्लैपिंग्स आप सभी के लिए, क्योंकि आप सबने बहुत कम टाइम में सही जवाब दिया है। और लेकिन हाँ, शो के लगे विनर तो एक ही बनेंगे, और वो कौन है मैं आपको बता देती हूँ, अब इंतजार बिल्कुल नहीं करवाती। और हमें सबसे पहले सही जवाब पहुंचाते हैं कोमल शर्मा जी। ट्रैक था शरारा शरारा, एग्जैक्टली राइट आंसर यही है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कोमल शर्मा जी, बहुत बहुत बधाइयां, आज की हमारे शो की बनती हैं आप सुपर क्वीन। तो ये जोरदार तालियां आपके लिए। एंड नेक्स्ट, उसके बाद हमें सही जवाब यहां पर पहुंचाते हैं विकी सागर जी, हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से, क्योंकि ये भी इस ट्रैक को बहुत ज्यादा सुनते हैं। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है सर की कि प्लीज ये वाला गाना सुनवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सही जवाब के साथ जुड़े सर आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी है आज की सुबह। फ्रॉम द मूवी मेरे यार की शादी, और ट्रैक है मैम लहरा के बल खा के। ओ हो हो, क्या बात है जी। नेक्स्ट सही जवाब हमें पहुंचाती है रिहाना जी। एंड उसके अलावा एक और हमारे पास सही जवाब आया है दीक्षा फातिमा जी का, लहरा के बल खा के सॉन्ग है मैम। ओहो ठीक है, तो अभी लहराइएगा भी बलखाइएगा भी आज, क्योंकि ये गाना हम आप सभी के लिए प्ले करेंगे आज की सुबह। और दोस्तों, मैंने ये म्यूजिक क्यों पूछा था, इसका रीजन क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। दोस्तों आज 8 सितंबर को संगीत की दुनिया की दिग्गज गायिका आशा भोसले जी की आज जयंती है। 1933 में महाराष्ट्र के सागली में जन्मी आशा जी ने महज 10 साल की उम्र में गायन की शुरुआत की। मशहूर गायिका लता मंगेशकर जी की बहन और महान संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर जी की बेटी आशा जी ने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई भाषाओं में हजारों गीत गाए, और रोमांटिक से लेकर गजल और शास्त्रीय संगीत तक हर अंदाज को अपनी आवाज में उतारा। दोस्तों आशा भोसले जी एक ऐसा नाम है जिसने अपनी आवाज से मोहब्बत को एहसास दिया, खुशियों को गीत दिया और संगीत को एक अलग अंदाज दिया। वक्त गुजर जाता है, कलाकार चले जाते हैं, लेकिन सच्चे सुर कभी नहीं मरते। आशा जी के गीत गाए गए गीत आज भी जब रेडियो पर बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आवाज के जरिए हमसे कुछ कह रही है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें दिल से नमन करते हैं और उनकी अमर आवाज को एक खूबसूरत सा सलाम। आशा जी आज हमारे बीच नहीं है, मगर आपके सुर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, एक खूबसूरत सा गाना जो

नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए, हाय गुड मॉर्निंग मैम, मुस्कान का मैसेज आया है हमारे पास, वेरी गुड मॉर्निंग मुस्कान। तो चलिए दोस्तों अभी मैं चलती हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात करूंगी, सी यू सून। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनों के साथ रहिए, ठीक है? अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा और सुनिएगा ये खूबसूरत से गाना।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती, गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ तो इसे कैसे पहचाना जाए, अब जांच करानी चाहिए, कब जांच करानी चाहिए और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आरजी रीना, सरल भाषा में कहते हैं जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
0: दृष्टि चक्र वह कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए आरजी रीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
0: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
1: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: आर्जेरिना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
0: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
1: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण

0: हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
2: किस तरह का भोजन करें?
1: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
2: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
2: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
0: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
2: अच्छा?
0: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
2: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
0: बिल्कुल सही आरजे रीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
2: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
0: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
1: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
2: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
1: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
0: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
2: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उससे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
3: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ के लिए, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी, जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
3: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
3: ठीक है मैम।
4: इसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
3: ऑलराइट। ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच?
4: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
3: ओके, ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
3: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
3: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
3: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है, इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
3: ओके।
4: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
3: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल।
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
3: हाँ जी, ये दालें भी, आई थिंक
4: दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबिन भी होता है,
3: राइट,
4: हीम प्रोटीन होता है,
3: राइट।
4: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए, उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
3: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना,
3: सारे
4: विटामिन, और जितने सेब हैं,
3: हाँ जी, जो फ्रूट्स
4: हैं, ओके, फ्रूट्स हैं,
3: मौसमी फल को ज्यादा
4: बिल्कुल
3: शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
3: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
3: हाँ जी,
4: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
3: ओके,
4: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
3: ओके।
4: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
3: कम हो जाता है।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
3: ओह माय गॉड,
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
3: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
4: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
3: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं किसी डॉक्टर को, जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
3: That's very nice, ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you, ma'am.
4: Welcome.
3: हमारे साथ आने के लिए गाइज आप हिम्मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत से लाभ कई और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जांच के बारे में बताया था और आज उसी श्रृंखला की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे सामान्य टीबी की इलाज की, दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी के इलाज की, बच्चों में टीबी के इलाज की और उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले सेहतिया सिंह। सेहतिया भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरजे रीना, और रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले कार्यक्रम के बाद जिस तरह लोगों ने सवाल पूछे हैं, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं और यही बदलाव सबसे जरूरी है। क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं जीती जाती, यह लड़ाई घरों में, परिवारों में, गांव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी ही जल्दी लोग जाँच कराएंगे और जितनी जल्दी जाँच कराएंगे, उतनी ही जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन भाई, आज की शुरुआत में एक ऐसा सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है, उसके मन में क्या चाह है? कई लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई, कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वकाई ऐसा है?
1: बिल्कुल नहीं आरजे रीना, मैं बताना चाहूंगा कि आज पूरे कार्यक्रम में सबसे पहला संदेश यही है कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं, समस्या है बीमारी को छिपाना, समस्या है जांच में देर करना और समस्या है दवा बीच में छोड़ देना। अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू कर तो देते हैं, फिर बीच में छोड़ देते हैं। और मुझे याद आ रही है कि एक घटना जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सीख बन सकती है।
1: हाँ बिल्कुल आरजेरीना, ऐसा भी हो सकता है। एक सच्ची घटना सुनाना चाहता था। कुछ साल पहले पास वाले एक कस्बे में राम बाबू नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी था, लेकिन उन्हें शराब की लत लगी थी। सुबह काम, शाम को शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता। लोग कहते जांच करा लो, लेकिन वह हंसकर टाल देता। कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, दो दिन आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। करीब दो महीने बाद हालात बिगड़ गए। जब अस्पताल में पहुँचे, जाँच हुई तो टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाई शुरू कराई। हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी, खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन उन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने सोचा, अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बीच में ही बंद कर दिया, फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, और शराब नहीं छोड़ी, फॉलोअप जांच भी नहीं कराई और ना ही वो जांच कराने गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रही।
1: बिल्कुल, और कुछ ही महीनों बाद पहले से ज्यादा गंभीर रूप के साथ वापस लौट आई ये बीमारी। दोबारा जांच हुई और इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधक टीबी यानी MDR टीबी हो गया है। अब इलाज ज्यादा कठिन था, दवाइयाँ बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर लगाए गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया। और दुर्भाग्य से, क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी थी और इसका इलाज को गंभीरता से नहीं लिया था, उनकी हालात लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया।
0: बहुत दुखद कहानी है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी होती है।
1: बिल्कुल आरजे रीना, और इसीलिए मैं श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज का कोई दर्द की गोली नहीं है कि दो दिन में खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है, उतनी अवधि तक जो है लेनी होगी ये दवा, तभी बीमारी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या हर महीने मरीज को एक जैसी दवा मिलती है या क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आर्चरीना। सबसे पहले श्रोताओं को यह जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP के तहत टीबी की जाँच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाई दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी है या दवा प्रतिरोधक टीबी, और आगे की चर्चा हम इन्हीं दोनों प्रकार पर विस्तार से समझेंगे। खांसी रहे 2 हफ्तों से पार, जांच कराना है समझदार, टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
0: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता है। हमने राम बाबू की कहानी भी सुनी जिसने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है तो उसका इलाज आखिर होता कैसे है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आर्जेरीना जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार यह इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक नहीं बल्कि कई दवाइयों का मिश्रण होती हैं, जिन्हें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन या सुनिश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर?
1: बिल्कुल आजीरीना, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कई मरीज दवा शुरू करने से कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है, बुखार उतर जाता है और वजन फिर से बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगी है, और यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है, इसीलिए दवा देना खुद को वो बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में ही छोड़ दी गई तो कीटाणु बच सकते हैं और यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ले आ सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा हो तब भी दवा जारी रखनी चाहिए?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक ही लेना जरूरी है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं है, मरीजों को समय समय पर फॉलोअप जांच भी जरूर करानी चाहिए। कई बार डॉक्टर मलगम की जांच या दूसरी जांच कराते हैं ताकि यह पता चल सके कि इलाज सही दिशा में किया जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं बल्कि नियमित निगरानी भी उसका हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आर्जेरीना।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की भी बात, क्या बच्चों का इलाज अलग होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों में टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता, कभी भूख कम लगती है और कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी है, बुखार है, वजन घटे या फिर घर में किसी को टीबी के मरीज संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जाँच कराना जरूरी जरूरी जरूरी है। बच्चे का इलाज भी मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा थोड़ा ठीक दिखने लगे तब भी दवा बिल्कुल बंद ना करें, पूरा कोर्स करने के बाद ही आप बच्चे की दवा बंद कराएं। और जरूरी बात, जितना जरूरी बड़ों में है उतना ही जरूरी छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
0: साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वह है इलाज को पूरा कराना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते। क्या सरकार इस दिशा में भी काम करती है?
1: हाँ, सरकार यह समझाती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, यह पोषण, आर्थिक स्थिति और समाज सहयोग से भी जुड़ी है, इसीलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीवी मरीजों को पोषण से संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे इसके दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीवी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो बीमारियों से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों ही मुश्किल हो जाता है।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है, इसका नाम भी लोग काफी सुनते हैं।
1: निक्षय मित्र वास्तव में एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे समाज के लोगों की समस्याएं स्वयं सेवा संगठन, स्कूल, कॉलेज या उद्योग या कोई इच्छुक व्यक्ति टीवी के मरीज की सहायता कर सकता है, कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है और कोई भावनात्मक सहायता दे सकता है। इसका उद्देश्य यह है और संदेश देना है कि टीवी के मरीज अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ। और निक्षय साथी
1: आमतौर पर परिवार का जिम्मेदार सदस्य है या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वह मरीज को समय पर दवा देने और उसको याद दिलाने में हेल्प करता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशान या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग करता है। कई बार एक जिम्मेदार निक्षय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर बात करना चाहूंगी। MDR टीबी, लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, आखिर यह क्या होता है?
1: MDR टीबी यानी टीबी सरल भाषा में कहे तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती। यह अक्सर तब होता है जब मरीज दवाइयां बीच में छोड़ देता है, नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज को सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसका उदाहरण थी। जब टीवी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते हैं तो वे कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक विकसित कर लेते हैं और फिर सामान्य इलाज कम नहीं करते।
0: सुनकर डर लगता है, क्या MDR टीवी का इलाज संभव है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना संभव है। यह संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए कि पहले MDR टीवी यानी टीवी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता है, लेकिन अब भारत में काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BPALM नामक आधुनिक उपचार अधिगत उपलब्ध कराता है। इसमें वेटाविक्लीन, प्रोटोमैनिड, लाइनजोलिड और मोक्सीफ्लोसासिन जैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में क्रम छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहे हैं, लेकिन यह निर्णय डॉक्टर की जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोधक की स्थिति देखकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं। MDR टीबी का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए विशेष जांच की जाती है और मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोधक जांच, इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवा का चयन किया जाता है।
0: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज्यादा। उदाहरण के तौर के लिए मधुमेह, पान, डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों है तो दोनों का इलाज साथ साथ कराना जरूरी है। अनियंत्रण शुगर टीवी को गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों में टीवी का खतरा अधिक होता है, इसीलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है। तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब
0: की बात तो राम बाबू की कहानी में भी सामने आई थी।
1: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं।
0: अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को करना चाहिए?
1: सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है आर्जेरीना। दूसरों की बात परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को जरूर, क्योंकि कई बार बीमारी शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखाती। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रोडक्टिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान बात है। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियों और दरवाजे को खुला रखें, खांसते या छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें और साथ ही खुले में थूकने से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार के बाकी सदस्य भी को भी सुरक्षा की मदद मिलती है।
0: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेश में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे?
1: श्रोताओं, आठवीं बात याद रखना आग्रह करना चाहूँगा, पहला टीवी की पूरी तरह ठीक हो सकती है, दूसरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जांच और इलाज मुफ्त है, तीसरी बात दवा कभी भी बीच में ना छोड़ें, और चौथी बात फॉलोअप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें, पांचवी बात पोषण और आराम और परिवार को सहयोग दें और साथ ही साथ इलाज का महत्वपूर्ण इच्छा बने, छठी बात MDR टीवी उपचार योग्य इसलिए निराश ना हो, साथ ही परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग कराएं, और आठवीं टीवी मरीजों से भेदभाव नहीं उनका सहयोग करें।
0: बहुत सुंदर संदेश। साथियों याद रखिए, टीवी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे,
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
0: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कहीं, दवा न छोड़े बीच सफर में, छुपी है पूरे असर में, पोषण सहयोग उपचार सही, टीवी हारेगी जीतेंगे सभी।
0: क्या बात है श्रोताओं, इसी के साथ लेते हैं हमें यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी। और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान भी उपस्थित है हमारे बीच में। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड से हमारे साथ सिंह वरिष्ठ प्रबंधक जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आज सर के साथ बहुत सारी बातचीत हम करने वाले हैं स्टूडियो में और ढेर सारी जानकारियां जो है किसान भाइयों आज आपको मिलने वाली है। तो आइए सर का स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 के स्टूडियो में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? नमस्कार।
2: मैं बहुत अच्छा हूं आनंद जी, और जो आपने स्वागत किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो धन्यवाद। और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार
0: जी। और आज का विषय बहुत ही स्पेशल है। आज की वार्ता का जो विषय है वो है घुलनशील पोषण उत्पाद एवं उनके लाभ। आज इस पर हम बात करेंगे। सर आपका स्वागत है हमारे स्टेशन में।
2: आनंद जी स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा और मेरी जो कंपनी चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार जी, और स्वागत इस कार्यक्रम में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
2: पीएम प्रणाम योजना है,
0: पीएम प्रणाम योजना,
2: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
0: जी,
2: उसमें जो पोषण का तरीका है उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
0: जी जी,
2: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है उससे जो होने वाले नुकसान है उनसे हमारी खेती बचे, नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है
0: जी।
2: तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है।

0: एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी होती। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
1: जी,
0: कंपोस्ट खाद है
1: जी,
0: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाए, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं, 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में, अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा, और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो जो हमारे उर्वरक है या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए, और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है, हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें, अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जांच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं, और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
2: इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
0: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें, अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा, अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
2: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
3: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना, हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती मां हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
2: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर आपका स्वागत है एक बार फिर से,
1: और इसी बात के साथ बिना किसी देरी घुलनशील पोषण क्या है और इसके लाभ क्या है इसके बारे में बताइए।
0: जी हाँ, घुलनशील पोषण मतलब ऐसे मान के चलिए कि जो भी रासायनिक उर्वरक किया और उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं वो स्थूल रूप में होते हैं, दाने के रूप में होते हैं या चूरे के रूप में होते हैं और उनको हम अपने खेत में फैलाते बिखेरते मिट्टी में मिलाते हैं। लेकिन पोषण की अन्य तकनीकियां भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे कि हम उनको घोलें और पानी में अच्छे से घोल के फिर हम उसका छिड़काव, उस समय ये क्यों आवश्यक है या इसकी क्यों आवश्यकता होती है, हमें इसके क्या लाभ हैं? इसके लाभ ये होते हैं कि जो हमारी खड़ी फसल है उसमें फसल हमारी अच्छी बड़ी हो गई, अच्छा साइज ले गई है, तो अगर उसमें हम कोई उर्वरक इस्तेमाल करते हैं जो हमें छींट के डालना है तो उसके आड़े क्या आता है, फसल के पत्ते आ जाते हैं और वो मिट्टी पर सही ढंग से नहीं आ पाती और जो है जो हमारी फसल है उसके पत्ते के ऊपर गिरती है तो वो पत्तों को भी खराब करती है।
1: हाँ जी,
0: नंबर एक ये है
1: जी।
0: दूसरा ये है कि जब भी इस तरह के हम उर्वरक प्रयोग करते हैं जो कि स्थूल रूप में होते हैं तो उनका बहुत सारा हिस्सा नष्ट भी हो जाता है, हवा में उड़ के है या जो पानी के साथ नीचे जो है आपका निकल जाता है, बह के चला जाता है। तो इन सारी जो स्थितियों से जो हम एक तरह से इस तरह का बचाव करें कि जो भी पोषण हम दें वो पौधे को सीधा मिले और पूरी पूरी मात्रा में मिल जाए। तो जो भी ये हमारे जो इस तरह के उर्वरक हैं जो कि पानी में घोल के इनका स्प्रे किया जाता है, उनके अंदर ये विशेषता होती है कि वो पूरी पूरी मात्रा में पौधे को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो पौधे की पत्तियां हैं उनके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में स्टोमेटा बोल देते हैं, वो इसको सोखती हैं और अपना जो उनका तंत्र है जाइलम फ्लोएम जो भी है उसके द्वारा जो पौधे के हर अंग में इसको भेजती है, हर एक सेल में हर एक कोशिका में इसको भेजती है जिससे उसका अच्छा विकास होता है, अच्छे से पोषण मिलता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप पौधे की मांग के अनुसार ही इस तरह के पोषक तत्व या इस तरह के उत्पाद चुन सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि हमें इसमें 5 तरह के सूक्ष्म तत्व देने हैं और एक मुख्य तत्व देना है तो उस तरह का उत्पाद भी आज की तारीख में उपलब्ध है बाजार में। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई खास पोषक तत्व है उसका भी हो सकता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं कि हम इसमें इसको ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि एक हमारे पास एक तकनीक आई है ड्रोन तकनीक, आमतौर पर शादियों में भी हम देखते हैं फोटोग्राफी के लिए होता है लेकिन इसका खेती में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे उन्हें जिनके अंदर हम घोल की टंकी लगाते हैं, फिर उसमें जीपीएस लगा होता है, फिर वो उस हिसाब से मार्क करके खेत में समान रूप से फसल के ऊपर छिड़काव करता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है और बिल्कुल सही मात्रा में पोषण हमारे पौधे को मिल जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप धीरे धीरे प्रयास ये करें कि ड्रोन तकनीक जिंदगी का आप इस्तेमाल करें। और ये जो इस तरह के जो जो मतलब अब मैं ये कहूँ कि आपकी जो ये है सिर्फ इसी के लिए इस्तेमाल नहीं, इससे कीटनाशक का भी इस्तेमाल जो स्प्रे कर सकते हैं और जो खरपतवार नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं, फफूंद नाशी का भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन पोषण में इसका खास महत्व है क्योंकि जब आप खेत में घुस नहीं सकते हैं तो ये ऊपर से ही आप एक जगह बैठे रिमोट से कंट्रोल करके ये आराम से काम कर। आजकल ऐसा भी है कि सपोज अगर आपके पास नहीं है तो बहुत से लोग रिमोट रखते हैं, भारत सरकार ने अपनी योजना लाई है उनसे आप उनको आप अनुरोध करेंगे, वो आपके आएंगे, आपसे वो एक शुल्क लेंगे और आपके यहाँ पर वो ड्रोन से स्प्रे करके जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आगे के समय में ये सब तकनीकियां हमारे और जो काम आएंगी और हमें सहायता करेंगी अच्छी खेती करने के लिए। तो ये जो ऐसे उत्पाद हैं, जो ऐसे पोषण उत्पाद हैं जो पानी में घोल के स्प्रे किए जाते हैं, इनके लाभ तो मैंने आपको बताई, इनके उपयोग की जो तकनीकियां हैं उनमें भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां मैं समझता हूँ किसान इनका संज्ञान लेंगे और इनको अपनी खेती में बढ़ावा देते रहेंगे।
1: क्या सर प्रश्न है, उत्तम प्रणाम क्या है?
0: उत्तम प्रणाम, हाँ बिल्कुल। अब मैं अपनी कंपनी का एक उत्पाद है जिसका नाम है उत्तम प्रणाम। यह एक तरह से फास्फोरस युक्त उत्पाद है और इसके अंदर बहुत सारे और भी सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध हैं।
1: अच्छा,
0: अब ये जो उत्पाद है
1: जी,
0: यह हमारी फसल को एक सही समय पर जो मतलब पोषण होना चाहिए वह देता है। इसके दो समय पर इस्तेमाल हो जाते हैं। पहला होता है बीज उपचार, लेकिन अब बीज उपचार क्या है कि फसल हमारी खड़ी है, खड़ी फसल में अगर हम इसको देना चाह रहे हैं तो हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और ऐसी अवस्था पे स्प्रे करें जबकि हमें लगे कि फसल को एक पोषण की जरूरत है, तो उस समय पर ये उत्तम प्रणाम है। काफी लाभदायक उत्पाद है, 250 ml की पैकिंग में भी आता है, तो ये 250 ml एक एकड़ के लिए है तो उसी हिसाब से इसकी पैकिंग जो तैयार की गई है। आप इसका प्रयोग करके अनेक लाभ अपनी फसल में ले सकते हैं, उसका विकास अच्छा होगा और उसका तने वगैरह का विकास भी बड़े अच्छे से होगा।
1: अरे वाह जी, बहुत बढ़िया सर। इसी बीच मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि उत्तम प्रणाम का उपयोग कैसे और करें?
0: हाँ, उत्तम प्रणाम का कैसे और कब उपयोग करें?
1: जी,
0: तो कैसे करें उसमें आप देखिए, इसका स्प्रे करना है जो फसल के ऊपर, सामान्यतः सभी फसलों के लिए 250 ml 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कीजिए। अगर आपकी फसल आपको लग रहा है कि 200 ml पर वो आपके जो 200 लीटर पानी ज्यादा है तो 150 लीटर पानी ले सकते हैं, और आपको लग रहा है कि थोड़ा पानी की ज्यादा तो 250 लीटर भी आप पानी ले सकते हैं और जो फसल पे छिड़काव आपको करना है।
1: जी जी,
0: आपने पूछा कि जो इसकी मतलब जो कैसे करें स्प्रे, इसके बारे में पूछा है
1: जी,
0: उपयोग कैसे करें और जो मतलब कब करें तो अलग अलग फसल की अवस्थाएं हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे धान की जो फसल है उसमें जब शाखाएं जो निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा सघन होना शुरू हो जाता है उस समय पर इसका आप करें। और दूसरा, अगर आपको लगता है फिर भी आपको आवश्यकता पड़ रही है तो जब इसकी जो है फूल बनने की अवस्था है या जब आपको लग रहा है कि फूल बना अनाज भी बनना शुरू हो गया उस समय पर भी आप इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। दो स्प्रे रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपको लगता है दो नहीं हो पाए तो एक स्प्रे करके भी इन बीच में कोई भी समय चुन के आप धान में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी फसल फिर आती है कपास है, इसका जो शाखा विकास है, फूल बनने की अवस्था है, इनमें से कोई भी अवस्था आप जो चुन लें उस अवस्था पर आप इसका स्प्रे करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। फसल का जो तना है, फूल का जो विकास है और जो भी इसका पूरा जो तंत्र है वो सशक्त हो जाता है और फिर वो ज्यादा मात्रा में फल और उसका फूल का वो जो एक तरह से निर्माण करेगा
1: जी।
0: और जिससे कि कि हमें उपज अच्छी रहेगी। उसके बाद जैसे उड़द मूंग यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं उसके लिए भी बड़ा जो है सही समय ये जब फूल आने वाली अवस्था हो और फूल से फली बनने के बीच की भी अवस्था है उसमें भी आप इसका स्प्रे करें और लाभ ले सकते हैं।
1: जी
0: मूंगफली के बारे में अगर हम आ जाए तो मूंगफली में जब फलियां आपको लग रहा है कि फलियां अब तैयार होनी शुरू हो गई हैं, नीचे कोई पौधा उखाड़ के देख सकते हैं उस समय पे आप इसका स्प्रे करिए तो उससे फलियों का विकास अच्छा होगा, ज्यादा मात्रा में फलियां होंगी। जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना कि कुछ फलियां छोटी सी रह गई या उसमें और लग सकती थी लेकिन नहीं लगी तो वो कमी इससे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मक्का की फसल अगर हम ले लें तो उसमें जब मक्का अब मैं आप अगर घुसे और आपके जो करीब करीब 4 फीट के आसपास की जब मक्का हो जाए तो उसमें आप उस समय एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप फूल आने की अवस्था जब उसकी ऊपर वाली मंजरी निकलती है उस समय पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली अवस्था चूक गए तो इसके बीच की कोई भी अवस्था आप चुन लें उस समय पे आपको उत्तम परिणाम का इस्तेमाल करना है। जी आनंद जी।
1: जी AK सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ हमारे किसान भाइयों की ओर से, आप बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार साझा कर रहे हैं। एक और प्रश्न जो मेरे जहन में आ रहा है, उत्तम परिणाम का उपयोग कौन कौन सी फसलों में हो सकता है?
0: हाँ, लगभग सभी फसलों में, कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें नहीं हो सकता। खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तम परिणाम के जो जहाँ पर भी किसानों ने प्रयोग किए हैं उन्होंने हर फसल में इसके बड़े शानदार परिणाम पाए हैं। सब्जी वाली फसलें हैं जहाँ पर लोग सब्जियाँ उगाते हैं और सब्जियाँ उगा के वो फिर जो है सेल करते हैं बाजार में, वह इसको हर सब्जी में जो मतलब प्रयोग करें और उसकी दो ही अवस्था है, एक तो जब उसकी शाखाएं बन रही हो, दूसरा जब उसमें फूल और फल आने की बीच की अवस्था हो उस समय पर इसका आप प्रयोग करें और जो उपयोग करें और अच्छा उत्पादन लें, उत्पादन अच्छा लें, क्वालिटी अच्छी लें। और क्वालिटी से अच्छा ये होता है कि जब कोई भी सब्जी हम ले रहे हैं तो उसका जो एक स्वाभाविक स्वाद होता है वह विकसित हो, तो वह विकसित होता है तो बाजार में भी जब लोग उसका प्रयोग करते हैं या जो लोग उसको बनाते हैं तो सोचते हैं हाँ यार ये सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, सब्जियां हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं जो कि हमारे क्षेत्र में होते हैं उन पे हम इसका स्प्रे कर सकते हैं और वो फूल वाली अवस्था पे करें, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अनाज वाली सारी फसलों पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ना है उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी फसल पे इसका आप जो इस्तेमाल करें उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप फूल की खेती भी करते हैं जैसे कि गेंदा भी आपने जो लगाया इस समय पर लगाते हैं गेंदा जो कि उसके जो है फूल आते हैं आसपास के शहरों में बेचते हैं और खास तौर से दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा उनका इस्तेमाल होता है। मूल चूल बात यही है कि उत्तम परिणाम को हर फसल पर आप प्रयोग करें, दो अवस्थाएं हैं जब उसका विकास हो रहा हो और जब उसके फल फूल वाली अवस्था हो, इन अवस्थाओं में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जी आनंद जी,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है मेरा आपसे कि उत्तम परिणाम के उपयोग की मात्रा के बारे में एक बार आप थोड़ा सा जरूर बताएं हमारे किसान भाइयों को।
0: हाँ आनंद जी, देखिए उत्तम परिणाम के दो तरह से इस्तेमाल होते हैं, एक तो जो फसल के ऊपर छिड़काव करके
1: जी।
0: दूसरा बीज उपचार। बीज उपचार के लिए जैसे कि सामान्य फसलें हैं तो उसके लिए जैसे अनाज वाली फसलें और सामान्य फसलें उनकी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो उसमें 1 एकड़ का जो बीज है उसमें 100 ml मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, 100 से 250 ml के हिसाब से बीज की मात्रा देख लें। जैसे किसी फसल में बीज ज्यादा लगता है, किसी फसल में बीज कम लगता है एकड़ में, उस हिसाब से आप डिसाइड कर लें। उससे जो आपका बीज है उसके ऊपर आप उत्तम परिणाम का लेप करें, थोड़ी देर छाया में सुखाएं और फिर उसकी बिजाई। इसके अलावा आलू है, गन्ना है, उसमें कंद होता है तो उसका भी आप 250 ml मात्रा आपको लेनी है क्योंकि इनकी जो संख्या ज्यादा होती है मात्रा भी ज्यादा होती है। 250 ml से आपको उपचार करना है, छाया में सुखाना है और फिर इसकी बिजाई कर देनी है। तो इससे क्या है अंकुरण बहुत अच्छा होता है
1: जी।
0: अंकुरण होता है, इसके अलावा जो जड़ें हैं उनका विकास और बड़ा स्वस्थ विकास होता है। इसके बाद फिर आता है है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में मात्रा 250 ml है एक एकड़ के लिए, और जो सामान्य स्प्रेयर से अगर कर रहे हैं तो 250 लीटर पानी आपको चाहिए, 200 से 250 लीटर सामान्य स्प्रेयर। जो हाथ वाले हैं या जो ट्रैक्टर वाले उनकी बात में कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ड्रोन के द्वारा छिड़काव करते हैं तो 250 ml मात्रा को ज्यादा से ज्यादा, जो उसकी एक टंकी होती है उसको पानी चाहिए सिर्फ जो 10 लीटर, इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि 240 लीटर पानी की बचत है, फिर भी समान रूप से और बहुत ही जो है आपके जो है सही ढंग से और इफेक्टिवली उसका स्प्रे होता है। तो ड्रोन की जो तकनीक है बड़ी सार्थक तकनीक है, और इसका प्रयोग करके आप अनेक लाभ ले सकते।
1: उत्तम प्रणाम उपयोग के क्या क्या लाभ हैं?
0: जी हाँ, लाभ की बात यह है तो एक समग्र उत्पाद है, समग्र लाभ देता है, समग्र विकास के लिए काम करता है
1: जी।
0: तो सबसे पहले जब बीज उपचार आपने किया है तो जो उसकी जड़ों का जो विकास है वो तेज होता है और काफी सघन होता है। जहाँ जहाँ पर पौधे की ये शाखाएं जाती हैं जो खेत के नीचे होती हैं, जिनको जड़ कहते हैं, जितनी ज्यादा फैलती है उतना ज्यादा पोषण वो लेती हैं, उतना ज्यादा वो पानी लेती हैं। जब पोषण और पानी लेंगी तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा, वो स्थायी रूप से और सशक्त रूप से खेत में खड़ा रहता है। ठीक है, नंबर एक ये हो गया
1: जी।
0: पौधों की जो भी उसको अपने ऊर्जा चाहिए उसके संचालन में जो है ये सहायक होता है
1: जी।
0: क्योंकि जब शुरुआत में इस्तेमाल हुआ या जब इसको, तो इसका जो जो जो आपके पौधे के अंदर तंत्र का तंत्र होता है उसको सशक्त करता है
1: जी।
0: तो जो एक आवश्यक ऊर्जा है या पोषण है उसको ये जो है उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा फूल बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो तीव्रता लाता है, फूलों की संख्या ज्यादा बनती है, वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं, और ऐसे नहीं होते कि फूल बना और नीचे गिर गया फिर उसमें फल नहीं बना, ऐसा नहीं होता है, या फूल बना उसमें दाना नहीं बना, तो ये दोनों ही प्रक्रियाओं में सहायक होता है। चौथा, जब हमारा पौधा स्वस्थ है
1: जी,
0: ताकतवर है, उसका विकास अच्छे से हुआ है, तो उसको रोग से जो रोग को रोकने की क्षमता आ जाती है, रोग को सहन करने की क्षमता आ जाती है, तो आसानी से उस फसल में रोग अपना असर नहीं दिखा पाते हैं। तो ये क्योंकि आप जैसे होता है ना, कोई आदमी स्वस्थ है तो भैया ये आदमी तो बिल्कुल फिट फाट है, तो इसको जुकाम बुकाम भी नहीं होता, बुखार भी नहीं आता या अस्वस्थ नहीं होता। इसी तरह से हमारे पौधों के साथ होता है। पांचवा है कि जो जो भी जो हम उत्पाद ले रहे हैं, जो भी जो उत्पादन आ रहा है फसल का, जो उपज आ रही है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, शाइनिंग होती है उसमें, स्वाद अच्छा होता है, और उसमें कोई जैसे होता है ना कि जैसे अमरूद है, अमरूद हम लेके उसमें चकत्ते ज्यादा है, लेकिन अगर उत्तम प्रणाली से तो बड़ा अच्छा निखारा हुआ आपका जो फल होगा। तो उसको जब इस तरह की जो अच्छी क्वालिटी की चीजें आप लोगों को देते हैं तो लोग उनको पसंद करते हैं और भाव भी ज्यादा मिलते हैं, तो क्वालिटी को अच्छा करता है। दूसरा ये है कि ये जब इस्तेमाल होता है तो अन्य पोषक तत्वों का भी जो पौधा अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। जैसे सपोज मान के कोई आदमी स्वस्थ है
1: जी,
0: तो उसने जो भी खाता है वो उसके अंग लगता है,
1: अंग लगता है।
0: अब उसने घी खाया, घी भी उसके काम आ गया, उसने हरी सब्जी खाई वो भी उसके काम आ गई। तो हम ये कहें कि ये पौधे के को एक तरह से हर अवस्था में और हर चीज के लिए फायदेमंद है उत्तम प्रणाम। मेरा किसानों से अनुरोध है कि आप उत्तम प्रणाम का जो उपयोग करके अवश्य देखें, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक खेत में करें और दूसरे में न करें, और फिर उसका अंतर देखें। लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर बूंदाबांदी हो रही है तो उस समय पर ध्यान रखें कि जब आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसके 8-10 घंटे तक कोई बारिश वारिश न हो, क्योंकि पौधे में उसका असर होता है, उसकी पत्तियों में सोखता है। अगर पानी ऊपर से इमिडिएटली आ जाता है तो वो उसका असर कम हो जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो उत्तम प्रणाम के बारे में या जो ऐसा पोषण जो कि स्प्रे के द्वारा ड्रोन के द्वारा हमने देना है, वो जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी।
1: तो श्रोताओं, आज के कम में जो है श्री ए के सिंह जी ने जो है बहुत ही खूबसूरत जानकारी आपके साथ साझा करी, घुलनशील पोषण से जुड़ी और उत्तम प्रणाम के बारे में तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हमारे तमाम सुनने वालों के साथ। सर, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को जो या जो लिसनर्स हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: जरूर आनंद जी कि पोषण जो हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों में,
1: जी
0: हमारी सोच यही है कि भाई रासायनिक जो उर्वरक आते हैं कट्टे में, हम उन्हीं का ही प्रयोग करें। ऐसे ही है, अब काफी अनुसंधान हुए हैं और उससे ये आया है कि जो खड़ी फसल में अगर हम स्प्रे करते हैं तो बहुत कम मात्रा में, बहुत कम खर्चे में हम उसका उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना कि हम स्थूल उर्वरक के प्रयोग से ले रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हम अपने यहाँ ऐसे संसाधन थोड़े से ठीक करें जिससे कि हम स्थूल उर्वरक की जगह जो इस तरह के उर्वरक आ रहे हैं उनको घोल के छिड़काव करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। स्थूल उर्वरक कभी कभी हम बहुत अत्यधिक मात्रा में या असंतुलित रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका लाभ होता है लेकिन हानि भी हमें होती है। हानि पर्यावरण के रूप में होती है, हानि हमें अतिरिक्त खर्चे के रूप में होती है, हानि हमें एक तरह से ये होती है कि जो हम खेत में इस्तेमाल किए वो बहुत सारा हमारे और संसाधनों में जाके मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हम धीरे धीरे प्रयास करें कि जो इस तरह के जो उत्पाद आ रहे हैं जो कि पानी में घुलनशील हैं और उनका फसल पे छिड़काव होता है, उनका हम प्रयोग करना अपनी खेती में शामिल करें।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ए के जी, आप आए और आपने तमाम जानकारियां साझा करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी। और इसी बात के साथ मैं आरजे आनंद अब आपसे लूंगा इजाजत। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार, आप जुड़े।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम सुना।
1: बिल्कुल सर, नमस्कार सर, आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आरजे आनंद को। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में है हमारी प्यारी दोस्त आरजे रीना। श्रोताओं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, अलग अलग विषयों पर हम बात करते हैं, ताकि हमारे समाज में और हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो अपनी सोच बदल सके। क्योंकि देखिए, जब उनकी सोच बदलेगी तो अपने आप ही समाज और देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और हमारा देश और भी खूबसूरत बनेगा। क्यों आरजे रीना, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। बढ़िया
4: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ आनंद, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस गर्मी में, इतनी ज्यादा गर्मी है यार कि पूछो मत।
3: ऊपर से लाइट जो है बार बार भागे जा रही है, तो यही कहने वाली थी।
4: हाँ, यही कहने वाली थी मैं।
3: इसकी और मेरे विचार इसलिए मैच कर रहे हैं क्योंकि रात को मच्छर और पसीना दोनों ही परेशान कर रहे हैं। ये ऊपर से एसी में चली आती है और मैं ऊपर से नीचे खुले चौड़े में चला हूँ सड़कों पे, रातों रात परेशान हो रहे हैं ना।
4: बिल्कुल सही।
3: और दोपहर में भी बहुत तेज गर्मी है श्रोताओं। इस वक्त देखिए दोपहर हो रही है और चिलचिलाती तगड़ी धूप है। हम कोशिश यही करेंगे कि हम तो स्टूडियो के अंदर ही रहें, लेकिन आपसे भी गुजारिश करेंगे कि इस धूप में बाहर ना ही निकलो तो अच्छा है।
4: और स्टूडियो में है ना, तभी राहत मिल रही है। सच बताऊं, बाहर जाके तो ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों ही आ गए बाहर, इतनी गर्मी, मिर्ची वाली धूप लग रही है।
3: करेक्ट। और इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपने बार का ख्याल रखिए। खैर दोस्तों, आज सोच बदलो में हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही प्यारा है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही अहम मुद्दा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत जरूरी है आज, और इसीलिए मैं और रीना ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। कभी सोचा है गर्मी हर साल सालों साल क्यों बढ़ती जा रही है? बारिश का मौसम क्यों बदल रहा है? और पेड़ क्यों

कम होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा विषय ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी है और आज की एक छोटी सी कहानी के जरिए हम आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और आज की कहानी एक छोटे से गांव की है। जी हाँ, कुछ लोगों ने अपनी सोच बदली और पूरा गांव ही बदल गया। कहाँ की है ये कहानी जरूर आपको बताएंगे। चलिए रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

0: तो आज की कहानी की जो शुरुआत है वो रीना करेगी, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम सोच बदलो में। एक गीत आपने सुना, उसके बाद अब कहानी सुनेंगे आप रीना के साथ और आनंद के साथ। जी रीना।
1: हाँ, तो मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा गांव था
0: जी,
1: नाम था हरियापुर। पहले यहाँ गांव बहुत खूबसूरत था, चारों तरफ पेड़, साफ नदी और ठंडी हवा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, प्लास्टिक हर जगह फेंकी जाने लगी और नदियां सूख गई। कुछ साल बाद हालत ऐसी हो गई, गर्मी में पानी भी कम पड़ने लगा। गांव के लोग परेशान थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। सो आगे की कहानी अब आरजे आनंद आपको बताएंगे।
0: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम आनंद के साथ। श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। दोस्तों, उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था, उसका नाम आरव था। एक दिन उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी पहले इस गांव में कितनी ठंडक थी और बहुत ही हरा भरा था, लेकिन अब इतना गर्म क्यों हो गया है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा क्योंकि पहले लोग प्रकृति को माँ मानते थे, जो हमारी प्रकृति थी उसे लोग पूछते थे, उसे माँ मानते थे, लेकिन अब लोग सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं। आरव को यह बात दिल से लग गई। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम भी कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम पानी बेवजह बहाते हैं? क्या हम प्लास्टिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो सोच बदलने का समय आ गया है।
1: अगले दिन आरव ने अपने स्कूल में एक छोटा सा अभियान शुरू किया। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम सब मिलकर हर साल सिर्फ एक पेड़ भी लगाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे, फिर शिक्षक भी जुड़ने लगे, फिर पूरा गांव एक साथ देने लगा।
0: क्या बात है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करके जो है ये गांव ने पूरा एक दूसरे का साथ दिया। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब कर सकते हैं। इस कहानी का मतलब सोच बदलो में सिर्फ इतना सही है कि आजकल जो हमारी प्रकृति से हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तभी बंद होगी, तभी रुकेगी, तभी थमेगी जब हम लोग अपनी सोच को बदलेंगे। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और हर में एक जिम्मेदारी ले कि हम मतलब हर दिन एक पेड़ लगाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पेड़ लगाने के साथ साथ उसको अच्छे से पानी भी दें, उसकी देखरेख भी करें, उसका ख्याल भी रखें। श्रोताओं, कुछ चीजें हैं जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं तो शायद हम हमारी प्रकृति को हम अच्छे से बचा सकें। जैसे साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। हालांकि रीना ने तो रोज ही बोला है, अगर ये पॉसिबल हो तो बहुत अच्छी बात है। पानी की बर्बादी कम कीजिए, जितना हो सकता है उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। अक्सर खाना बनाते समय घर की लेडीज की टंकी खुली छोड़ देती है, ब्रश करते टाइम हम भी पानी की टंकी को खुला छोड़ देते हैं, वो बहता रहता है। कई बार हम वॉशरूम नहाने जाते हैं, पानी भर चुका होता है, उसके बाद भी पानी बहता रहता है। तो ये चीजें अगर हम कम कर देंगे तो शायद हमारी प्रकृति पहले की जैसी खूबसूरत और सुंदर हो जाए। अपना कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सकता है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप सब्जियां लेने जा रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं, तो घर के बने थैलों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे, जितना कम यूज में लाएंगे, उतना ही हमारी प्रकृति को हम सुंदर बना पाएंगे। कचरे को सही जगह डालिए। तो खैर वो हरा गीला और सूखा डब्बा चल गया है ना रीना? हाँ, तो उसमें आप जो है कचरा डालिए। ब्लू एंड ग्रीन कलर के बॉक्स होते हैं लगे हुए नगर निगम की तरफ से, बहुत ही खूबसूरत पहल है।
1: एक कचड़े में मतलब जो गीला डालते हैं और एक दूसरा सूखा कचरा डालते हैं,
0: तो बस सूखे में सूखा डालें, गीले में गीला डालें। और ये डस्टबिन का जो इस्तेमाल बताया गया है वो मेरे आपके हम सभी के लिए है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ऑफकोर्स हमारी प्रकृति को और भी खूबसूरत और सुंदर लगेगी। यकीन मानिए दोस्तों, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जरूरत है सही समय पर सही सोच बदलने की। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, 2 साल के बाद हरियापुर गांव में फिर से वो गांव हरा भरा लगने लगा। नदियां साफ होने लगी, हवा ठंडी लगने लगी और गांव के लोगों को समझ भी आ गया कि अब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। और बहुत जरूरी है श्रोताओं, ये कहानी नहीं है, एक्चुअली एक जेन्युइन थॉट है। और मुझे भी लगता है रीना, जब हम अपने आसपास प्रकृति का अपने नेचर का ध्यान रखते हैं तो वो भी ध्यान रखता है। शुद्ध हवा हमें मिलती है, समय समय पे हमें फल, ताजा ताजे सब्जियां दालें सब कुछ हमें मिलता है, प्राकृतिक से तो मिलता है,
1: लेकिन वो तभी मिलेगी ना जब हम उसकी रक्षा करेंगे।
0: हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो उसकी रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है रीना?
1: वो हमारी जिम्मेदारी
0: है, बिल्कुल। जैसे रीना ने कहा आप डेली एक पेड़ लगा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो आप हफ्ते में एक बार पेड़ लगाइए।
1: बिल्कुल लगाइए, लेकिन जरूर लगाइए।
0: अगर आप नहीं लगा पा रहे तो जो लगे हुए हैं आपके आसपास पार्क में किसी खुले एरिया में, आप उनको पानी दीजिए, आप उनका ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। वो जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा वो आपको ब्लेसिंग्स भी देगा, वो मुस्कुराएगा भी और आप भी बहुत खुश होंगे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा। क्यों?
1: पहले के टाइम में तुम्हें देखा है कि हर घर के पास में एक पेड़ जरूर होता था।
0: बिल्कुल।
1: वरना फिर आप बाहर चले जाओ, सड़कों पर चले जाओ, पेड़ आपको मतलब पहले दिखते ही थे। लेकिन अब क्या है कि हम पेड़ों को काट रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहां पर अच्छी अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, जिसके वजह से पेड़ तो कम हो गए लेकिन जनसंख्या यानी कि घर की तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज्यादा।

0: तो आपसे यही गुजारिश करना चाहेंगे, इस शो का मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखें, पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी के जो वेस्टेज है वो कम करें। पहले के टाइम में होता था कि लोग कुएं से पानी भरते थे, नल से पानी भरते थे और उसी उतना ही पानी यूज करते थे जितना उनको नीड होती थी, लेकिन अब हम उससे ज्यादा बहाते रहते हैं पानी।
1: बिल्कुल सही कहा, तो पानी वेस्ट मत कीजिए। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद में और रीना मिलेंगे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सोच बदलो रीना और आनंद के साथ, और ये प्रसारित होता है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज से। तो श्रोताओं मिलते हैं इस छोटे से म्यूजिकल गीत के बाद।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से श्रोताओं, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ज, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट सोच बदलो, जिसमें मैं और रीना आज एक कहानी के जरिए आपको समझा रहे हैं कि हमारी प्रकृति का ध्यान रखना कितना जरूरी है। आजकल तुम देखते हो रीना, बिना मौसम के बरसात हो जाती है। इवन अभी भी आप यकीन मानना, थोड़े टाइम पहले हमें लग रहा था कि गर्मियां आ गई, लेकिन उसमें ठंड आ रही थी। लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए थे बारिश की वजह से भी, और थोड़ी ठंड भी, मतलब बेमौसम की ठंड हो रही थी। तो जिससे हमें लग रहा था कि हाँ भाई, जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज है। वो हमें दिखा रही है, बता रही है, जता रही है कि भैया जागो, नहीं तो फिर आगे आपको ऐसी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
1: वो इसीलिए ना कि हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं,
0: बिल्कुल बेवजह पेड़ काट देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता, लगाने की कम और काटने की ज्यादा कोशिश की जाती है।
1: जबकि पेड़ तो कुछ भी नहीं मांगता है, बल्कि आपको वो फल देता है, सब्जियां देता है, ताजी हवा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आनंद, गर्मी के टाइम में अगर पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि पेड़ इतने ज्यादा होते थे ना कि जिनको भी अगर गर्मी लगती तो वो पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते थे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था वहां पर, एक दूसरे से बातें भी करते रहते थे और दिन यूं ही गुजर जाता था। लेकिन अब क्या है, हम पेड़ काट रहे तो उसके नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। और श्रोताओं, हम तो सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं सोच बदलो के माध्यम से कि आप भी प्लीज अपनी सोच बदलिए, निरंतर प्रयास कीजिए कि अपने प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ न करके उसका ख्याल रखें। अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी खुले एरिया में जा रहे हैं जहां पर खूबसूरत ग्रीनरी है, तो उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आपकी है, हमारी है। उसे गंदगी से ना भर के उसकी साफ सफाई का ख्याल रखें। अक्सर हम अपनी परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं तो हम वहीं पे कुछ भी खा रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीजें वहीं छोड़ के आ जाते हैं, चिप्स खाया बच्चे ने पैकेट वहीं फेंक दिया, तो उससे आसपास की गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, कम हो रही है। और उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? आम इंसान ही उसका जिम्मेदार है, यानी कि मैं और आप ही। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ताकि वो साफ और स्वच्छ बना रहे? मैं और आप ही तो लेंगे। तो बस इन बातों का जरा ख्याल रखिए और बच्चों को डिसिप्लिन में रहें। कहीं बाहर जा रहे हैं जहां पर आपको और उनको पता है कि यहां गंदगी नहीं करनी है तो वहां नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ख्याल अगर आप रखेंगे, आपका परिवार के लोग रखेंगे, हम रखेंगे, तो सोच भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा और खूबसूरती जो है प्रकृति की वो और बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और आजकल क्या होता है ना कि हम कचरा भी अपने बगल में ही सरका देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कचरा वहां पर देखेंगे कि कचरे के ढेर लग जाती है, फिर वो सड़ने लग जाता है, जो उसे दूषित हवाएं आती है उसे हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कचरे को भी एक अच्छी जगह रखिए ताकि वहां पर जो जहां सब कचरे डालते हो।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा है। इसीलिए जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था श्रोताओं की, जो डस्टबिन है उसी में आप कचरा डालें। चलिए श्रोताओं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक है। मैं और रीना आपके साथ बने हुए हैं प्रोग्राम सोच बदलो में। कहानी के जरिए बता रहे थे कि कितना जरूरी है अपने पर्यावरण का ख्याल रखना, अपने प्रकृति का ख्याल रखना। और श्रोताओं कहते हैं कि हम अक्सर यही सोचते हैं और हमारी सोच भी बन गई है कि दुनिया बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है रीना, दुनिया बदलने के लिए ना बस एक छोटी सी सोच बदलनी पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि सोच बदलते हैं तभी दुनिया अपने आप बदल जाएगी।
0: करेक्ट। तो अपनी दुनिया को बदलना है अगर आपने, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी लेकर आइए और एक कंटिन्यूटी में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए। और दोस्तों, यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, यह हमारे बच्चों से उधार मिली है। श्रोताओं, अगर आज हम इसका ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी साफ हवा और साफ पानी पा सकेगी। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आज के दिन, आज के इस खास टॉपिक पे, इस खास फुल सेशन में, कि देखिए आप जो है ना अपनी प्रकृति का अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो अपना कॉन्ट्रीब्यूट देना शुरू कीजिए। जब आप अपना कंट्रीब्यूट देंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो हमारा पर्यावरण और हमारी प्रकृति दोनों ही खूबसूरत बनेंगे। और जब ये खूबसूरत होंगी तो हमारा समाज भी स्वस्थ होगा, खूबसूरत होगा और मस्त होगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: और मुझे लगता है कि दोस्तों, अपनी सोच को बदलने के साथ साथ ना, मेरा सिर्फ एक छोटा सा और आपके लिए सजेशन रहेगा कि आजकल ना गर्मियां हो रही है, गर्मियों में हम क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं हम दो बार नहाएं, हम चार बार नहाएं। नहाना कंपलसरी है, लेकिन आप बार बार अगर नहाएंगे तो उससे हमारा पानी भी वेस्ट होगा। पानी वेस्ट मतलब हम प्रकृति के साथ फिर से छेड़छाड़ पर आ गए हैं, क्योंकि हमें लगता है यार हमें खुद को ठंडक प्रदान करनी है तो हम नहा लेते हैं। तो तुम्हारा क्या मानना है रीना, क्या हम दो बार नहा के पानी वेस्ट नहीं कर रहे हैं? चलो दो बार नहाना तो छोड़ो, नहाना जरूरी है, लेकिन हम बड़ी बड़ी गाड़ियां धोने लग जाते हैं अपनी पानी के से।
1: हाँ,
0: उसमें कितना पानी वेस्ट करते हैं हम।
1: ऊपर से एक बात की जाए, हम घर को ऐसे धोने लग जाते भैया जैसे नदी बहा देते हैं।
0: हाँ,
1: ये घर को साफ कर, आई नो कि आप देखिए घर में झाड़ू पोछा लगा सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कम पानी वेस्ट होता है पोछा लगाते तो, लेकिन हम धोने लग जाते, ऊपर से सड़कों को उतना रगड़ रगड़ के धोने लग जाते, पानी ऐसे बहा देते हैं जैसे भैया पता नहीं क्या, कितने टाइम से गंदा है सड़क। तो ऐसा नहीं करना है हमें, पानी को अगर आप सेफ रखेंगे तभी आप भी सेफ रहेंगे। और वही कहते हैं ना, जल बचाओ तो कल काम आएगा ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। देखिए सड़कों को धोना, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे आसपास में जो हम कई बार क्या करते हैं ना कि बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हैं। शर्मा जी सामने सुबह सुबह टंकी खोल के खड़े हैं, बतिया रहे हैं वर्मा जी के साथ, पानी बर्बाद हो रहा है, तो वो नहीं करना है आपने, है ना शर्मा जी। अगर आप सुबह सुबह साफ सफाई कर रहे हैं तो जरा

0: वर्मा जी थोड़ी देर के बाद बतिया लीजिएगा, पहले सफाइयां कर लो, उससे पानी वेस्ट नहीं होगा, आपका कंट्रीब्यूशन भी सही जगह पर लगेगा और आप सही जगह पर काम कर रहे होंगे, क्योंकि कई बार हम बातूनी के चक्कर में अपना पानी की बर्बादी कर देते हैं, है ना। और अगर आप कहीं आसपास निकल रहे हैं अभी गर्मियों के इस टाइम में और आपको कहीं पानी की टंकी खुली नजर आए, तो प्रयास करें कि वो बंद कर दें,
1: बंद करें, बिल्कुल, ये ना सोचे कि कोई और आके बंद करेगा, बल्कि आप ही करिए।
0: या मुझे बहुत जल्दी है, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर वहां जाओगे पानी का बंद

0: बेसिकली क्या होता है ना, जब हम अपने छतों पे यानी कि टेरेस पे हम पक्षियों के लिए पानी भर के रखते हैं ना छोटे छोटे बॉल्स में, उनको चेंज करना जरूरी है। पानी जमा मत होने दीजिए, और अगर कूलर में आपका पानी है आप उसको चेंज करो, बट उसको फेंको मत। उसी पानी को अगर आप किसी अच्छे से बर्तन में निकाल के उसी पानी को आप अपने गमलों में प्लांट्स में यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके इन दिनों में क्या होता है ना, हमारी छत की टैंक भी बड़ी गर्म हो जाती है और
1: बिल्कुल
0: हम जो
1: सही कहा
0: पानी
1: तुमने।
0: चलाते हैं तो गर्म निकलता है एकदम आग की तरह, फिर हम उस पानी को थोड़ी देर बाहर रहते हैं ताकि ठंडा आए, है ना, इस चक्कर में ही पानी वेस्ट
1: पानी
0: होता है।
1: वेस्ट होता
0: तो
1: है,
0: वो वाला
1: सही।
0: पानी को आप बहाना नहीं है, उस पानी को भी आप सेव करें और सेव करने के बाद जो है उसे अपने प्लांट में यूज करें, या उसको 2 घंटे बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो वही पानी आपको ठंडा
1: हो जाता है। बिल्कुल सही,
0: बहुत ज्यादा चिल तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो श्रोताओं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी सोच को भी बदल सकते हैं और अपने आसपास की प्रकृति को और पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल बचाना पड़ेगा हमें, अभी हमें और रीना को एक छोटा सा क्या म्यूजिकल वाला ब्रेक आ रहा है, तो हमें बचानी पड़ेगी अपनी एनर्जी ताकि हम दोबारा आके आपसे फिर से बातचीत कर सकें। तो चलो एक छोटा सा गीत, उसके बाद आते हैं

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। रीना और आनंद आपका साथ दे रहे हैं और आज हमने ढेर सारी बात करी, साफ पानी कितना जरूरी है, साफ हवा, शुद्ध हवा का होना कितना जरूरी है, पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। अगर हम इन सबका ख्याल रखेंगे तो हमारी प्रकृति और भी सुंदर और खूबसूरत लगेगी। कहानी भी हमने सुनाई इस प्रोग्राम के जरिए और अब हमारा जाने का भी समय हो गया है। पता नहीं चल रहा है ना रीना कितनी तेजी से समय निकला, लेकिन जाते जाते हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शुद्ध हवा, साफ पानी और हरियाली। लेकिन जरा सोचिए अगर हमारी हवा ही गंदी हो जाए, अगर हमें ताजी हवा मिलना ही बंद हो जाए तो क्या होगा? सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा श्रोताओं, बीमारियां बढ़ने लगेंगी और जिंदगी का सुकून कहीं जैसे खो सा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने प्राकृतिक की रक्षा करें, पेड़ लगाएं, प्रदूषण कम करें और पर्यावरण को साफ रखें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, अगर प्राकृतिक सुरक्षित है तो हमारी जिंदगी भी सुरक्षित है। तो आइए मिलकर आज हम सब एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी सोच को बदलें और अपने आसपास की चीजों का जरा खास तौर पर ख्याल रखें। स्पेशली पेड़ को लगाने के साथ साथ उसका देख रेख भी उसकी रखनी बहुत जरूरी है, उसका सही ख्याल रखना भी जरूरी है। बाकी पोल्यूशन कम करने के लिए अपनी गाड़ियों को जरा कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी से जो धुआं निकलता है ना वो भी प्रदूषण फैलाता है और हमारे आसपास की प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी की वजह से जो पर्यावरण में ये जो दिक्कतें आ रही है, हवा की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ गाड़ियों की वजह से ही तो हो रही है।
0: ये तो आपने सही कहा। तो दोस्तों आज का सोच बदलो कार्यक्रम हमने पर्यावरण बचाने की इसमें बात करी और अब हमें जाना पड़ेगा, हमारा जाने का समय हो गया है। और आज हमने जाना इस प्रोग्राम में पेड़, पानी और हवा से हमने जुड़ी हुई तमाम सारी बातें करी। तो बस जाते जाते इतना ही कहेंगे, पानी की बर्बादी को रोकिए, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कीजिए और हर साल कम से कम कुछ पेड़ तो आप जरूर लगाइए। तुम क्या कहोगी रीना जाते जाते?
1: मैं तो यही कहूंगी आप मतलब हफ्ते में एक पेड़ नहीं लगा सकते तो महीने में कम से कम एटलीस्ट दो पेड़ जरूर लगाइए।
0: करेक्ट, सही कहा आपने। और अब तो पेड़ों का सीजन भी आने वाला है और इस भीषण गर्मी से जरा अपना ख्याल रखिए, खुद को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, जितना हो सकता है तरल पदार्थों का सेवन कीजिए।
1: पानी तो देखिए हमेशा पीते रहिए अपने पास। अब बाहर भी जा रहे हैं ना तो जैसे हम फोन को नहीं भूलते वैसे पानी की बोतल भी आपने नहीं भूलना है, अपने साथ लेकर जाना है।
0: एग्जैक्टली, डिहाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप पानी के भी अलग अलग फ्लेवर बना के रखें। आप पानी के अंदर कुछ लेमन्स के स्लाइस डाल सकते हैं, आप उसमें खीरे के कुछ स्लाइस डाल सकते हैं, वो एक वाटर आप तैयार कर सकते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां आप डालेंगे तो वो पानी और भी ज्यादा फ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ्लेवर को चेंज कीजिए और पानी पीते रहिए और कोशिश कीजिए कि नारियल पानी का इंटेक भी आप ज्यादा से ज्यादा अपनी रूटीन में शामिल करें। अभी के लिए मैं और रीना लेंगे आपसे इजाजत, छोड़ के जाएंगे कुछ और खूबसूरत गीत के साथ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी जल्दी और रीना के साथ इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोच बदलो। याद रखिए श्रोताओं, अगर आपकी सोच बदलेगी तो चीजें हमारी और आपकी अपने आप ही बदल जाएंगी। ऐसे ही बातों के लिए प्लीज सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।
1: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: बिल्कुल जी, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।

0: भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा।

नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ बीमारियों से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर सरकार का समान रूप से ध्यान। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार अगले 5 वर्ष में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन करेगी। भारत और जापान के बीच दूसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता टोक्यो में शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, एशिया के 2 प्रमुख लोकतांत्रिक देश एक साथ सामरिक

0: और वैश्विक भागीदारी की दिशा में अग्रसर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने में प्रवासी भारतीयों की अहम भूमिका। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली का छठा सफल परीक्षण किया। केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर आतंकवाद के लिए धन जुटाने और पीएफआई के साथ संबंध मामले में छापे मारे। ओणम से जुड़ा तिरुओणम त्यौहार आज मनाया जा रहा है और अमरीकी ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के जेनिक सिनर को हराकर पुरुष सिंगल्स और इगा स्वीटेक ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
1: अब कष्ट यही होता है कि मतलब हमारे यहाँ बच्चे हैं, सोच यही है कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा हमारे जाने के बाद, चूंकि हमारा अंतिम समय चल रहा है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, ये बच्चे हमारे आश्रम में रहते हैं।
2: माताजी पिताजी गुजर गए, पहले दिन बहुत रोते थे, बहुत घर को बहुत याद आती थी, बहुत मतलब दिन भर उदास रहा करते थे।
1: ये गुरुकुल है और गुरुकुल में जो है सो कि स्वावलंबी बनना पड़ता है। सुबह से यहाँ 4 बजे सभी बच्चे जग जाते हैं, 5 बजे से 7:30 बजे तक वहाँ पढ़ाई होती है कर्मकांड की।
0: दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। सत्ता के केंद्र के प्रतीक इस मार्ग के पुराने नाम राजपथ को बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। ये नाम जनसाधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस पूरे मार्ग को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत नए सिरे से बनाया गया है। इस अवसर पर श्री मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। इंडिया गेट के पास छतरी के नीचे 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कर्तव्य पथ पर अब लोगों को बेहतर सुविधाओं से युक्त बदला हुआ
4: स्वरूप को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
5: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
4: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
6: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहा सुनी हुई शोर शराबे के ऊपर, उसके बाद वो कहा सुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
4: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
4: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
8: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
4: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडे ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
12: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
11: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
12: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
13: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूं महिला मंच, जहां पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
14: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
13: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
14: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
13: मुमताज जी की खास बातें, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
14: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
13: प्रेरणा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
14: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
13: क्या बात है परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई। अरे यार, पता है आपको मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
14: बहुत सुंदर, वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत तो नहीं हो सकता।
13: एग्जैक्टली राइट, और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
14: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे, और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
13: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
14: यस बिल्कुल,
13: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह, तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। छुप गए

0: श्रोताओं, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं। तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था। और वो तरह तरह की नई डिशेज बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का। वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई, अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी, अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए। उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था, अभी आप मुझसे बता रही थी, कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारी श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं, कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंघरू मैं छम छम नच दी फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी और ऐसी ही हमारी बातें, चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप नहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है। हमारे श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में रोजाना, उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है। अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: और खाना समय पर खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट है और मुमताज मैम भी फिट है।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, सुनते रहिएगा FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, मन तो हमारा भी लग जाता है जैसे ही 3 बजते हैं घड़ी में और आपके कॉल की जो घंटी बजती है ना, वो हमारा मतलब हमें खींच कर ले आती है कि चलिए खुशी जी, हमारे श्रोता इंतज़ार कर रहे हैं और हम लौट कर फिर से आ जाते हैं अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर आपका अपना पसंदीदा शो लेकर। हेलो फरमाइश, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 पर। एंड हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी आपने ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर से। इस खूबसूरत गीत को गाया था श्रेया घोषाल जी ने और साथ में अरिजीत सिंह जी की बहुत मधुर आवाज़। चलो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मनोज है।
0: मनोज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं टोनोलिंग से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: बढ़िया
0: है। ओके ठीक है। हाँ जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप?
1: काम कर रहे थे।
0: अच्छा काम कर रहे थे जी, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर?
1: मुझे
0: अच्छा ओके, ये ट्रैक किनके साथ सुनना चाहते हैं आप? ओके ठीक है, आपके दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना।
1: पूरा सुनवाना, पूरा।
0: हाँ जी हाँ जी, आप पूरा सुनिएगा ठीक है सर? जी थैंक यू कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, मनोज जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक सुखविंदर सिंह जी की आवाज़ में। और आप ही कोई गाना सुनना चाहते हैं अपनी चॉइस का, फटाफट से कॉल करो मुझे, नंबर है 9837896 8968 3978 96 896। ये वही नंबर है जिस पर आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं।

गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी चलते चलते, सुखविंदर सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत गाना।

0: और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। जी नमस्कार, आपको भी अपना नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत अफसर कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैम थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, आवाज लग रहा होगा आपको।
0: तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं।
1: जी मैम आपसे बात हो जाती है, आपसे बात हो जाती है।
0: चलिए अच्छी बात है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बताइएगा।
1: एक दफा नंबर डाल गया, एकदम कॉल लग गई है।
0: अच्छी बात है सर, बताइए क्या सुनना है आपको।
1: पहले मैंने मौसम कैसा है मुरादाबाद का?
0: मुरादाबाद का मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है।
1: जी मैम काफी गर्मी है, या बारिश है या गर्मी, दो रंग का मौसम हो रहा है मैम।
0: हाँ जी
1: आज गर्मी बहुत तेज है।
0: अब गर्मी होना भी जरूरी है, कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा यू नो चेंज आना भी जरूरी है ना मौसम में।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: जी बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं आज।
1: मैम आज मूवी का नाम है हम से टकराना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, सुनो मेरे हम जोली आ ले जा मेरी डोली। मैम आज के फरमाइश में और उस सॉन्ग को लेकर जाने को सुनने वाले हैं।
0: जी बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये है ग्राम बीबीपुर से मकसूद भाई, स्वाट में विजय राठौर, ग्राम खेड़ा कांड से मोहम्मद कामिल, साथ नागोरम।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपके दोस्तों के साथ ये खूबसूरत से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ट्रैक एंड उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। आपको भी ये मौका मिल रहा है बात करने का, तो आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837898968। और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: तो दोस्तों एड ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए हैं आपका अपना फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहां पर आप अपनी पसंद की गाने सुनते हैं। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी हमसे न टकराना, जो 1990 में आई थी। और म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी एंड आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति जी, और साथ में मोहम्मद अजीज जी की बड़ी ही प्यारी सी आवाज में प्यारा सा गाना आपने एंजॉय किया। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी फरमाइश क्या है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, क्या नाम है आपका? जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बढ़िया।
0: अच्छा ही रहना चाहिए, बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी? ओके ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत आपको। धन्यवाद आपने कॉल किया। तो चलिए श्रोताओं सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। और ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत सा है एंड जब हम छोटे थे ना, तो दोस्तों हमारे पास में ना हमारे सोसाइटी में एक अंकल आया करते थे समोसे बेचने के लिए, स्पेशली गर्मियों के टाइम में। तो ये गाना वो चलाते थे तो हम समझ जाते थे कि समोसे वाले अंकल आए हैं, और हम मम्मा से पैसे लेते थे कि मम्मा पैसे दो, समोसे वाले अंकल आए हैं, हमें समोसे खाने जाना है, खरीदना है। एंड तो जैसे ही हम ये म्यूज़िक ये ट्रैक सुनते थे तो हमें वो अंकल याद आ जाते हैं अभी भी, और गाना भी बहुत प्यारा है। चलिए सुनते हैं मिलकर, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाना।

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी गीत से। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ताहिर बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं।
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। आप बताइएगा, क्या कर रहे थे इस वक्त आप?
1: काम कर रहा था मैम।
0: अच्छा, काम करते करते कॉल भी लगा लिया आपने, अरे वाह, इंटेलिजेंट हैं आप काफी। हाँ जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: का
0: ओके, फटा पोस्टर निकला, हीरो से सुनना चाहते हैं ट्रैक। ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: बड़ी जल्दी में जा रही हैं आप?
0: हाँ जी सर। अभी आपको गाना सुनवाते हैं।
1: हमारे दोस्त का नाम तो देखें।
0: जी जी जी बिल्कुल, बताइएगा।
1: हमारे दोस्त का नाम है मनोज और अहमद भाई।
0: ओके ठीक है सर,
1: ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं
0: है। ओके थैंक यू सो मच, एंड एंजॉय कीजिएगा ट्रैक अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं शानदार से गाना। मैं लौट कर आती हूँ वापस।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये बेहतरीन ट्रैक। आतिफ असलम जी की बहुत ही शानदार सी आवाज और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। अभी राइट नाउ हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:39। तीन बज के 39 मिनट और हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम।
0: वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद उवैस है
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम मुरादाबाद गोइंदपुर से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, बताइएगा क्या करते हैं आप?
1: हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में।
0: अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हैं आप?
1: अभी हमारा 9th क्लास है।
0: अच्छा, 9th क्लास है, तो बताइएगा आप आज स्कूल नहीं गए?
1: आज गए थे मैम।
0: अच्छा,
1: 1 बजे छुट्टी होती है।
0: ओके तो फ्री होकर रेडियो सुनते हैं आप?
1: यस यस, थोड़ा वीडियो सुनते हैं, फिर स्कूल का होमवर्क करते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। बताइए आज क्या क्या सुनना चाहते हैं आप, कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: हम अपनी भांजी अनाविया के साथ गाना सुनना चाहते हैं।
0: अनाविया, बहुत प्यारा नाम है आपकी भांजी का। जी बताइए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: गाने का नाम है लो मान लिया हमने एतवाल नहीं तुमको।
0: ओके, चलिए सुन।
1: अच्छा,
0: हाँ बहुत अच्छा सॉन्ग है।
1: हाँ, तो हम अपनी भांजी अनाविया के साथ रिपीट करते हैं इसको। ओके
0: ओके, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, मुस्कुराते भी रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक अरिजीत सिंह जी की आवाज में। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा।
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सभी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं? एक हफ्ते के बाद जब मुलाकात होता है तो कॉल लगाने का जो उत्साह है वो दुगना बढ़ जाता है।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वन वीक का इंतजार करना, उसके बाद कॉल लगाना, और फिर जब कॉल लग जाती है तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता।
1: जी जी बिल्कुल, और आप जैसे उद्घोषक से बात करने के लिए इतने सारे श्रोता इंतजार करते हैं, तो जब इंतजार का घड़ी से खत्म होता है तो सभी के लिए मन में मतलब की उमंग था और पड़ता है।
0: हाँ जी, बताएगा आप त्रिपुरा का मौसम कैसे है सर?
1: त्रिपुरा का मौसम तो सही है, धूप खिला हुआ है और हल्का हल्का बादल भी है, और ये बादलों के बीच में जब धूप बादलों को चीरती हुई जब निकल के आते हैं तो बहुत ही मन भावन मौसम बन जाता है, और इसमें अगर हल्की हल्की बारिश हो जाए तो और भी दिल को सुकून मिल जाता है।
0: अच्छा, तो बताइएगा आज आपके दिल को सुकून कौन सी गाना सुनकर मिलने वाला है? कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आपके दिल को सुकून दे?
1: जी, और तो सुकून तो हर गाने में दिखी है, एक एक बोल जो होते हैं गाने के सभी सुकून जैसा होता है, अगर गाने का बोल सब समझ में आए, क्योंकि देखिए हर गाने वैसे बनाने बोल होते हैं जो हम सभी के लिए कुछ ना कुछ चीज देते जाते हैं।
0: हाँ।
1: तो आज आशा आशा जी के जन्मदिन के अवसर पर उनकी ही आवाज में एक गीत सुनना चाहते हैं, उनको तो आज के दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि देखिए इसी साल हमने उनको उनको खो दिया था और आज उनका जन्मदिन है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके साथ साथ भूपेन हजारिका जो कि भारत रत्न से सम्मानित एक म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन गाने भी काफी गाए थे, आज उनका 125वां जन्मदिन है तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
0: तो बताइएगा आशा जी का आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: जी, जो उसमें गीत है ग्रेट गैम्बलर मूवी का है, पहली पहली प्यार की मुलाकात याद है मुझको, तो तुम्हारी सारी बातें याद है, तुमको कैसे भूल गया दिल का ये अफसाना, तेरा क्या नाम है अनजाना।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत सुना है आपने।
1: जी जी बिल्कुल, क्योंकि अनजाना तो हम सभी होते हैं, लेकिन जब कॉल लगाने के बाद जब मुलाकात हो जाता है तो सब फिर अनजाना नहीं रहते हैं,
0: फिर सब अपने बन जाते हैं।
1: जी जी बिल्कुल जी। और इसके तो दो चार मित्रों को शामिल करना चाहते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल, बताइएगा सर।
1: पहले तो हमारे खुशी जी रहेंगे, उसके बाद फिर आर जी पूनम जी हैं, उसके बाद सोनू गौतम जी हैं, प्रिंस पासवान जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, और तनुज जी हैं, और अभी जैसे तमाम सुनने वाले जो सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 FM।
0: ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनिएगा ये प्यारा सा गीत सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए श्रोताओं, सुनवाते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा।

0: दोस्तों, वैसे हम भी आपका नाम दीवाना रखना चाहते हैं क्योंकि आप एफएम मुरादाबाद से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी दीवानगी आपके अंदर है, कंटिन्यू कॉल लगाते रहते हैं आप। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए। और अभी आपने सुनाई प्यारा सा ट्रैक आशा भोसले जी साथ में किशोर कुमार जी की मधुर आवाज में, ये प्यारा सा ट्रैक। और इस खूबसूरत गीत को लिखा था राहुल देव वर्मन जी ने, म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद बख्शी जी। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: खुशी मैम जी को प्यार भरा आदाब।
0: आपको भी आदाब। अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खान से मोहम्मद दानिश सिद्दीक बोल रहे हैं।
0: जी बताइएगा दानिश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आप बताएं आप कैसे हैं? आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम लग रहे हैं और आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार होती है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने काफी समय की बात कॉल किया है, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम कॉल तो काफी समय बाद किया है लेकिन बीच बीच में प्रोग्राम सुन लेते थे और थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, इस वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए थे।
0: कोई बात
1: प्रोग्राम
0: नहीं,
1: सुन लेते थे।
0: जी देर से आए दुरुस्त आए और आप शो सुनते हैं उसके लिए शुक्रिया सर। बताइएगा आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: चलिए मैं सिर्फ तुम और गीत के बोल हैं, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है, सनम ये सुनवा देना। एक मेरे दोस्त हैं।
0: जी बताइएगा।
1: ग्राम खेड़ टांडे से मोहम्मद कामिल,
0: ठीक है सर,
1: गाना डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: ओके, आपकी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना। शुक्रिया आपने कॉल किया सर हमें। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गन गुनाते रहिए और हमें कॉल लगाते रहिए। ठीक है, अभी गाना एंजॉय करो आप सब।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी। और दोस्तों, समय हुआ है अभी 4:07। हमारी नेक्स्ट कॉलर जो जुड़ी है ना, वो बहुत देर से इंतजार कर रही है। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका डियर? तनुश्री जी हमारे साथ जुड़ी है महाराष्ट्र से। बताइए तनु, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत बढ़िया, और हर बार की तरह आपसे बात कर और भी बढ़िया हो गई।
0: थैंक यू सो मच। बताइएगा और क्या हो रहा है, फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: क्या
0: मैंने कहा, आपके परिवार में सब कैसे हैं, बताइए तनुश्री। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, हमेशा ऑलवेज हैप्पी रहिए आप। बताइएगा तनुश्री, आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: मैम आपकी पसंद का आज आशा भोसले का कोई भी सॉन्ग सुना दीजिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है ना, तो आपकी पसंद का कोई भी सुना दीजिए।
0: जी, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उस पर हम सुनवाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना। आप इंजॉय कीजिएगा, ठीक है डियर?
1: ओके, बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: दोस्तों कॉल तो आपका सपने में नहीं रियल में लगेगा, उसके लिए आपको ट्राई करना होगा भाई। जब तक आप नंबर नहीं लगाएंगे तब तक कैसी कॉल लगेगा। हाँ तो जल्दी से हमें कॉल लगाइए आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और ये बेहतरीन ट्रैक आपने सुना आशा भोसले साथ में शीर्ष वाडियर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: आपको भी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, शिमला से बात कर रहे हैं, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, और आपसे बात हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, शिमला में क्या करते हैं आप सब?
1: शिमला में तो हमारी अपनी खेती बाड़ी होती है, सेब की बागवानी करते हैं।
0: अच्छा ओके, तो एप्पल हमारे लिए भी इधर भिजवा दीजिएगा सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल आपके लिए भी पहुँच जाएगा।
0: थैंक यू, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ, जैसे हमारे पास आशा भोसले जी का जन्मदिन भी है, तो सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि, और उनके प्लस एक गाना सुनना चाहता हूँ, और फिल्म का नाम है डॉन, और गाने की बोले ये मेरा दिल प्यार का दीवाना।
0: अरिफा बहुत प्यारा गाना है, सुनवा देते हैं आपको। और आपने फर्स्ट टाइम कॉल किए, पहले भी आप कर चुके हैं?
1: नहीं, मैं पहले भी करता था, थोड़ा मैं अंतराल के बाद कॉल करता, क्योंकि मैं मुरादाबाद के साथ मैं बाकी चैनल पे भी जुड़ा रहता था।
0: अच्छा,
1: इसलिए तो कॉल तो मैं डेली कॉल प्रयास करता हूँ, हर चैनल पे।
0: चलिए तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने हमें कॉल किया, सुनवाते हैं गाना आपको, एंजॉय कीजिएगा।
1: अगर आपकी इजाजत हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप दोस्तों के नाम ले सकते हैं।
1: जी सबसे पहले तो आप पूरे गाना दे दीजिएगा।
0: थैंक यू।
1: भगवान से प्रमार है, और अविनाश तेली है, और अभी जो कॉल लगा था तनुश्री महाराष्ट्र से।
0: जी जी ठीक है सर, सुनवाते हैं आपके दोस्तों के साथ ये गाना, एंजॉय कीजिएगा आप। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं, और ये ट्रैक लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा।

0: एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत, और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, मुझे लगा पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं आ रही, शायद कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है।
1: नहीं, आप पहुंच रही है आवाज मेरी?
0: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। अपना नाम बताइएगा।
1: जी, मैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ। कैसी है मैम आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइएगा, आप कैसे हैं?
1: बस ठीक है, और बस आपका ही शो प्रोग्राम सुन रहे थे
0: जी,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: शुक्रिया
1: जी। और एक गीत सुनवाते हैं आप?
0: जी बिल्कुल सुनवाएंगे, बताइएगा कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: ये आशा भोसले जी की आवाज में एक सॉन्ग है, किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी, इस तरह से सॉन्ग है।
0: जी बिल्कुल है, और ये गाना आपने पहले भी सुना है शायद, राइट?
1: जी, हो सकता है उसमें जो सुबह वाला
0: सुना, मॉर्निंग शो में सुना है आपने, तो ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं सर। ठीक है,
1: कुछ मेरे साथ में साथी हैं, सुनना चाहते हैं
0: जी, बताइएगा।
1: सैयद शारिक अली है, और मेराज अंसारी है, बाबू अंसारी है, और ईदगाह मुरादाबाद से सभी अंसारी, बाकी आपके और सभी लिसनर के साथ।
0: ठीक है सर, थैंक यू, आपने हमें कॉल किया, सुनवाते हैं गीत आपको।
1: शुक्रिया,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल भी मिस मत कर जाना। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपकी साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। नमस्कार आपको भी सर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम डायमंड है।
0: ओके डायमंड, अरे वाह, बहुत ही यूनिक नाम है आपका।
1: पहली बार
0: ही। हाँ जी, मैंने फर्स्ट टाइम नहीं, डायमंड तो मैंने काफी बार सुना है कि मुझे डायमंड खरीदना है, पर नाम पहली बार सुना है डायमंड, यू नो।
2: हमें तो सर सच में लगा था डायमंड मिल गया हमें।
0: जी बताइएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: बात कर रही है, लंबे पीरियड से कोशिश कर रहा हूँ।
0: और फाइनली
1: नंबर
0: मिला है। फाइनली वो सफलता आपको मिल गई है।
1: आपसे बात हुई, मेरी फरमाइश पूरी हो गई आज।
0: अच्छा, तो कितना हैप्पी है बताइए। ओके बड़ी, हाँ होता है सर ऐसा, जब ऐसा मोमेंट होता है ना तो हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं।
1: आज एक बार में ही कॉल लग गई, फर्स्ट बार में।
0: आपने सोचा था कि मेरी कॉल लग जाएगी आज?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, उठाया था।
0: ऐसा ही होता है सर। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं
1: आप?
0: शरीफा, बहुत प्यारा गाना है। और ये ट्रैक आप किनके साथ सुनना चाहते हैं? कोई आपकी फैमिली मेंबर्स हैं जिनका नाम लेना चाहते हैं
1: आप?
0: ओके जी, ठीक है सर, आपके मित्रों के साथ सुनवाते हैं गीत आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने कॉल किया। मोस्ट वेलकम सर। एंड ऐसे ही ऑलवेज हैप्पी रहिए आप और इंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक। बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों, मैंने भी इसको काफ़ी बार सुना है और आज फिर सुनने का मौका मिल रहा है आपके ज़रिए, क्योंकि आपकी फरमाइशें ना लाजवाब होती हैं। एंड आगे मेरे पास भी शब्द कम पड़ रहे हैं, चलो गाना सुनते हैं।
3: रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। और अभी सुना आपने बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक लता मंगेशकर जी की आवाज में और मनोज कुमार एंड नीतू जी पर फिल्माया गया प्यारा सा गीत। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार। हेलो फरमाइश। नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मेरे को नहीं सुन पाए हैं, लगता है कि ऑन द वे कार में हैं सर। एंड हमारे साथ जुड़े थे हमारे सर एंड ये एशियन हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और हमारे रेगुलर लिसनर भी हैं, एवरी डे पार्टिसिपेट करते हैं हर शो में। एंड आज कॉल भी किया सर ने, थैंक यू सो मच सर। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें की थी फ्रॉम द मूवी जीत, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो चलिए आप ही गाना इन्जॉय कीजिएगा दोस्तों, मैं बस लौट कर आती हूँ अभी। आप जुड़े रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गन गनाते रहिए।

तो दोस्तों अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जीत एंड कुमार सानू और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में खूबसूरत ट्रैक। और इस गाने की रिक्वेस्ट में भेजी थी नीपेंद्र चौधरी एडवोकेट जी ने मुरादाबाद से। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, तो ये सर काम में बिजी हो गए हैं और कॉल लगाकर फोन साइड में रख दिया है। तो प्लीज एवरीवन ऐसा मत किया करो, आप इतनी मेहनत से कॉल करते हो हाँ, और उसकी बात इस तरह से करते हो, गलत बात है आपकी। माना कि काम ज़रूरी है, लेकिन देखिए फ़ोन को भी अपने पास रखिए, आप घंटों ट्राई करते हैं उसके बाद आपका कॉल लगता है। चलिए जब तक हमारे पास दूसरा कॉल आता है तब तक हम आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी गदर से, एंड बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है और आपको भी पसंद आएगा। तो हम लौट कर आते हैं इस खूबसूरत गाने के इस पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 4:50 और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार। जी नाम बताइए अपना। हेलो
1: बोलो मैम, बोलो यार। हेलो,
0: हाँ जी, आपस में आप एक दूसरे को बोल रहे हैं। बोलिए बोलिए। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका?
1: गोविंद कुमार।
0: गोविंद जी, आप इतना बात करने में क्यों शर्मा रहे हैं?
1: मैं कुछ काम कर रहा था ना, इसलिए।
0: ओके, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैम, गाना तुम दिला रहे तुम दिला।
0: अच्छा ठीक है, गाना आपको सुनवा देते हैं। ठीक है सर जी, तो चलिए एवरीवन सुनते हैं खूबसूरत सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजी खुशी, और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत। बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े राइट नाउ। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, बताइएगा अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप? ओके, बताइए। अच्छा, दिल्ली से मुरादाबाद वापस आ रहे हैं।
1: काफी दिन बाद आपसे बात हो पा रही है।
0: जी, काफी टाइम की बात बात हो रही है। कैसे लग रहे हैं आपको सर?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, बात कर रहे हैं।
0: जी बताइएगा। अच्छा लगता है, वो तो आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं।
1: जी मैम, थैंक यू सो मच। खुशी इसलिए है कि मेरा फोन अक्सर कनेक्ट हो जाता है सबसे।
0: हाँ ये तो है, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम एक मूवी है दोस्तों।
0: हाँ जी,
1: उसका गाना है देखो जरा देखो, इसका आगे चलिए, बहुत अच्छा सॉन्ग है। होपफुली मुझे लगता है कि सभी एफएम श्रोताओं को, सुनने वाले लोगों को बहुत पसंद आएगा।
0: आपकी चॉइस बहुत अच्छी होती है, सबको पसंद आएगी नो डाउट।
1: थैंक यू सो मच,
0: मोस्ट वेलकम। एंटी के सर, केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और एंजॉय कीजिए ट्रैक। मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये ट्रैक और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। बट देखिए, जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मैं सोचती हूँ कि अभी ना जाऊँ, लेकिन वक्त जो है ना, 2 घंटे कैसे कंप्लीट हो जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता है, और आपको भी नहीं पता चलता होगा, है ना दोस्तों? और दोस्तों, भगवान हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और आस्था से जुड़ने का एक खास मौका मिल रहा है। जी हाँ, हिंद न्यूज़ 9 और एफएम मुरादाबाद 89.6 लेकर आए हनुमान अंश विशेष फिल्म शो, और भगवान हनुमान जी के शौर्य, भक्ति और अद्भुत शक्ति से रूबरू करवाने वाली इस खास फिल्म का आनंद लीजिएगा। ये आयोजन ब्रजलाल कृष्णलाल ज्वेलर्स और कॉस्मोस हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तुत है। सहयोग है जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, क्रिस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन एंड एसएस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, होटल एमबीए एंड ग्रीन क्लास इन राज कलेक्शन, राहुल ठाकुर, राहुल सिंह, श्री शाही मीडिया, प्रभात मीडिया स्टोर, मोहन ज्वेलर्स और मधुरम ग्रुप। तो तैयार हो जाइए भक्ति भावना और सिनेमा के इस खूबसूरत अनोखे संगम के लिए। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी आप जा रहे हैं सेफली जाइए, एंड हैप्पी जर्नी एवरीवन। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। और आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं, और समय की बात करूँ तो 5:00 यानी कि 13 मिनट हो चुके हैं, इवनिंग मस्ती की शुरुआत हो चुकी है। तो आपने क्या करना है जी, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहना है। और आज की तारीख बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल दिन है, मंगलवार, और तारीख है 8 सितंबर। तो यानी कि शो में करने वाले हैं ढेर सारी बातें, अपने मुरादाबाद से लेकर ऑल इंडिया की अपडेट आप सभी तक शेयर करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है भैया जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो आप बेफिक्र रहिए, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऑफिस से निकल गए हैं तो लग रहा है कि भैया बहुत ही ज़्यादा थकान है, या फिर आज बॉस ने थोड़ा डांट दिया है, कुछ सुना दिया है ना, क्योंकि जो आपने उन्होंने काम दिया था वो कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से आपका मूड ऑफ है। तो मैं कहती हूँ जी, ऑफिस की बातें ऑफिस तक, घर की बातें घर तक, जो बात ऑफिस में हुई उसको वहीं छोड़ दीजिए, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन हाँ, कोई भी काम है उसको डिसिप्लिन के साथ करिए, तभी आप, मतलब अगर आप कोई भी काम अच्छे से करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं तो आपकी तारीफ भी होती है ना, और सैलरी भी तो भैया बढ़ी जाती है, पोस्ट तो बढ़ी जाती है। तो आपको अगर है कोई टेंशन तो मैं कहती हूँ जी, छूमंतर करिए और वॉल्यूम बढ़ाइए रेडियो की, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी कड़क सवाल। कड़क सवाल ऐसा होएगा जिसके बारे में आप सोचेंगे कि भैया आखिरकार ये कड़क सवाल क्या होने वाला है, ओफो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। तो देखिए जी, कन्फ्यूज तो होना पड़ता है जब रीना आप सभी के लिए कड़क सवाल लेकर आती है ना, तो कन्फ्यूज़न तो होता है, दिमाग की बत्ती है वो आपने जलानी तो पड़ती है। तो फिलहाल दिमाग की बत्ती अभी से जला लीजिए और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और सुनते रहिए अपने सामुदायिक, अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM। क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

ये अखिया तो सिर्फ आपको ही ढूंढती है और आप ढूंढते हैं कि भैया कब हम घर पहुंच जाए, क्योंकि जब भी ऑफिस से निकलते हैं ना तो दिमाग में एक ही ख्याल रहता है, भैया बस बहुत देर हमने गाड़ी चला ली है और काफी लॉन्ग सफर हमने तय भी कर ली है, बस घर पहुंच जाए और घर पहुंच कर आराम कर ले। अरे रुकिए रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, आप हौले हौले गाड़ी चलाइए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, ठीक है जी? क्योंकि आप कनेक्ट है आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 5:25 हो चुके हैं। तो देखा, अभी है ना आपके पास समय, आप आराम से गाड़ी चलाइए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगानी है, और साथ ही साथ जब आप सड़क पर येलो पट्टियां दिखते होंगे ना तो उसको बीच में से क्रॉस नहीं करना है, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप क्रॉस करिएगा, ठीक है जी? व्हाइट कलर की पट्टियां भी आपको दिखती है, क्योंकि जो ट्रैफिक नियम है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ, देखिए ये आप सोचते होंगे कि रीना मैडम हर रोज बोलती है भैया हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, देखिए अब मेरे को क्या है, लेकिन मैं बस आप सभी को याद दिलाती हूँ क्योंकि मेरा काम है आप सभी की सुरक्षा करना और आप सभी की देख रेख करना। क्योंकि देखिए मेरे साथ साथ आपके घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कब अच्छे से घर पहुंचे, और जब घर वाले आपको सेफ देखते हैं, अच्छा देखते हैं, चेहरे पर मुस्कान देखते हैं ना, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक एक अलग ही खुशी होती है। तो बस इसीलिए मेरी बात मानिए, हेलमेट अपने नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो उसको लगा लीजिए, ठीक है जी? लगाना बहुत ज़रूरी है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सेफ रहने के लिए लगाना होता है। तो बस ज़्यादा जिद नहीं करते बच्चों की तरह, हाँ कोई बात नहीं, घर ही तो पहुँचना है, कौन सी ऑफिस जाना है जो बॉस के

डांट सुनना पड़ेगा, है ना। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनवाते हैं आप सभी को, और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं, देखिए आज उनका भी डे है भैया, जिनकी आवाज बॉलीवुड में गूंजती है आज भी, भले वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी आवाज और इनके जो बॉलीवुड के गाने हैं, मतलब कई भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है, और गाने अनलिमिटेड, सदाबहार गाने, और उन गानों को आप कितनी बार भी सुन लो, जितना बार भी सुनो उतना ही कम लगता है और मन कभी नहीं भरता है, बस दिल से की आवाज़ आती है, यही गाना गूंजना चाहिए हमारे कानों में। तो उनका भी ये गाना सुनवाएंगे, फिलहाल एक और गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ उन्हीं के बाद करने वाली, ठीक है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
6: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
5: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

ती, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। आशा भोसले जी की आवाज़ में इन आँखों की मस्ती, मतलब उनके गाने इतने मधुर आवाज़। और आज उनकी जयंती है और समय की बात करूँ तो 5:39 हो चुके हैं और आज की तारीख 8 सितंबर, 8 सितंबर है आज। और आज हम याद करते हैं उस आवाज़ को जिसने कई पीढ़ियों के दिलों में अपनी जगह जगाई, यानी कि आशा भोसले जी। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशा भोसले ने अपने 8 दशक से ज़्यादा लंबे संगीत सफ़र में 12,000 से ज़्यादा गीत रिकॉर्ड किए और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी आवाज़ दी। 20 से अधिक भाषाओं, सोचिए उनको 20 भाषाएं से ज़्यादा अधिक लैंग्वेजेस आती थी। अगर मैं बात करूँ उनको कौन कौन से लैंग्वेज आते थे तो है मराठी, बंगाली, गुजराती और कई अन्य भाषाओं तक। आशा ताई ने हर अंदाज को अपनी आवाज से खास बना दिया। और साथ ही साथ उन्होंने गीत के साथ साथ गजल हो, भजन हो, लोक गीत हो या फिर पॉप संगीत हो, उन्होंने हर क्षेत्र में एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही लोगों को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ कि हर कोई उनके गाने सुनकर मग्न हो जाते हैं, हर कोई उनके दीवाने हो जाते हैं। और मतलब उनके उनकी जो आवाज़ है ना, अगर आज भी आप उनके जो मैंने गाना प्ले किया था इन आँखों की मस्ती है, उन्होंने ही गाया है, और बहुत ही सुंदर आवाज़। उनके गीत यानी कि सबसे फेमस गीत अगर मैं बताऊँ तो पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, मेरा कुछ सामना, ऐसे बहुत से इनके गीत बहुत फेमस है। अगर आपको भी इनके गीत कोई फेमस है तो आप मुझे बता सकते हैं। नंबर है 9823789689 पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास मैसेज भी आए हैं तो चलिए एक बार देख लेते हैं भैया कि इनका क्या मैसेज आता है। नमस्ते रीना मैम, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से, आप प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से पेश कर रही हैं। आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुनते हैं। एफएम परिवार से सब ठीक है? हाँ जी, हमारे एफएम परिवार में सब ठीक है। और आगे लिखते हैं, तेरे बदन तेरे दी। ये गाना सुनना चाहते हैं, पंजाब चली जाऊंगी, गुजरात चली जाऊंगी। अच्छा जी, ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं सोनू जी, सोनू कुमार जी, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। तेरे अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है ललिता कश्यप जी, और इनका कहना है कि मौसम बड़ा ही औसम हो रहा है, ओहो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि भैया प्रीटी मौसम है आज की। अगर मैं बात करूँ तो आज आशा भोसले जी की जयंती है, उन्हीं की उनको कोटि कोटि नमन, उनका आशीर्वाद मेरी तरफ से आपको। और चलिए फिलहाल एक और गाना हम प्ले करते हैं आप सभी के बीच और फिर कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 5:43 हो चुके हैं, यानी कि 5:43 हो चुके हैं। भैया ऐसे कौन कौन है जो मेरे की तरह हिंदी के जो गिनती होती है ना उसमें अटक जाते हैं बीच में, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी ना, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बाकी आप भी है तो आप भी बता सकते हैं। फिलहाल एक और गाना सुनते हैं बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ। फिलहाल आपने रेडियो की सुई बिल्कुल भी इत्थे उत्थे नहीं करनी है जी। आई नो कि आप ट्रैफिक में सफ़र में हैं, और देखिए ये भी बता सकते हैं भैया कि कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। फिलहाल बात करूँ तो PSC की तरफ से आएंगे, हरथली की तरफ से आएंगे, रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे, दिल्ली रोड की तरफ से आप जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, तो इन जगहों पर तो आपको मिल ही जाती है जाम।
चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, वॉल्यूम बढ़ाइए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गर्ली इवनिंग है आज रीना के साथ। और समय की बात कर तो 5:54 हो चुके हैं। समय है, हाँ जी बिल्कुल। आप आराम से अब ये सोच रहे होंगे ना कि ओहो, शाम होते होते ना भैया टेंशन होने लग जाती है दिमाग में कि आखिरकार रसोई में क्या बनाया जाए, क्योंकि हर किसी की टेंशन, कोई ये नहीं खाएगा तो कोई वो नहीं खाएगा, बस दिमाग में सुबह शाम यही घूमता रहता है। यानी कि जब देखो सुबह शाम खाने की टेंशन होती है, सच बताओ इसकी टेंशन ना कभी कम नहीं होती है। कोई लौकी नहीं खाता है तो कोई आलू नहीं खाता है तो कोई दाल नहीं खाता है, तो मतलब हर किसी के अलग अलग चॉइसेस होते हैं। तो इसी पर भैया समझ नहीं आता कि क्या बनाया जाए, हर किसी के अलग अलग डिमांडें होती हैं। फिलहाल आज एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास डेज मनाए जाते हैं, यानी कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। यानी कि ये डे इसलिए मनाया जाता है, इसको इसका योगदान है फिजियोथेरेपी चोट, बीमारी या शारीरिक परेशानी के बाद लोगों को बेहतर तरीके से चलने फिरने और सामान्य जीवन में लौटने में मदद करता है। फिजियोथेरेपी यानी कि देखिए बहुत से होते हैं जो करवाते भी हैं और करवाना भी चाहिए, क्योंकि इससे आप ठीक रहते हैं, चलने फिरने में आपको अच्छा फील होता है और आप स्वस्थ भी रहते हैं। फिलहाल आज भैया ओहो, क्या प्लानिंग बना रहे हैं मूवी देखने जाने के लिए। चलिए उसके बारे में भी आप बताएंगे कि अगर आप मूवी देखने जाते हैं और कौन सी मूवी आपने देखने जाना चाहिए। देखिए इस मूवी के बारे में हर कोई कह रहा है भैया जाकर एक बार देख के आओ, हनुमान अंश मूवी, तो देख लीजिए। देखिए रीना ने भी कभी आपको फोर्स नहीं करा, लेकिन अब कर रही है, चले जाइए, बहुत अच्छी मूवी है और अकेले मत जाइएगा। आई नो, मुझे पता है कि आप हर बार अकेले जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन अब की बार आपने अपने फैमिली के साथ जाना है। अपने देखिए घर में जो दादी है, बाबा है, उनको भी लेकर जाइए भैया, ये मूवी ज़रूर दिखाइए उनको, हनुमान अंश मूवी। बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कैटेगरी के, जेंजी हो, सबको दिखाइए मूवी, दिखाइए। लेकिन ये हनुमान अंश कितना पॉपुलर है, सनातनी के लिए कितना अच्छा है ये। और देखिए हमें भगवान के साथ कनेक्ट भी रहना चाहिए। चलिए फिलहाल हम भी आप सभी के साथ दोबारा कनेक्ट होंगे लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं जी, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कनेक्ट होते हैं और क्या करेंगे। अरे समझ जाए करो कि ढेर सारी बातें ही करेंगे और क्या ही करेंगे। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक

0: उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए आज शाम 7:45 से रात 10 बजे तक मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न दिल्ली के फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

की आवाज में बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। रात तिति गिड़ी गल रिक्शे दी धांद चिड़िया तेरे इश्क दी। भैया कुछ गाने ना बहुत ही शानदार होते हैं जिनको आप जितनी बार भी सुनो उतनी बार वो कम ही लगती है हमें। फिलहाल दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। समय की बात करूं तो 6:09 हो चुके हैं और आप आरजे उरीना के साथ कनेक्टेड श्रोता हो। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित होगा नेशनल अवार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आपको मिल जाएगा। अरे बिल्कुल मिलेगा, आप अच्छा काम करिए, देश का नाम रोशन करिए, आपको बिल्कुल अवार्ड मिलने वाला है। बेफिक्र बिंदास होकर आप अवार्ड ले सकते हैं लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है ना जी, है ना, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा आपको। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ये 22 सितंबर को गुजरात से शुरू होगा और देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो बॉलीवुड एक्टर्स है जिन्होंने जो नेशनल गेम खेलते हैं जैसे क्रिकेटर हो गए और भी बहुत सारे हैं जिनको अवार्ड दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो भैया पता चले कि आप भी सोच रहे होंगे कि भैया मैं एक्टर बन जाऊँ। देखिए एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है अवार्ड लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप देश का नाम रोशन करिए और आप खूब नाम कमाइए और फिर देखियो आपको भी बुलावा आ जाएगा कि भैया आ जाओ आपको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल सच में चाहे छोटा अवार्ड मिले चाहे बड़ा अवार्ड मिले हमें खुशी मिलती है। चाहे देखिए गिफ्ट में कहते हैं ना अवार्ड में एक आपको पेन एक सिक्का मिल जाना वो भी दिल को खुशी देती है क्योंकि एक सम्मान इज्जत किसको पसंद नहीं है, हर इंसान को पसंद है। इसीलिए कहते हैं हर किसी की इज्जत करनी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने शो में। जो मैसेज आए हैं क्या कहती हैं ये जरा देख लेते हैं। भैया ललिता जी ने कुछ लिखा है, शाम की ठंडी हवा में एक प्यारा सा पैगाम है, रीना मैम को चेहरे पर हमेशा प्यारी सी मुस्कान है, आपकी बातों से महक उठती है हमारा शाम, आप जैसी मैम मिलना भी किसी खूबसूरत तोहफे से कम थोड़ी है। आए हाय इतना तारीफ कर दिया आपने कि भैया सर की ताज ना बन जाऊं मैं थैंक यू सो मच। और आप भी सच में बहुत प्यारी हैं, बहुत एक्टिव लेडी हैं। अगले मैसेज के बात करूं तो गुड इवनिंग रीना जी, आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं जी। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से और इनका कहना है कि अरे बताइए रीना जी सब बढ़िया। अरे हाँ सर सब बढ़िया, ऑल गुड। और इनका कहना है कि रीना मैडम जी हरियाणवी गाना भी बीच बीच में चला दिया करो, अब तो आपने बिल्कुल ही बंद कर दिया है जब से हरियाणवी तरह का शो बंद हुआ है बिल्कुल जी, हम आपको डेफिनेटली हरियाणवी गाना ही सुनाने वाले हैं। बिल्कुल आप बिंदास रही मेगा राम राम जी, ठीक हो तुसी? हाँ ठीक रहने चाहिए। चलिए गाना सुनवाते हैं हम आपको, हरियाणवी ट्रैक ही सुनाएंगे इसके बाद और फिर करेंगे ढेर सारी बातें गुफ्तगू।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है जी, मजा आ गया होगा ना हरियाणवी गाना सुन के। अह क्या बात है जी, मिके ठुमके लगा रहे हो। अच्छी बात है जी, ठुमका लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठुमका लगाते हैं तो सेहत के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ वेट लॉस में बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन उनको बिल्कुल नहीं भैया, जंपिंग और डांस करना है, ठुमके नहीं लगाना, जिनको पैरों में और घुटनों में और कमर में दर्द हो। पता चले कि आप बोलो कि रीना मैडम ने बोला था हम ठुमके लगा लेते भैया और भी दर्द सहन ना कर पाओ, इसलिए जिनको प्रॉब्लम है वो ठुमके ना लगाएं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं मूवी यानी कि हनुमान अंश मूवी के बारे में। अगर आपने अभी तक देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखकर आइए। और अगर मैं बात करूँ, देखिए भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़े रहने चाहिए हमें, क्योंकि हम इंडियन हैं और सनातनी हैं, और भगवान के साथ कनेक्ट रहना, एक अच्छा सुकून मिलता है अंदर से, आपको एक अलग ही अनुभूति मिलती है ना, कि अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है आपको। और मैं बात करूं तो अपने मुरादाबाद में हिंद न्यूज 9 में एफएम मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़े विशेष फिल्म, यानी कि जो ये हनुमान अंश मूवी है हमारा मुरादाबाद एफएम रेडियो, और साथ ही साथ इसमें पावर्ड बाय है ब्रजलाल कृष्णलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, और सपोर्टेड बाय जो सपोर्ट कर रहे हैं जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, कैस हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, एसएस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, होटल एमबीडी ग्रीन, और साथ ही साथ राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह और श्री साई मीडिया, ये सभी इस में कनेक्ट हैं। तो देखिए हनुमान अंश स्पेशल एंड इनवाइटेड बाय हिंद न्यूज 9 मुरादाबाद 89.6 एंजॉय बाय इनवाइटेड ओनली। देखिए अगर आप हमारे रेडियो की तरफ से अगर आपको कॉल आता है तो भैया आपको बहुत अच्छी बात है, मूवी देखने का मौका मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। लेकिन इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको पता चलेगा कल, और डेट भी फिक्स हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देख कर आ गए तो बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं कि भैया हम तो देख आ रहे हैं, क्योंकि ये मूवी ब्लॉकबस्टर पर बहुत ज़्यादा छा रही है। जहाँ तक ये कहा जा रहा था भैया 1 वीक के अंदर इस मूवी अगर ये नहीं चली तो हटा देंगे, लेकिन अब ये मूवी पर्दे पर ही नहीं बल्कि हर जगह धमाल मचा रही है, धमाल ही धमाल, हर किसी का क्रेज हो रहा है भैया मूवी देखने चलो, फैमिली के साथ जाइए, दिखाइए अपने बड़े बुजुर्गों को मूवी, क्योंकि ये मूवी ऐसी है फैमिली मेंबर्स के साथ आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए फिलहाल एक और हरियाणवी ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद आगे।

0: भैया एक मैसेज आता है भैया, जिन्होंने इन्होंने पूरा इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको इसको इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको हम बताने वाले हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि देखिए भैया, हर किसी को इंग्लिश समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी रेडियो सुनते हैं, तो हर किसी के लिए हिंदी लैंग्वेज ये इंग्लिश में है, मैं आपको ट्रांसलेट करके डेफिनेटली सुनाऊंगी कि ये क्या कहते हैं। रीना जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आई होप यू डूइंग वेल। बिल्कुल जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, योर प्रोग्राम इज़ रियली वंडरफुल। तो मैं आपको अब हिंदी में बताती हूँ कि ये क्या कहते हैं। इनका कहना है कि आप कैसे हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगी, आपका प्रोग्राम वाकई में बहुत ही शानदार है, और साथ ही साथ जिस तरह से आप बात करती हैं मुझे बहुत पसंद आता है। और आगे लिखते हैं, आपके बात करने का जो शांत और सौम्य और सहज अंदाज है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, कि आपने बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी हैं, पूरी इंग्लिश में आपने जो लिखा है ना, बहुत ही शानदार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ताकि मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पा रही हूँ, ये भी मेरी बड़प्पन है। और आगे लिखते हैं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि आपको मौका मिले तो आप मेरे जो ये पसंद का गाना बता रहे हैं वो हम ज़रूर शामिल करें। और लेकिन सर देखिए, आपने अपना नाम भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इतना अच्छा मैसेज किया है, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड थैंक्स यू सो मच, विशिंग यू ऑल अ वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जो आपने इतनी प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हैं ना सर, उसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपना नाम भी ज़रूर मेंशन करें कि आपका क्या नाम है। फिलहाल इनके नंबर के 4 डिजिट है, 6955 है। चलिए फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो हरियाणवी गाने सुनकर मज़ा आ रहा है। ओके जी, और हरियाणवी बोलने का अंदाज ही अलग है, वो तो सर हम मैम बोल लेते हैं हरियाणवी लैंग्वेज, इतना अच्छे से बोलेंगे कि कभी कभी आप समझ नहीं पाएंगे हमारी लैंग्वेज को। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, हम सभी आपके प्रोग्राम में शामिल है, आपको हमारी तरफ से प्यारी प्यारी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। चलिए फिलहाल एक कड़क म्यूजिक, कड़क सवाल लेकर आने वाले हैं आप सभी के साथ, बस कल की तरह लेकर आएंगे, आसान वाला, आपने सोचना है और हमें मैसेज करना है। चलिए बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का भी भैया टाइम हो जाता है, तो ये भी प्ले करना बहुत ही ज़रूरी है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
4: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
3: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार, साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। कीड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल आर्जरीना भी आप सभी के लिए लेकर आ गई हैं कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और हमारे पास राइट आंसर पहुंचाना है। देखा, अब दिमाग पर आपको जोर तो डालना ही पड़ेगा जी। चलिए, आप रेडी हैं? थोड़ा रेडियो के जो वॉल्यूम है वो बढ़ा लीजिए, तभी आपको मजा आने वाला है, मजा ही मजा आने वाला है। आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। फिलहाल मैं बता देती हूँ, आज जिनका जयंती भी, आशा भोसले जी की और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गाना है। बस आपने पहचानना है कि जो मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी, गाने का नाम बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपने गाने का नाम बताना है। मैं म्यूज़िक प्ले करती हूँ आप सभी के बीच। आई नो कि आप सभी ने भैया कान खड़े कर लिए होंगे, है ना, तभी आपको अच्छे से सुन पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि आखिरकार जो म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ, आखिरकार कौन से गाने का है, गाने का नाम क्या है।

देखिए जी, सोचिए सोचिए, जल्दी सोचिए। देखिए मैंने बता भी दिया आपको कि ये किनकी आवाज़ में है। आशा भोसले जी हैं, साथ ही साथ मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी है ये गाना। इन दोनों ने मिलकर गाया है। बस आपने, देखिए मूवी का नाम नहीं बताएंगे हम, आपने गेस करना है वो भी। चलिए फिलहाल हम मूवी का नाम नहीं पूछ रहे आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपने गाना ही बताना है। वो तभी आप बता पाएंगे जब इस म्यूजिक को आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बिना ध्यान से सुने तो आप बता ही नहीं पाएंगे जी। चलिए एक बार और हम प्ले करते हैं। आर यू रेडी? आई नो कि रेडी हैं।

लिया लीजिए, बस इतना ही काफी है। आपने सोचना है, समझना है कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है आप सभी के बीच, गाने का क्या नाम है, नंबर है, आपने मैसेज करना है। चाहे आप अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप अपना वॉइस मैसेज भेजिए। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। अच्छा, एक मैम का मैसेज आ गया है कि मैडम एक बार और प्ले करो आप प्लीज़। थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं आपके लिए प्ले, डोंट वरी।

लीजिए, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत बार सुना दिया है, लेकिन इससे पहले गाना भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से पूछेंगे। फिलहाल आप समझ गए हैं तो किस चीज की देरी कर रहे हैं। आप मैसेज करिए, फटाफट फोन उठाइए और मैसेज करिए, या फिर आप अपना वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं हमारे पास। चलिए फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कॉल करके राइट आंसर बताएं तो वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप खुश, हम वैसे ही खुश हैं। जैसे आपकी खुशी, आपकी खुशी में हमारी खुशी है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: हेलो जी, गर्ल्ड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ। आप कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूँ तो 6:46 हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है भैया मौसम फिर से बदलेगा रंग, यानी कि 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हर जगह यानी कि 13 सितंबर को बहुत तेज बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, हर जगह, बहुत जगह बाढ़ इतने ज़्यादा आ चुके हैं भैया कि क्या ही कह सकते हैं। साथ ही साथ बरेली का भी नाम आ रहा है इसमें, कि उधर भी पानी का जो जल भराव है काफ़ी ज़्यादा भर चुका है। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको लग रहा है भैया जिस एरिया में पानी काफ़ी ज़्यादा भर चुका है और जो पुराना मकान है, प्लीज़ उसे

बच कर रहिए ताकि आप सेफ रहेंगे। और आज जो मैंने आप सभी से कड़क सवाल पूछा है, बहुत ही सिंपल वाला पूछा है, कड़क म्यूज़िक पूछा है आप सभी से, बस आपने थोड़ा सा सोचना था और हमारे पास राइट आंसर पहुंचाना था। चलिए एक बार हम म्यूज़िक प्ले करते हैं, लास्ट मौका आपको मिलता है और उसके बाद हम आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे।

जल्दी जल्दी सोच लीजिए भैया, क्योंकि अब अगली बारी आपके मैसेजेस की ही हैं, तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? आराम से मैसेज करिए, सुनिए एक बार और म्यूजिक।

चलिए भैया, अब आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। भैया किनका हमारे पास सबसे पहले राइट आंसर आता है, अब देखना यही है ना, क्योंकि आज का जो गाना पूछा है मैंने बहुत ही आसान, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में जो मैंने म्यूज़िक आप सभी से पूछा है, आई नो कि आप सभी ने राइट आंसर पहुंचा है। चलिए एक बार और म्यूज़िक प्ले करते हैं हम, ठीक है जी।

राइट आंसर हमारे पास आया है, लेकिन इन्होंने अपना भैया नाम बिल्कुल नहीं बताया है, ये तो गलत बात है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। हाय हाय क्या बात है, लेकिन मैम आप अपना नाम बताएंगी तो और भी अच्छा रहता ना मुझे। कोई बात नहीं, इनके लास्ट नंबर है 4 डिजिट है 90815।

सक्सेस की बात करो, क्योंकि आप तो बन चुके हैं हमारे शो के विनर, और ये गाना हम प्ले कर देंगे। ललिता जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुई। आशिफ जी भी हमारे साथ राइट आंसर के साथ। और बात करूं बबलू सैनी जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। ये है कल्याणपुर पीतल नगरी मुरादाबाद से कनेक्ट। और गुड इवनिंग रीना जी गान राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। इनका नाम है हरिओम महेश्वरी मुरादाबाद लाइन पर। रीना जी गुड इवनिंग, आपने जो सवाल पूछा है, यानी कि गाने का नाम है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात मूवी से आपने ये गाना म्यूजिक प्ले किया है। बिल्कुल जी, नजर नहीं चुराना। वैदिक जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लाइन पर मुरादाबाद। और भैया हमारे ऑफिस के ही लोग कनेक्ट हो गए हैं, अखिल भैया जी जो रात को आते हैं 9 बजे दिल की बात दिल तक करते हैं, ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं। शैयद शारिक अली रीना जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, आपका शो हम सुन रहे हैं, इवनिंग मस्ती बहुत ही अच्छा लग रहा है और साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो, थैंक यू सो मच सर। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर भी देते हैं, ये चुरा लिया है तुमने जो दिल को, आसिफ भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यादों की बारात मूवी से ये गाना है। और जिनका हमारे पास राइट आंसर पहुंचा था भैया कोमल शर्मा है इनका नाम, इन्होंने अपना नाम फाइनली बता दिया है, तो आज आप बनती है इवनिंग मस्ती शो के विनर। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से क्या, अरे जाने की इजाजत, हम आपको कल मिलने वाले हैं सेम टाइम एंड सेम जगह करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करने वाले, अभी के लिए बाय बाय।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहाँ सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहाँ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे

0: ये वो शहर है जहाँ सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
1: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियाँ, जलेबी की मिठास, पान की गुलियाँ और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
0: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
1: ये सिर्फ आर्थिक योजना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पूर्ण जागरण। सोचिए बनारस की गलियों से उठती खुशबू अब विदेशों तक पहुंचेगी,
0: और सिर्फ पहुंचेगी नहीं दिल जीत लेगी।
1: तो चलिए शुरुआत करते हैं उस स्वाद से जिसके बिना बनारस की सुबह अधूरी है, बनारस की कचौड़ी।
0: अरे वाह, नाम सुनते ही भूख लग गई। बनारसी कचौड़ी की खासियत ही अलग है। पूरे देश में कचौड़ी मिल जाएगी लेकिन बनारसी कचौड़ी का जवाब नहीं।
1: देसी घी से सना हुआ कड़ा आटा, अंदर उड़द की दाल, मसाले पिट्ठी और धीमी धीमी आंच पर तली गई कुरकुरी कचौड़ी, फिर उसके साथ आलू टमाटर की सब्जी, कोहड़ा चना, घुंघरी और मीठी इमली की चटनी। उफ
0: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
1: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं।
0: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
2: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गणवाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जोन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जोन बा।
1: दोस्तों योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
0: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
1: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कौशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
0: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
1: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
0: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
1: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
0: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
1: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है।
0: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुँचे।
1: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
0: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
1: अरे बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
0: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती है हैं तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
1: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छानकर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं, लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
0: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
1: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
0: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
1: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोए से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है।
0: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
1: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
0: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी, लौंग लता।
1: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
0: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
1: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
0: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
1: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
0: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
1: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू। वाह, जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
0: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
1: जी हाँ, बनारसी पान।
0: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
1: ताजे महकते पत्ते, कत्था, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
0: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
1: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
0: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
1: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
0: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
1: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
0: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
1: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
0: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
1: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
0: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
1: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
0: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
1: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
0: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
1: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
0: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
1: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
0: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
1: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो। आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
1: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
1: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है सर? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
1: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइक थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
1: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
1: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: ब्यूटीफुल।
1: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: वाओ।
1: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
1: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या?
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
1: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
1: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
1: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सर, समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें, जब न्यू बॉर्न बेबी होता है,
1: जब बेबी डिलीवर होता है। एक्चुअली कॉमन चीजें, कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
1: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
1: हैं।
0: जी जी जी।
1: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
1: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं,
0: बट
1: ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती है। तो कुछ जैसे कि, जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धो के ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके सर, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
1: हाँ, डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है,
0: हाँ,
1: तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट।

0: एंड अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे माँ के पेट के ऊपर रख देते हैं।
1: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक,
0: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
1: ऑलराइट,
0: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है, जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है, अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है, बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
1: जी।
0: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है।
1: ओके।
0: तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है, कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है, उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह, अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
1: ओके डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
0: बेबी को 2 to 3 आवरली, इनिशियली 2 to 3 आवरली हम बोलते हैं, जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं, कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं, जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
1: हैं, हाँ जी,
0: उनको नहीं पता
1: नहीं
0: होता
1: पता
0: है,
1: होता
0: वो क्या
1: है।
0: करती हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क, मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
1: जी।
0: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं, जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
1: ओके।
0: क्योंकि क्या होता है, अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट, मतलब कि उसकी प्यास बुझती है, उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है, जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं,
1: हाँ जी,
0: उसमें
1: हाँ
0: हमारे फैट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं, तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं भरेगा, बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड, मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्प कराना, मतलब डकार दिलाना, बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाना, उसको अच्छे से बर्प करा के तभी लेटाना।
1: बहुत ही बढ़िया, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं, तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना, तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है, तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए?
0: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना, अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: वो कॉमन चीजें होती हैं, सबसे पहले
1: मतलब कोई रीजन, कोई कारण, मतलब जिससे पता,
0: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है, वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं, हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं, इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है, अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है, मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल, अब बेबी की नोज गंदी है, वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं, तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं, बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं, शांत हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है, कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है, वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में?
0: छोटे बच्चों में ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है, मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: ठीक है, बहुत
0: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ठीक है। तो हमें, मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25 to 27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो। ठीक है, और दूसरा चीज आती है बच्चे का टेम्परेचर, आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथ और पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहनाने हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
0: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
1: जी,
0: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
1: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
0: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
0: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीनी, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को ICU की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग करनी होती है, मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें, जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे, जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूट्रो एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल होगी, और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा, श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा, जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश नहीं है जाते जाते?
0: मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों में हमें डेंजर साइंस का ध्यान रखना चाहिए, डेंजर साइंस मतलब खतरे के संकेत।
1: हाँ जी।
0: किस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना है?
1: जी जी।
0: अगर बच्चा सुस्त है, मोस्टली बच्चे पूरे दिन सोते हैं, फीड करेंगे सो जाएंगे, फीड करेंगे थोड़ी बहुत एक्टिविटी करेंगे सो जाएंगे, बट आपके उठाने से भी नहीं उठ रहे हैं, वो बच्चा सुस्त है, आप उसको अस्पताल लेके जाएंगे। बच्चे को दौरे आ रहे हैं या फिर बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है या बच्चा दूध नहीं पी रहा है या फिर बच्चा तापमान बच्चे का टेम्परेचर काफी कम है या उसको बुखार है।
1: हाँ जी हाँ।
0: ठीक है। या फिर बच्चे के हथेलियां तलवे पीले हो गए हैं, ये सब हमारे डेंजर साइंस होते हैं, इनको बेहद ध्यान रखना है। और ऐसी अगर बच्चों में कोई भी चीज देखने को मिलती है तो तुरंत अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें।
1: बिल्कुल।
0: और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
2: चमन सेवा के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से इन इमारतों के अंदर मौजूद छात्रों का सामान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तेज कर दी है। महापौर प्रवेश वाही और निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की पहचान करने, जोखिम के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करने और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जहां आवश्यक हो सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण सहित तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि उपायुक्तों को पेइंग गेस्ट आवासों, स्कूलों, होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनिवार्य स्वीकृतियां, अनुमतियां तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध और वैध हों। आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्यनिकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ है।
2: सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था, जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
2: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन और सुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पेइंग

0: गेस्ट संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय जीओवी पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है। श्री सूद ने यह बात आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। एक रिपोर्ट।
1: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद छात्रों की जीवन स्थितियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सीधे समझने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव, विभिन्न समस्याओं और पीजी व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिचालन तथा बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं के बारे में श्री सूद को जानकारी दी। छात्रों ने एक समर्पित वेब पोर्टल बनाने की मांग की, जिस पर पीजी संचालकों के लिए किराया, भोजन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। वहीं मतदाताओं से बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय बैठक में छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
2: अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अंतर्गत एक कमेटी जो पीजी चलने के कानूनों के बारे में बात करे, नए हॉस्टल्स के बारे में बात करे, के संदर्भ में कमेटी का गठन किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज स्टेक होल्डर्स के साथ हमने बात की है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के तौर पर हमने ये निर्णय किया है कि कैसे उनको सुरक्षित पीजी मिल सकते हैं, क्या क्या कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से नए हॉस्टल के लिए ज्यादा FPR लाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता।
1: इसके अलावा श्री सूद ने बताया कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में दक्षिणी परिसर, मुखर्जी नगर सहित राजधानी के प्रमुख छात्र क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर कड़े संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा हॉस्टल के लिए फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है उसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी, बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल की जनता और सरकार के साथ एकजुटता और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत, बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज राजधानी में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7:45 से रात 10 तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए विभाग ने यातायात के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।
4: ब्रिक्स समिट दिल्ली में 11, 12, 13 सितंबर को है भारत मंडपम में। इसमें बाहर से हेड ऑफ द नेशंस और फॉरेन डेलीगेट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स, काफी VIP मूवमेंट होगा। तो इसके तहत हम लोगों ने डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट बनाया है। हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग डायवर्जन देंगे। भारत मंडपम के पास जो भी आसपास के, जैसे मथुरा रोड है, भैरव मार्ग है, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे।
0: UGC नेट की पुनर्परीक्षा बुधवार और गुरुवार को होगी। इस परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा में शामिल होने जा रहे दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए एक सलाह जारी की गई है। निर्देश में राजधानी में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना बताई गई है। विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से संवाद भी किया। विद्यार्थियों ने विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर का निर्देशित भ्रमण किया तथा इसके समृद्ध स्थापत्य और संस्थागत विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इनमें प्रस्तावित दिल्ली औद्योगिक नीति 2026-2036, दिल्ली स्टार्टअप नीति 2026-2031, दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम, निर्यात संवर्धन, नवाचार पहलों के समयबद्ध क्रियान्वयन और एमएसएमई सहायता जैसे विषय शामिल रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान दिल्ली के औद्योगिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही एमएसएमई और कारीगरों को सहयोग प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी सेवाओं की तेज और अधिक प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों पर भी समीक्षा की गई। उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज घड़ौली वार्ड 194 क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उप महापौर ने अतिक्रमण, अवैध डेयरियों तथा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में संबंधित विभागों को तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थानों के प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए उप महापौर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने तथा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग ने 2300 किलोग्राम से अधिक खोया, धाप और मक्खन जब्त किया है। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मजनू का टीला स्थित एमसीडी डंपिंग साइट पर नष्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री दुर्गंधयुक्त और खराब अवस्था में थी और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में लावारिस पाई गई। श्री सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वो गहन निरीक्षण जारी रखें और पूरे त्योहारों के मौसम में कड़ी निगरानी रखें। कला संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने आज राजधानी को पर्यटक स्थल बनाने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों की सुरक्षा और सुगमता पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार मराठी, संथाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और गढ़वाली सहित अन्य भाषाओं और विधाओं में उत्कृष्ट फिल्मों को भी मान्यता देते हैं। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार किसी संथाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के गैर फीचर फिल्म वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी, लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: यार आज शाम को जब मैं गुरट्टी चौराहे की तरफ से निकला तो भाई इतना भयंकर जाम, और आधा जाम तो वो जो आसपास में लोग खाने पीने के लिए लाइनें लगा लेते हैं ना भाई, उसकी वजह से और ज्यादा जाम लग जाता है। तो अगर आप साइड में खाने पीने के लिए अभी रुक रहे हैं तो जरा सही तरीके से खड़े हो जाओ भाई साहब, क्योंकि आपकी वजह से पीछे ट्रैफिक लग रहा है। हाँ जी, कैसे हाल चाल है? आज की शाम को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए मैं आपके इस रेडियो पर आ गया हूँ। आनंद मेरा नाम है और वक्त आपको पता ही है, शाम के 8 बज रहे होंगे यार इस टाइम पे, है ना? एग्जैक्टली। तो मेरे पास भी आज घड़ी नहीं है तो मैं भी बता नहीं सकता हूँ स्टूडियो की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी हमारे साथ अखिल भाई भी हैं। कैसे हैं भाई आप?
5: मैं बहुत बढ़िया हूँ। और कैसे हो आनंद, कहाँ चले गए थे आज गुरट्टी पे? क्या करने चले गए
4: गुरट्टी पे? यार देखो यार, मैं मुरादाबाद में अभी मेरे को 3 साल हो गए अखिल भाई, लेकिन मजे की बात ये कि अभी भी कुछ गलियां ऐसी हैं जहां मैं भटक जाता हूं, पता ही नहीं चलता है। इतनी छोटी छोटी गलियां ना आपके मुरादाबाद में, क्या बताऊं बाप रे, एक से घुसो दूसरे में कब आ जाता हूं पता ही नहीं चलता है भयंकर।
5: यही तो खासियत है यहां की
4: सच में यार। और मजे की बात यह है कि लोग भी बहुत बढ़िया है, किसी से कुछ पूछो तो वो बताते जरूर है, भले वो गलत बता रहे हो, ठीक है, उनसे पूछो कुछ तो बताते कुछ है, कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। बट खैर, आज की जो शाम है बहुत अच्छी हो रही है, और मैं गुरट्टी की तरफ गया था किसी काम से, लेकिन वहाँ खाने पीने का बड़ा रश था यार। मुझे लग रहा है कि खाने का अड्डा वो भी है क्या?
5: पूरा पूरा एक अड्डा है, गुरट्टी से लेके कचहरी तक पूरा खाने पीने का तामझाम है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया सा। अगर चाट पकौड़ी और गोलगप्पे खाने तो वहीं पे जाता,
4: वहीं पे जाओ। मैं वही देख रहा था, आज लोग लाइनों में खड़े हुए थे। वेल, अभी आप लोग भी लाइनों में लगे हुए होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइन में तो खड़े होंगे। आज मंगलवार का दिन है, तारीख क्या है आज?
5: तारीख है, तारीख 8।
4: एग्जैक्टली, आज 8 सितंबर है, और आज हमें कहीं जाना था बट अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वहां हम नहीं जा रहे, तो इसलिए हम रेडियो पे आगे फिर बातें करने, क्योंकि आज हमें कॉन्सर्ट में जाना था, आप भी जाने वाले थे ना। ओहो क्या बोल दिया आनंद, तो आज वो कैंसिल हो गया अखिल भाई।
5: हाँ, जो कैंसिल हो गया।
4: कभी कभी ऐसा होता है ना, समय का पता नहीं होता कब क्या हो जाए यार।
5: हाँ, थोड़ा सा रैंडम हो जाती है चीजें।
4: मतलब हम सोच रहे थे, इतने एक्साइटमेंट थे कि आज मैंने सुबह ही बोला कि शाम को मिलते हैं, लेकिन शाम को ये नहीं पता था कि वहां नहीं यहां ही मिलेंगे वापस। तो खैर, इन्हीं में बातें होती रहेंगी, कुछ गाने सुनते हैं, वापस आते हैं, और आज बड़ी मजेदार बातें लेकर आए हैं अखिल साहब आपके लिए, और इनसे बातचीत करेंगे और साथ में आपको भी एंजॉय कराएंगे अच्छे गाने और अच्छी बातें। तब तक के लिए एक कुछ गाने लगाते हैं। तो अखिल भाई, आप कौन से स्टेशन में बैठे हो?
5: मैं इस समय बैठा हूँ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
4: क्या बात है, बहुत ही

0: बढ़िया। चलो जी, रेडियो बजाते रहिए
1: और गुनगुनाते रहिए।
0: वेलकम बैक है जी। कुछ धाकड़ गाने आपने सुने एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो से। लाइव अखिल और आनंद आपके साथ हैं आज ट्यूजडे की शाम में। ऑफकोर्स जाम तो हल्का फुल्का मिलता ही है स्टेशन रोड पे, तो भाई भसड़ लगी होती है। अखिल भाई, ऐसा क्या है तुम्हारे स्टेशन रोड?
1: स्टेशन रोड पे ना ऐसा क्या नहीं है, ये आपने गलत पूछ लिया। ऐसा क्या क्या है ये पूछना चाहिए।
0: मैं यही पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या है वहाँ? आपने सुना नहीं होगा शायद, आप भी उस जाम में खो गए होंगे कभी ना कभी।

0: वेलकम बैक है जी। कुछ धाकड़ गाने आपने सुने एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो से। लाइव अखिल और आनंद आपके साथ हैं। आज ट्यूजडे की शाम में ऑफकोर्स जाम तो हल्का फुल्का मिलता ही है। स्टेशन रोड पे तो भाई भसड़ लगी होती है। अखिल भाई ऐसा क्या है तुम्हारे स्टेशन रोड पे?
1: स्टेशन रोड पे ना ऐसा क्या नहीं है, ये आपने गलत पूछा। ऐसा क्या क्या है ये पूछना चाहिए।
0: मैं यही पूछ रहा हूँ ऐसा क्या है वहाँ। आपने सुना नहीं होगा शायद, आप भी उस जाम में खो गए होंगे कभी ना कभी। इसका ये
1: वहाँ पे है महेश्वरी ढाबा, महेश्वरी भोजनालय, वीआईपी रेस्टोरेंट, ओके रेस्टोरेंट, और इन सब पे मिलता
0: है। इन सब ने इनको फ्री में खिलाया हुआ इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। भाई मुझे नहीं खिलाया तो मैं नहीं लूंगा इनका नाम, ठीक है। शायद इनके रिलेटिव हो सकते हैं इसलिए इतनी ज्यादा उनकी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। लेकिन आप से कोई सुन रहा है या जा रहा है तो अच्छी बात है, जाओ यार। कुछ
1: और खूब मस्ती भी करिए। और थोड़ा सा जाम जो है ना, एक्चुअली क्या मोस्टली जाम हम लोगों की वजह से लगता है।
0: एग्जैक्टली
1: गाड़ी इधर उधर लगा लेते हैं, ऑटो वाला भी एक सवारी के लिए बेचारा वो भी वेट करता है, तो वो साइड में ना होके उसे जहां रोक रहा है।
0: इनफैक्ट मैंने एक चीज और देखी है, स्टेशन रोड पे ना ज्यादातर तो लोग बन मस्का और चाय के लिए ना बाहर तक खड़े होते हैं। वहाँ पे बड़ा पॉपुलर है चाय, इवन लेट नाइट लोग वहाँ खड़े होते हैं चाय की शॉप पे। तो इस वजह से भी भसड़ मच जाती है क्योंकि इधर पब्लिक खड़ी है, इधर पूरा रोड चल रहा है, ठीक है, पब्लिक भी चल रही होती है, कुछ साइड बाय साइड लोग भी खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा रश बन जाता है,
1: थोड़ा सा स्लो हो जाता है ट्रैफिक। मतलब प्रॉपर एकदम ऐसे नहीं कह सकते कि जाम हो जाए, मगर उस वे में थोड़ा सा स्लो हो जाता है।
0: और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा चलने वाली रोड है क्योंकि एक मेन रोड है बेसिकली, रामपुर रोड है शायद वही ना, तो वो पूरा निकल रहा है हनुमान मूर्ति की तरफ से और ये पूरा रोड इधर से आ रहा है, काट रोड इधर आ जाता है।
1: और सबसे अच्छी बात ये कि इंपीरियल के पास एक फुट ओवर ब्रिज बन गया है, बहुत जल्दी लोगों को वहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा कंजेक्शन होता है क्योंकि डिवाइडर है और लोग क्रॉस करने में दिक्कत होती है,
0: वो चालू हो गया,
1: तो वो चालू हो गया है
0: और उस पे लोग जा सकते हैं। मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बात अलग है, बट जरूर जाऊंगा एक दिन। आप गए हो?
1: मैं अभी तक तो नहीं गया हूँ, मगर वैसे जो मार्केटिंग करने आ रहे हैं, जो लोग स्टेशन से आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है।
0: अच्छी बात है, लेकिन लोग अच्छी बात फॉलो नहीं करना चाहते ना। मेन बात ये, मैं जब भी निकलता हूँ लोग पुल से बड़े ना के बराबर चल रहे होते हैं कि सबको इतनी जल्दी है, सब पैदल ही भागने लगते हैं। भैया गाड़ी वालों को हाथ है, रुक जा भाई, मैं सांभा हूँ, मुझे निकलने दे, नहीं तो मुकेम्बो नाराज हो जाएगा वाला सीन है। अगर हमने गाने नहीं बजाए तो लिसनर नाराज हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही। एक शायरी मैं
0: कैसे बोल सकता हूँ कि अगर शायरी आपने तैयार रखी हुई है,
1: कोई कर्ज ना हो तो एक शायरी अर्ज कर दूं?
0: अरे प्लीज भैया।
1: हंसते रहो तो दुनिया साथ निभाती है, वरना आंखों में नमी हर बात छुपाती है।
0: अरे वाह।
1: जिंदगी को खुलकर जीना सीख लो दोस्तों, क्योंकि ये पल वापस नहीं आते।
0: वेरी नाइस, ये बात तो बिल्कुल बहुत अच्छी बोली है। ये पल वापस नहीं आएगा और लाइफ में जो है ना कोई भी चीज दोबारा नहीं आती है। जो एक बार आ गई, ये वाला शो भी हम एक ही बार कर रहे हैं, दोबारा नहीं करेंगे। करेक्ट। कल कुछ नया होगा,
1: ये लोग भी एक बार ही सुन रहे हैं, दोबारा नहीं सुनेंगे।
0: एग्जैक्टली। तो अभी जो हम गाने चला रहे हैं वो भी आप आज सुन रहे हो, कल चलेंगे लेकिन कल नए चलेंगे। चलो फिलहाल गाने, उसके बाद हम वापस आते हैं कुछ नई शायरियों के साथ।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, रेडियो जॉकी हूँ आपका, किसी और का मत समझना। अंकिल भाई कुछ तो बोलो।
4: बहुत खूब, बहुत खूब।
3: रेडियो जॉकी तो हम अपने लिसनर्स के लिए हैं, एफएम मुरादाबाद में पिछले 3 सालों से हैं।
4: बिल्कुल सही कहा। आप ये बताओ, आपने चमेली चमेली के फूल से,
3: आज वो मंगलवार है तो मंगलवार के दिन चमेली का फूल और तेल का बड़ा कॉम्बिनेशन है ना।
4: चमेली के तेल में दिया जलाना चाहिए।
3: हाँ, दिया जलाना चाहिए। वो बात अलग है कि अभी हम लोग जला के नहीं आए और शायद आ भी गए होंगे तो अभी हम बताना नहीं चाह रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखिल जी बताइए आप क्या सुनाने वाले हैं।
4: तेरी मुस्कान मेरी पहचान बन जाए,
3: अरे बाबा,
4: तेरी खुशी मेरी जान बन जाए,
3: वेरी नाइस,
4: कुछ इस तरह बस जा तू मेरी जिंदगी में, कुछ इस तरह बस जाए तू मेरी जिंदगी में कि हर पल तेरा नाम मेरी जुबान बन जाए।
3: अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी जुबान तो बनी हुई है हमारे श्रोताओं की बातें जो आप 9 से 10 करते हो डेली। याद है आपको लास्ट में कुछ नाम पूछे थे आपसे आपके प्रिय श्रोताओं के, अगले दिन कुछ आया था आपने सुना था?
4: हाँ हाँ, कई श्रोताओं के फोन आए थे।
3: हाँ।
4: कहते साहब क्या बात, हमसे कोई खता हो गई क्या?
3: हाँ हाँ, उनको बोलो खता नहीं हुई है, खत भेजना शुरू करो फिर खता होगी।
4: अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एक दिन के लिए किसी भी एक फिल्म का हीरो बनने का मौका मिले आनंद जी, तो आप कौन सी फिल्म का हीरो बनेंगे?
3: अरे वाह बड़ा अच्छा सवाल पूछा। रेडियो का हीरो बनने का मौका मिलता है तो मैं जरूर बताता। चलो बात फिल्म की आई है तो मैं मैनिफेस्ट करके बताऊंगा, क्या पता सच हो जाए। आप कमिंग है जो हो चुकी है उसकी बात कर रहे हो आप?
4: नहीं नहीं, वो तो आपकी पसंद के ऊपर।
3: अच्छा ठीक है, चलो मैं जरूर बताऊंगा। गाइस एक काम करेंगे, इससे पहले मैं एक चीज अखिल भाई आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको एक दिन के लिए एक सुपर पावर मिल जाए कुछ बेहतरीन करने की, तो आप क्या करना चाहोगे?
4: अगर मेरे को सुपर पावर मिल गई ना आनंद, तो जो भी बंदा जिस भी एटीएम के सामने से गुजर रहा है ना, उसमें इतनी पावर डाल दूंगा कि उसे एटीएम मशीन के अंदर नहीं जाना पड़े, वहीं से वहीं उसका बटुआ भर जाए।
3: अरे वाह क्या बात है, मतलब वो अपना बिना कार्ड लगाए पैसे ले ले,
4: बस एटीएम के सामने से निकले सटैक जो अमाउंट थी वो उसके अकाउंट,
3: मतलब जो वो इमेजिन करके घर से निकला कि आज एटीएम से मेरे को 5,000 लाने, तो उसको एटीएम तक पहुंचने से पहले 5,000 आ जाएं,
4: तब पता चल गया तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपए।
3: अरे वाह वेरी गुड। नहीं मेरे अकाउंट में 5,000 नहीं है भाई, मैं तो एक मुद्दे की बात बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा चलो आपने पूछा मूवी के बारे में, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा मेरा एक बहुत ही अच्छा, ये आपने सवाल पूछा मेरे इस पे बहुत अच्छा आंसर भी है, मैं चाह भी रहा था कि मुझसे ऐसी चीज पूछे, बट एक काम करते हैं कुछ गाने सुन लेते हैं अच्छे अच्छे, क्योंकि गीत संगीत बहुत जरूरी है ना अखिल भाई जीवन के लिए भी और श्रोताओं के लिए।
4: बिल्कुल सही
3: है ना। तो हम कौन से चैनल पे बातें कर रहे हैं जरा ये बताओ, ये भारी भरकम
4: ये सारी जितनी भी बातें होती है ना आप ही के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे होती है जिसका नाम है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़।
3: क्या बात है, वेरी नाइस। चलो जी गानों के बाद हम जल्दी वापस आते हैं और मैं इसका आंसर भी लेके आ रहा हूँ।

0: इश्क में हमने बहुत नाम कमाया, हर गली में अपना किस्सा सुनाया, फिर पता चला वो किसी और की थी, हमने तो बस फ्री में टाइम गवाया।
1: अरे वाह क्या बात है, आजकल फ्री के टाइम की बहुत वैल्यू हो भैया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो, जो पहले ना फ्री में मिलता था साहब, आप कितनी बातें करनी है करते रहो, ना कोई रिचार्ज का झंझट ना कुछ, और अब वो जैसी फ्री खत्म हुआ तो यार मोबाइल यार 4 दिन हो गए मेरा रिचार्ज नहीं हो पाया।
1: अब तो 4 दिन, अब तो लोगों को सुबह खत्म हुआ रात में रिचार्ज हो जाता है, भले वो MB वेस्ट हो जाए। करेक्ट। अच्छा मेरे को इस चीज से याद आया, पहले तो आपकी जो आपने वाहियात शायरी बोली बहुत अच्छी लगी, इट वाज सो अमेजिंग। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ अखिल भाई कि आपने अभी रिचार्ज की बात करी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम पूरा दिन इतने बिजी हो जाते हैं कि हमारा जो इंटरनेट होता है हम खर्च नहीं कर पाते हैं, डेली का जो भी आता है 1 GB 2 GB जो भी अपना पैक लिया हुआ है सबने, बट वो नेक्स्ट डे हमारा वेस्ट हो जाता है 12 बजते ही। राइट, तो मैं चाहता हूँ कि यार वो इंटरनेट अगले दिन लग जाए ना हमारा तो कितना अच्छा रहे। जो सपोज आज आपने पूरा दिन नेट नहीं चलाया, बहुत बिजी थे, आपका वो 2000 MB वेस्ट हो गया, ठीक है आपने कोई मूवी नहीं देखा कुछ नहीं देखा, बट अगर वही जब जो आपने नहीं यूज किया वो बाद में मिल जाए तो कितना अच्छा रहे, जब आपका पैक खत्म हो जाए तब आपको मिल जाए।
0: ये आपने तो अच्छा सोचा है, मगर जो इस कंपनी को चला रहे हैं या जो इस प्रोडक्ट को चला रहे हैं उनकी नजरिए से
1: हम उनको ये लेटर भेजेंगे, कितने श्रोता अग्री कर रहे हैं इस बात से।
0: आप समझ नहीं रहे, किसी ने कह दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो जब तक उसने दुनिया मुट्ठी में नहीं करनी है ना तब तक वो पीछे नहीं हटे, तो आप कुछ भी करते रहो, अब आप उसकी मुट्ठी में आ चुके हो, समझदार तो आप
1: सही कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एनीवेज आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था बैक टू पॉइंट, की अगर आपको किसी फिल्म में क्या पूछा था आपने, हीरो बनना हो किसी फिल्म का, ऐसा कुछ
0: कौन सी फिल्म में आप हीरो बनने का अगर आपको मौका मिले किसी फिल्म में, तो आप कौन सी फिल्म में कौन सा हीरो, कौन सा करेक्टर,
1: किसी हीरो की तरह लाइफ जीना वाला, क्या पूछा क्या था ये बताओ यार।
0: हमने ये पूछा था किस हीरो की तरह बनना चाहेंगे,
1: बनना चाहेंगे किस हीरो की तरह। ओके, तो सबसे पहले मेरा जवाब होगा ऑफकोर्स आप सभी के, मेरे हम सभी के फेवरेट है SR खान, शाहरुख खान की तरह मुझे बनना है यार। वो बंदे ने जो मैनिफेस्टेशन करी है ना अपनी लाइफ में, जो उन्होंने बोला है वो सच करके दिखा दिया है, तो अगर मुझे एक दिन के लिए शाहरुख खान की लाइफ जीने को मिले तो मैं जरूर जीऊंगा, भले ही मैं उसकी तरह रोमांच का बादशाह ना बन पाऊं।
0: रोमांच नहीं, रोमांस
1: यार मैंने कभी किया नहीं है, मेरे को पता ही नहीं है, तो मैं रोमांस
0: ऐसी होता है
1: रोमांस बोल देता हूँ मैं पूरा फील के साथ।
0: रोमांस की जगह
1: रोमांस ही रोमांस। गाइस हम लोग बैंड बजा रहे हैं फिलहाल शाहरुख खान की नहीं इस वर्ल्ड की, तो आई नहीं बैक टू पॉइंट, तो मुझे एक दिन के लिए अगर SR खान का लाइफ जीने का मौका मिले तो मैं जरूर जीना चाहूंगा। आई नो उसके जैसा बनने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़ सकते हैं शायद, है ना, और अगर मैं मेहनत करूं तो इस जन्म में भी हो जाए।
0: बिल्कुल सही कहा, तुम 7 जन्म की बातें जो अभी से करने वाले हो, अभी तो तुम्हें शादी में बहुत टाइम है यार, ये बातें तब याद करना कि 7 जन्म।
1: अरे भाई शाहरुख खान बनने की बात कर रहा था ना मैं, हालांकि अपनी लाइफ का हर एक बंदा शाहरुख खान है, हर बंदे की लाइफ में रोमांस है, हर बंदे की लाइफ में फन है, हर बंदे की लाइफ अपनी लाइफ का हीरो है। करेक्ट,
0: और तुम्हारी नजर से मोबाइल पे जा रही है।
1: हाँ यार मोबाइल पे इसलिए जा रही क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज आया, लेकिन हम कुछ गाने बजाते हैं जल्दी से वापस आते हैं। याद आई
0: हीरो से बात याद आई आनंद, हमारा ही मुरादाबाद का एक हीरो है वर्षिप खन्ना, और आज वो ना हमसे कुछ कहना चाह रहा है क्योंकि वो नॉमिनेट हुआ है 1 of the reputed शो में जो पोल बोल है, और इसमें उसने जो एक्ट किया है ना, जो टीवी स्टार मतलब लाइक उन्होंने बहुत ही इस समय एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दी है, और वो आज रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप लोग सब साथ में उन्हें वोट करें, तो जरूर उनकी रिक्वेस्ट सुन, चलिए क्या रहे हैं वो
1: जरूर।
2: Hi guys, this is me वर्षिप खन्ना, और आज मैं आप लोगों के पास आया हूँ अपने लिए वोट मांगने। गाइज आप लोगों के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच नॉमिनेशन में आया हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से एक शो कर रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है बता दो, द शो नेम इज पति ब्रह्मचारी, जो कि दंगल और यूट्यूब दोनों पर ही आता है, नंबर 1 शो है। मेरा किरदार है उसमें पूरन, जो कि काफी फेमस है, लेकिन आज जब वो नॉमिनेशन में आया है तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के बीच नॉमिनेशन में है, और ये अवार्ड मेरे करियर के लिए और मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा प्यार दिखाएं और मुझे वोट करें और मुझे ये अवार्ड जिताएं, ताकि मैं अपने करियर में कुछ आगे और बढ़ा कर सकूं और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिले। वोट करने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें करनी है, मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों को लिंक भेज रहा हूँ, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, वहाँ पे टेलीविजन कैटेगरी में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल कैटेगरी है, उसके आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ नीचे मेरा नाम है वर्षिप खन्ना पूरन एस पति ब्रह्मचारी, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे जाने के बाद वो आपसे आपका फोन नंबर मांगेंगे, फोन नंबर मांगने पे घबराइए मत, वो सिर्फ आपका नंबर कंफर्मेशन के लिए लेते हैं कि आप एक नंबर से एक ही वोट कर सकते हैं, ताकि कोई स्कैम या फेक वोट ना हो सके। आपको OTP आएगा, आपको वो OTP व्हाट्सएप पे आएगा, आपको वो रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको मुझे वोट कर देना है। आपका वोट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. दिस इज नॉट ओनली अ वोट, दिस इज अ कॉन्फिडेंस फॉर मी. सो प्लीज प्लीज प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी. आई लव यू गाइस.
0: साहब हमारे वर्शिप खन्ना के लिए खूब वोट करें. और कहते हैं ना भाई, मुरादाबादी हीरो है तो कम तो किसी से नहीं है वो.
1: क्या बात है, चलो ये तालियां. वेरी नाइस. सब कुछ गाने, फिर हम वापस आ

0: कुछ रिश्ते दिल में बस जाते हैं, कुछ लोग यादों में रह जाते हैं। मुलाकात जरूरी नहीं हर रोज हो, कुछ अपने दूर रह के भी खास बन जाते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है। जैसे कि हमारे श्रोतागण जो हमसे दूर भली बैठे हैं, लेकिन हमें महसूस करते हैं हर वक्त, हर टाइम कि हम उनके कितने करीब हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: और हम भी
0: सही।
1: महसूस करते हैं अपने प्यारे दोस्तों को कि वो हमारे पास कितने दिल के करीब है हमारे। बहुत अच्छी लाइनें लेकर आए हो जी सर।
0: तो अब आप भी तो बताइए ना कि आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब कौन है।
1: मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब हमारे रेडियो शो हैं, जो बिना हमें देखे हमें इतना प्यार करते हैं। खैर, अब तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सब इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है कि अब लोग हमें सुनने से पहले देखना चाहते हैं, और हम ही बहुत सारे लोगों को देखना चाहते हैं, और बहुत जरूरी भी है। जब हम उनको देख के सुनते हैं तो कनेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है।
0: कोई एक ऐसा रेडियो इंसिडेंट जो बचपन में कि कभी सोचा नहीं कि यार रेडियो सुन रहा हूँ, और आज आप इस समय रेडियो को मतलब कहते हैं ना एक।
1: हाँ, रेडियो एक है मेरी लाइफ में, रेडियो का एक सीन। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज का दिन इतना बढ़िया है क्योंकि आज 8 सितंबर है, और आज के दिन सुरों की कोकिला लता दी को तो हम याद करती हैं ऑफकोर्स, लेकिन उनके साथ में एक और है आशा ताई, और उनको हर कोई जानता है। आज उनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले तो हम उनको नमन करेंगे। और उनके गानों की अगर मैं बात करूँ तो उनके गाने सुनते सुनते मैं क्या आप भी बड़े हुए होंगे, और हमारे तमाम श्रोता साथी। तो सबसे पहले आशा ताई को बहुत बहुत नमन करते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एक कलाकार की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो ना होकर भी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा होते हैं, क्योंकि एक कलाकार की खूबसूरती उसकी कला है, है ना भैया। तो आप मुझे बताओ, आशा ताई का कौन सा गाना है जो आपका बहुत फेवरेट रहा है कभी, जो आपने सुना हो?
0: मेरे
1: पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ, मुझे पसंद है। और एक गाना है आशा ताई का, मैं आपसे पहले खुद ही बोल देता हूँ, एक फिल्म आई थी सत्या, उसमें गाना था सपन
0: मिलती है वो कुड़ी। हाँ, ये
1: सुरेश वाडिकर और आशा ताई की आवाज में था वो गाना,
0: और बहुत ही मतलब कहते ना ये गाना तो शायद ही ऐसी कोई शादी या ऐसी कोई पार्टी थी
1: यार, सब
0: जिसमें ये सुनने को नहीं मिलता।
1: बहुत बढ़िया, और गाने में बोल भी बहुत अच्छे हैं यार, मतलब बढ़िया गाना है बहुत। और कोई गाना है आशा भोसले ताई का, कोई पुराना सा गाना?
0: पुराना सा गाना वो था वो, हाँ, हाय रे हाय ये क्या हुआ, कोई ना जी जाना।
1: ये तो शायद लता मंगेशकर की आवाज में, इनको पानी वानी पिला के आता हूँ गाइस, थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं चेक करके आता हूँ, ये आशा जी ने गाया है, ये लता जी ने, इनको थोड़ा सा बाहर लेके जाता हूँ। अभी फिलहाल कुछ गाने, फिर हम वापस आ। वापस जाने से पहले और आने से पहले, मतलब मैं आपको बता दूं, हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देना तो बनता है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये वैसे रास्ता अनजाना होना तो नहीं चाहिए, आप इस वक्त पता नहीं दिल्ली रोड पे निकल रहे हैं या कार्ट रोड पे, हमारी तरफ से ये भी कौन सी फिल्म का है गाना
0: ये, कौन सी फिल्म का गाना?
1: बहुत सी पढ़ी होंगी
0: तुमने, बहुत किताबें पढ़ी हैं।
1: इसमें शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, काजोल, कितना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको, इतनी बढ़िया फिल्म थी ये, शाहरुख खान का नया नया चेहरा, लंबे लंबे बाल, शिल्पा शेट्टी को इसमें से मंजिल पर से गिरा देते हैं, ये फिल्म बहुत अच्छी है।
0: शिल्पा शेट्टी को गिरा देते हैं,
1: हाँ, मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला, ये पिक्चर का सॉन्ग है, टाइटल ट्रैक है। बताओ
0: तुम मुझसे क्या मूवी पूछ रहे?
1: एक बात बताता हूँ गाइस, अखिल भैया को ना मैं अभी बता के आता हूँ, तब तक आप ही कुछ गाने सुनो और हम वापस ये वाला।

0: अरे याद आ गया, याद आ गया, तुम बाजीगर की बात कर रहे हो।
1: एग्जैक्टली सही, एकदम सही वाली बात बोली अखिल भाई ने। चलो अखिल भैया आप जीत चुके हो 2 करोड़ की तालियां। चलो गाइस अभी हम गाने लगा के वापस आते।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह, श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल, इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।
6: रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
7: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
6: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
7: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
7: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
6: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
7: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
6: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
7: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
6: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
7: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
9: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
6: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
8: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
10: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
6: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
11: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
6: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

गल मिठी मिठी बोल। हाँ जी, इस समय शाम का समय है और आप घर, तो जब जाना है तो साहब गल तो मिठी मिठी बोलनी है। तो एक बार स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 FM पे, जहाँ होगी आज दिल से दिल की बातें आपके अपने अखिल के साथ।

0: चलिए फटाफट देरी करे बिना हम लेते हैं अपने पहले लिसनर को लाइन पर, देखिए क्या करते हैं बात। और हाँ, अगर आपको भी करनी है अपने दिल की बात तो 9837896896 ये हॉटलाइन आपके लिए है बिल्कुल तैयार। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: बिछिया जिला विदिशा मध्य प्रदेश से आपका रेडियो दोस्त कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ सर।
0: तो सर क्या कर रहे हैं इस समय कैलाश जी आप?
1: बस सर, बस प्रोग्राम सुन रहे हैं, बस गाने सुन रहे हैं।
0: और मध्य प्रदेश में कैसा इस समय मौसम हो रहा है ये तो बताइए कुछ। यहाँ तो बहुत बारिश हुई है, झमाझम झमाझम 2-3 दिन।
1: हाँ सर, यहाँ तो 3 दिन से बिल्कुल बहुत जोर की धूप निकल रही है सर, बिल्कुल भयंकर।
0: सही है, तो चलिए इस समय ये बताइए आप कुछ शायरी करते हैं नहीं करते हैं?
1: सर शायरी तो अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, शायरी तो करते हैं लेकिन अभी इस समय कुछ मतलब याद नहीं आ रही सुनाने के लिए।
0: कोई ऐसी बात जो दिल से निकली हुई हो, जो कहना चाहते हो आप?
1: एक सुना देता हूँ आपको
0: जरूर जरूर।
1: जी। रात को रात का तोहफा नहीं देते, दिल को जारी बात का तोहफा नहीं देते, अरे हम तो तुम्हें चांद भी दे देते लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते, सर आपके लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि कहते हैं आज आपने मतलब एकदम अचानक वाली एकदम शायरी, ऐसे कह रहे थे अभी तो कुछ याद नहीं और एकदम अचानक आपके एकदम दिलो दिमाग में आ गई।
1: जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: ये फिल्म है धड़कन, और इसका वही तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और हमारे मित्र हैं गजराज लोधी जी, क्रांति मीणा जी, केसी सिंह राजपूत जी, आरिफ खान मंसूरी जी, और शाहरुख अंसारी जी, और हमारे जितने भी मित्र इस समय सुन रहे हैं उन सभी के लिए भी ये गाना।
0: तो ज़रूरी है आपका जो है ना कहते हैं फरमाइश और जो आपकी दिल की निकली हुई आवाज़ें ज़रूर हम सभी के पास
1: मैं
0: तक
1: एक
0: पहुंचा
1: बात
0: दूंगा।
1: और बताना चाहूंगा सर, आज हमारी वाइफ का जन्मदिन है तो जन्मदिन की मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा।
0: तो बहुत बहुत बधाई हो, खूब सारी पार्टी हो, खूब सारी आप, मैं कह रहा हूँ ना आज तो जन्मदिन है तो आज तो मिठाई बनती है साहब।

0: जी आइए ना सर, खाएंगे अपन।
1: जरूर जरूर। तो आपका जब भी लगे चक्कर अपने इधर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में तो
0: जी,
1: जरूर।
0: आज बागपत है, बागपत आए थे, अगले साल सम्मेलन हुआ था बागपत में।
1: हाँ जी हाँ जी
0: हाँ बागपत में आए थे और अच्छा आनंद मिला वहाँ पे सम्मेलन में। छोटा सम्मेलन होता है सर, इस साल 2 छत्तीसगढ़ में हुआ था भिलाई।
1: चलिए कोई नहीं, अगले आपकी बार जो सीजन में सम्मेलन होगा उसमें जरूर कहीं ना कहीं मुलाकात तो होगी।
0: जी जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं सर।
1: चलिए शंकर जी, बहुत अच्छा लगा, आपकी कॉल आई और खूब सारी बातें हुई आपके साथ।
0: जी सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे पहले कॉलर, वो भी मध्य प्रदेश से। तो आपकी अब है बारी, आपको भी अगर कोई अपने दिल की बात कहनी है, किसी को बर्थडे विश करनी है या किसी के पास मैसेज भी पहुंचाना है तो ज़रूर हमें कॉल करें 9837896896 पे। तब तक सुनते हैं ये गाना धड़कन मूवी से, क्योंकि जो धड़कन है ना वो दिल की बहुत तेज़ तेज़ धड़क रही है इस समय।

Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: हाँ ना लिए थी। बिल्कुल कभी दोबारा नहीं मिलते, दोबारा नहीं मिलता फूल, कभी दोबारा नहीं खिलता, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता, मिलाने को तो हजूर हजारों में मिल जाते हैं, मिलाने को तो हजारों में मिल जाते हैं, पर आप जैसा दोबारा नहीं मिलता। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत क्या बात है, शायरी आपने लिखी है। हमारे पूरे परिवार की तरफ से अखिल सर जी को प्यार भरा नमस्कार। नाम है शंकर लाल यादव जी। तो शंकर लाल यादव जी, आपकी फरमाइश तो हमने पूरी कर दी। चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉलर को लाइन पे लेते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी क्या फरमाइश है। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका सर?
1: संजय बोल रहे हैं सर।
0: संजय जी, कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद से।
1: बहुत बढ़िया, नए लाइन पर आज पूरा से बोल रहे हैं। कुंदनपुर से है आपके, रावले ग्राउंड से आपके पड़ोस से बोल रहे हैं। बिल्कुल
0: तो आज कुंदनपुर आपको घर तक आने में कोई ट्रैफिक व्राफिक तो नहीं मिला ज्यादा? कहीं आसपास कैसे अपडेट हैं
1: बिल्कुल,
0: ट्रैफिक
1: आप
0: के?
1: जैसा बोलेंगे, आप जैसा बोलेंगे वैसा होगा।
0: नहीं सर, कहीं होता है ना जब आप घर आ रहे होते हैं, अरे यार रास्ते में फंस गया, प्रकाश नगर चौराहे पे अटक गया या मजोली चौराहे
1: गए थे
0: पे। तो इस समय क्या कर रहे हैं संजय जी आप?
1: लेटा पड़ा हूँ बस। शायरी
0: तो कोई शायरी सुनाएंगे लेटे लेटे या कोई बात कहेंगे?
1: तो भाई साहब मुझे आती नहीं है, आप सुना दीजिए कोई।
0: नहीं सर, शायरी तो हमें आप सुननी है सर, हम तो
1: आपके पास
0: शायरी
1: नहीं, आप सारी बहुत सुनाते हैं भाई साहब, आपको सुननी है मुझे।
0: जरूर जरूर इस शो में जो भी शायरी सुनाएंगे आज आप सब सुनेंगे।
1: बिल्कुल इरशाद इरशाद,
0: कोई कोई दिल की बात आप कहना चाहेंगे?
1: वो तो आपसे कहूंगा, पहले आप सारी सुनाइएगा।
0: चलिए साहब, ये शायरी आपके लिए ही सुना देते हैं। कुछ
1: आप
0: पल
1: बिल्कुल
0: हंसी के
1: इरशाद
0: हों,
1: आपके लिए।
0: कुछ पल प्यार के हों, जिंदगी में मौसम हमेशा बहार के हों, जो
1: बहुत
0: लोग दिल से
1: बढ़िया,
0: जुड़े रहें हमारे, वो रिश्ते जिंदगी में सबसे खास होते हैं। तो साहब, अब कहते हैं ना, ये जो वक्त है इस समय बिल्कुल गुनगुनाने का, मस्ताने का और बात करने का, तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी गाने की, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: भाई पहली बात तो आपसे एक बात पूछूंगा मैं,
0: हाँ
1: आप
0: जी,
1: क्या भूल रहे हैं, मुझे रोज बात करता हूँ आपसे
0: मुझे तो पूरा याद है आपका संजय जी, मुझे तो
1: मैं।
0: पता है आप रोज बात
1: आपसे
0: करते हैं, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, जो हमें एक लाइन तो गा के सुनाइए।
1: सुना दूंगा, बता दूंगा मैं, कुछ बात नहीं करनी है आपसे
0: बताइए संजय जी,
1: ना।
0: बताइए।
1: आप मुझे कहते हैं कि रुक जाओ 1 मिनट, तो मैं भी रोकूंगा आपको।
0: पूरा पूरा होता है सर, आप 1 मिनट क्या 2 मिनट तक रोके, मगर हम उस 1 मिनट तक रोकने तक ना आपको पूरा गाना सुनाते हैं, तो आपको भी पूरा गाना सुनाना पड़ेगा, मैं 1 मिनट रुक जाऊंगा। और बताइए।
1: कुमार जी की, हमारे
0: हाँ हाँ
1: लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, ये गाना सुना दीजिए आप।
0: लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भी भूल
1: मजनू
0: जाएंगे।
1: को भूल जाएंगे, आने वाले पंछी हम सबको भूल जाएंगे।
0: ठीक है साहब, जरूर लैला को भी भूल जाएंगे और मजनू को भी
1: लेकिन
0: भूल जाएंगे।
1: हम आपको नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल तो मिलता है हमारा तो।
0: नहीं साहब जरूर, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे।
1: बिल्कुल हमारा आपका संबंध नहीं अलग होगा। आपने एक बार पूछा था हमसे कि
0: हाँ
1: आपका
0: जी।
1: नंबर कौन लगता है, मैं दिल से दिल तक।
0: नहीं, आपकी कॉल सच में
1: लेकिन
0: लग जाती है।
1: भाई
0: चलिए संजय जी,
1: ओके,
0: बहुत अच्छा लगा, गुड नाइट, और आराम कीजिए और ये
1: कोई नहीं
0: गाने
1: भाई,
0: को भी
1: ठीक
0: एंजॉय
1: है,
0: करिए।
1: आराम से आप भी घूम
0: ओके
1: रहे,
0: सर,
1: सबको मेरी शुभकामनाएं, आपको भी पूरे परिवार को भी, और
0: धन्यवाद
1: साथ
0: सर।
1: धन्यवाद आप।
0: तो श्रोता हमारे साथ जुड़े थे संजय जी, जिन्होंने बिल्कुल दिल की बात करी और कहा कि आज हम गाना सुनेंगे, लैला को भी भूल जाएंगे और मजनू को भी भूल जाएंगे। साहब जरूर जरूर जरूर, भूलने को तो भूलना है ही इन्हें। चलिए, जब तक ये गाना प्ले होता है तब तक आप भी कुछ ना कुछ भूलें, ना भूलें तो 9837896896 पर कॉल करके याद कर लीजिए कि क्या भूल गए थे साहब, कुछ तो कहना होगा। तो करते हैं इस गाने को एंजॉय और फिर करते हैं खूब सारी दिल की बातें।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर साहनी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
6: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड सिविल लाइंस मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: देर तो हो रही है, अगर किसी को मूवी देर हो रही है, किसी को खाना है तो भी देर हो रही है, तो ज़्यादा देर ना करें और जल्दी जल्दी पहुँचें साहब। हाँ, मगर सीट बेल्ट ज़रूर लगा के रखें, क्योंकि सफ़र भी ज़रूरी है और सफ़र का मज़ा भी ज़रूरी है। ऐसा कौन सा गाना है जो आपके दिमाग में बार बार हिट कर रहा है, तो ज़रूर हमें मैसेज करें या कॉल करके बताएं कि यार ये गाना ना सुबह से स्ट्राइक पे स्ट्राइक मारे आ रहा है, ज़रूर इसे थोड़ा सा प्ले कर दो। अभी जो आप गाना सुन रहे थे, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, ये भी हमारे एक लिसनर हैं, कहती हैं मिस फ्रॉम नैनीताल, हाय नमस्ते सर जी, रात आपको और सभी आरजेस को हमारी तरफ से होप सभी मस्त होंगे, प्रभु की ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआएं आप सभी को। जी सही सही, शुभकामनाएं तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया। सभी खुश रहें, हमेशा प्रभु की शरण में सुरक्षित रहें। हाँ जी ज़रूर रहेंगे। और आपका सॉन्ग हमने प्ले कर दिया। हमारे एक और लिसनर हैं जिनका मैसेज आया है अभी, कह रहे हैं हेलो अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है दिल से दिल तक। हाँ जी गुड वाला इवनिंग, बढ़िया आपकी। आज आपने नवीन नगर भी लिख ही दिया अपने साथ, मुझे लग रहा है हो, मगर जिस तरीके से आप लिखते हो ना मैसेज, बहुत ही कमाल लिखते हो। आपका शो बिंदास लग रहा है, अखिल सर आए तो महफिल में रौनक छा जाए, उनकी एक मुस्कान से हर चेहरा खिल जाए, बातों बातों में ऐसा जादू कर देते हैं कि उदास इंसान भी हंसता हुआ घर आ जाए। हाँ तो उदासी किस बात की रखनी है साहब, जब हो गया पूरा दिन निकल गया, अब काहे की उदासी, अब तो सिर्फ प्यार से बात करनी है। और जब अपने साथ में हो ना, सारी बातें ना सारी उदासी एक तरफ कर लो यार, दो मिनट आराम से खुशी खुशी बातें करो और पूछो भाई साहब क्या मस्ती कर ली आज पूरे दिन। अखिल सर की बातों में अपनापन है, उनकी मुस्कान में खूबसूरत बचपन है, जो भी मिले दिल से सम्मान पाए, ऐसे हमारे अखिल सर जो हर दिल में बस जाए। बस आज तो ललिता जी आज नींद नहीं आएगी, ये दो शायरी जो है ना मेरे आसपास ही घूमती रहेंगी। सर हमने खाना खा रहे हैं और आप भी खा लीजिएगा, सर आपका शो सुन रहे हैं, तो आप शो सुने सुनते सुनते हंसते हंसते खाना खाएं और हल्का सा फंदा लग जाए तो जल्दी से पानी पी लें। पानी वैसे खाना खाने के आधा घंटे बाद ही पीना चाहिए, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर सही कह रहा हूँ तो ज़रूर मुझे हाँ लिख के ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए करते हैं अपने नए लिसनर से थोड़ी और बात, पूछते हैं क्या है उनके हाल चाल। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? बढ़िया सर बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका, सभी श्रोताओं को बताएं।
1: सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, हरतले से।
0: आप हरतले से बोल रहे हैं आसिफ जी, और क्या करते हैं?
1: सर इंटीरियर का काम है अपना।
0: तो आज आप लेट हो गए इंटीरियर के काम में, वरना आप जो है हमेशा टाइम पे एकदम कॉल कर लेते हैं।
1: अरे सर मैं तो आपको 150 बार फोन करी है, लेकिन आज जो ना लड़कों ने थोड़ा लेट का काम करा था सर।
0: क्या बात है, तो चलिए साहब अच्छी बात है। काम तो पूरा हो गया नहीं हो गया सर?
1: नहीं सर काम तो अभी स्टार्ट हुआ, काम तो लगभग है 6 महीने का।
0: चलिए, और आसिफ जी आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में बताना चाहेंगे?
1: बताओ सर क्या बताना, आपको तो सब पता ही है।
0: सर हमें तो सब कुछ पता है। तो आज ट्रैफिक कैसा रहा मुरादाबाद का, आपने जहाँ जहाँ गए ट्रैफिक मिला नहीं मिला?
1: ट्रैफिक तो आज तो खैर कोई खास ट्रैफिक नहीं था, लेकिन सर कल बहुत जाम था, कल जो ना कुछ रैली निकली थी कल शाम के नंबर।
0: तो उस रैली में फंस गए आप?
1: घंटा
0: तो ये जो गाना इससे पहले प्ले हुआ था, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, वो लगता है कल वाला आज प्ले हो गया आपके लिए। हाँ जी
1: अगर कोई कोई अच्छा सा गाना सुना।
0: चलिए साहब अच्छे गाने तो सारे अच्छे होते हैं, थोड़ा ऐसा गाना सुनाते हैं जिसे आप गुनगुना लेते हैं।
1: अच्छा।
0: तो आसिफ जी किसी का नाम लेना चाहेंगे, अपने अपने किसी दोस्त का या किसी को, जो भी हम गाना प्ले करें वो डेडिकेट किया जाए? अपनी वाइफ के लिए। क्या बात है साहब, कितना डेयर है आपके अंदर।
1: नाम नहीं बता देता हूँ सर मैं आपको करने का।
0: अच्छा बताइए सर। अरे सर पूछ लीजिए, कभी कभी गाना जो होता है ना वाइफ को डेडिकेट करने के लिए वाइफ से पूछना भी पड़ता है।
1: अरे नहीं अभी बताया थी, वो एक गाना है उसका, टाइगर, एक था टाइगर का था, दिल दिया बल्ला ऐसी कुछ गाना है,
0: एक था टाइगर का।
1: एक था टाइगर है, ऐसा है टाइगर जिंदा है, इसी का गाना है वो सलमान खान का, दिल दिया बल्ला,
0: कौन सा
1: उसकी
0: दिल
1: फरमाइश थी।
0: दिल दिया गल्ला? तो
1: हाँ ऐसी कुछ है गाने का नाम।
0: आपको कितने साल हो गए सर टाइगर बने हुए, ये बता दीजिएगा आपको कितने साल हो गए टाइगर बने हुए।
1: टाइगर तो खत्म हो
0: आपका धंधे का टाइगर खत्म हो गया सर? है कोई बात
1: कभी
0: नहीं
1: कभी
0: सर।
1: नहीं, स्टार्ट हुआ है सर। मैं तो
0: चलिए सर क्यों नहीं
1: जिस दिन मुझे आया सिनेमा में आपके ऑफिस में मिल लाऊंगा,
0: क्या सर?
1: जिस दिन मैं फ्री हुआ ना मुरादाबाद में,
0: हाँ सर,
1: मैं आपके ऑफिस में आऊंगा मिलने के लिए।
0: हाँ सर आइएगा, मगर टाइगर मत लेके आइएगा। चलिए
1: अरे सर टाइगर नहीं, मैं बताऊंगा।
0: सर नाम बोल, किसी को डेडिकेट और करना चाहें वाइफ के अलावा, और वाइफ से ही काम हो जाएगा आज।
1: बहन है, चाचा है, चाची है, एक मेरा भाई है, लेकिन वो थोड़ा सा वैसी है। हाँ
0: चलिए
1: बढ़िया
0: सर
1: वाला।
0: कोई
1: ठीक
0: नहीं, इस गाने को एंजॉय कीजिए आसिफ जी, और खूब बढ़िया से कहते ना
1: है सर, आज आपने कॉल बहुत जल्दी उठा दी, इसके
0: सर।
1: लिए थैंक यू।
0: आज हो, कभी कभी हमारे पास यही होता है, कभी कॉल जल्दी उठा ली, कभी कॉल देर से उठ गई, मगर हम पूरी कोशिश करते हैं कि कॉल जो है ना उठ जाए और बात हो जाए, कम से कम कुछ तो बात हो जो दिल से निकली हुई हो। ठीक है आसिफ जी, नमस्कार। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे आसिफ जी, जो बिल्कुल खुल के बातें कर रहे थे कि जी फटाफट एक था टाइगर का गाना सुना दे, मगर ये जो उन्होंने गाना बताया ना दिल दी गल्ली, वो एक था टाइगर का नहीं, टाइगर जिंदा है। तो आसिफ जी टाइगर अभी आपका भी जिंदा है, आप एकदम घबराएं, और जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक आप लोग भी इंजॉय करें। 9837896896 पे अगर आपका भी कोई टाइगर जिंदा है तो ज़रूर हमें कॉल करें, और थोड़ी सी दिल की बातें शेयर करें।
2: शाही है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी है, तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

डेयर हो तो आसिफ जी ऐसा जिन्होंने एकदम गाना डेडिकेट कर दिया सामने के सामने. तो सर देरी किस बात की, डेडिकेशन तो आप भी कर सकते हैं किसी ना किसी को 9837896896 पे.

0: हाँ जी साहब, आजा नचले आजा नचले, ये गाना सुन रहे थे आप मूवी गर्ल से, जिसमें आयुष्मान खुराना ने सबको बता दिया कि साहब ड्रीम गर्ल जो है ना मैं ही हूँ, और आवाज़ बदल बदल के जो उन्होंने पूरी पिक्चर में मज़े लिए वो आपने ज़रूर देखा होगा, और हंसे तो होंगे कहीं ना कहीं, तो लग रहा होगा कि भैया ये क्या कर दिया, क्या टॉपिक है और कितना बेहतरीन एक्ट है इनका। तो चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से बात, क्योंकि समय हो रहा है धीरे धीरे इस शो के अंतिम पड़ाव की तरफ, और खूब सारी मस्ती वाली बातें तो हो चुकी हैं। चलिए थोड़ा सा एक दुनिया की खबरों का भी दे देते हैं, मगर अपने स्टाइल से, उसके बाद बात करेंगे अपने कॉलर से क्या कह रहे हैं वो भी। आज मिडिल ईस्ट से सबसे बड़ी खबर सामने ये आई है कि हौतीस की अरेबिया के कई शहरों में ड्रोन और मिसाइल अटैक्स की खबर है, जहां सऊदी कम से कम ऐसी खबरें ना हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया को युद्ध से ज्यादा इस समय शांति की जरूरत है, और यूक्रेन में भी हालात जो हैं अब तनावपूर्ण हैं। रशिया की ओर से मिसाइल्स और ड्रोन के अटैक्स खबरें तो सामने आई हैं, मगर अनुसार रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में लोगों की मौत और कई लोग घायल होने की जानकारी है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि बातचीत का रास्ता मजबूत हो और इंसानी जान जो है ना सुरक्षित रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खबरें अपनी चल रही हैं, और इस समय करते हैं कुछ चटपटी बातें।
1: அவ பேர் சந்திரடா.

तो इतनी सारी बात होने के बाद थोड़ी सी एक और बात करते हैं। एक पहेली आपसे पूछी जाती है और आपको बताना पड़ेगा कि उस जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है। हाँ जी साहब, बहुत सिंपल है और इधर उधर आप ढूंढेंगे तो ज़रूर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है? और आपने अगर सही जवाब दे दिया ना तो भाई साहब धुरंधर हो जाओगे आप, बिल्कुल एकदम धुरंधर। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग मिल जाते हैं हजारों इस दुनिया में मगर हर कोई अपना नहीं होता। ये शायरी भेजी है हमारे को रोहतांश भाई ने रामपुर से। क्या बात है रोहतांश जी, क्या बढ़िया शायरी लिखी। एक शायरी हमारे पास और आई है, ये हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी हरतला कॉलोनी से, क्या बात है हरतला कॉलोनी से अर्जुन जी। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनकर देखो, कभी किसी के दर्द को समझ कर देखो, जिंदगी छोटी सी है दोस्तों, थोड़ा खुद जियो थोड़ा दूसरों के लिए जियो। क्या बात है अर्जुन जी, बहुत ही शानदार बात कही है।

तो दोस्तों अब हैं अपने शो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे, क्योंकि 9 बज के हो गए हैं 57 मिनट और 10 बजते ही ना हो जाती है हमारी टाइमिंग पूरी। तो मिलेंगे आपसे पूरे एक दिन बाद कल ठीक 9 बजे, इसी तरह करेंगे खूब सारी बातें, शेर व शायरी और आपके डेडिकेशन की फरमाइशें। तो चलने से पहले एक शायरी और आप सभी के लिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर आता है, इंसान चाहे कितना भी टूट जाए उम्मीद उसे फिर से उठाती है। तो साहब खूब करनी है मस्ती, खूब सारी करने हैं शायरी, और जो मैंने सवाल पूछा है ना, पहली जो मैंने आपसे पूछी है उसका जवाब है खामोशी। तो अभी हमारे पास बिल्कुल सही जवाब जो आया है वो है ललिता कश्यप जी का, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब भेजा है हमारे पास खामोशी, और जो आपने खामोशी तोड़ी है ना ललिता कश्यप जी, ये जवाब दे के बहुत ही अच्छा लगा, एक बार में बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैं हूँ आपका अखिल और आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलेंगे फिर एक नई शाम में नई बातों के साथ, नई मस्तियों के साथ और उसी पुराने प्यार के साथ जो है दिल से दिल तक अखिल संग। जाने से पहले पत्थर के सनम मूवी का एक गाना है जो हमारे अभी लिसनर थे वीरपाल जी, उनकी पसंद का एक गाना है, उन्होंने कहा था सर ये प्लीज़ मेरे को गाना सुना दीजिएगा, वो इस समय कंटेनर्स का काम करते हैं और इस समय कह रहे थे कि थोड़ा आराम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं वीरपाल जी, आपका ये गाना ज़रूर पूरा होगा और कल आप सभी से फिर से इसी समय पर 9 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह, श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल, इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इन्विटेशन ओनली।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

बस थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी तुम।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए हंसी के धमाके के लिए।
1: जैसे ही पापा गए मैंने प्रतिज्ञा ले ली, छोटे बच्चे बहुत फुद्दू होते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ले ली, मैंने ऐलान किया पूरे घर में, मैं कहा सुनो ध्यान से सारे, ये जो आदमी अभी गया घर से बाहर, इसकी कमाई का एक दाना तक नहीं खाऊंगा मैं।
0: फैशन फार्मर्स लेकर आ रहे हैं इंदिर सहानी कॉन्सर्ट लाइव इन मुरादाबाद 12 सितंबर रात 8 बजे ड्राइव इन 24 में रेडियो पार्टनर एफएम मुरादाबाद 89.6। तो बनिए इस अनफॉरगेटेबल नाइट का हिस्सा। मोर डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप करें 9837896896।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह, श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग, PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल, इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।

भगवान हनुमान की भक्ति और आस्था से जुड़िए। हिंद न्यूज 9 FM मुरादाबाद 89.6 प्रस्तुत करते हैं हनुमान अंश स्पेशल मूवी शो। परिवार के साथ देखिए भगवान हनुमान के शौर्य और भक्ति से जुड़ी विशेष फिल्म। पावर्ड बाय ब्रजलाल किशनलाल ज्वेलर्स, कॉस्मोस हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय जिज्ञासा हॉस्पिटल, भव्य हॉस्पिटल, ट्रस्ट हॉस्पिटल, गुलशन वेडिंग कलेक्शन, SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, होटल MB ग्रीन्स क्लार्किन, राज कलेक्शन, ठाकुर राहुल सिंह श्री साई मीडिया एडवर्टाइजिंग PR एंड इवेंट्स, प्रभात मेडिकल स्टोर, मोहन ज्वेलर्स, मधुरम ग्रुप, हनुमान अंश स्पेशल इन इनिशिएटिव बाय हिंद न्यूज 9 एंड FM मुरादाबाद 89.6। एंट्री बाय इनविटेशन ओनली।